0: दीजिए आप
1: जी। फोलोमान के बारे में, बाय फोलोमान का ये खुद गब्रुक maken om te mediteren, reciteren op spirituele gebied. Ideale moment, het is ook een ideale moment om te werken aan je innerlijke, zoals het verleden loslaten, bij ook het genezing, het blokkades wegnemen. Dus dit alles kan je dan bij volle man het innerlijke reiniging doen.
0: फिर कहना चाहूँगा कि शांता जी इतना मोह से नीदरलैंड्स में और हम सबको सुनाते हैं। तो राजेंद्र जी ये बताइए कि अभी तो आपने कहा कि यानी कि जो हम कर सकते हैं पूर्णिमा में, और कुछ चीज भी है जो हमें ध्यान देना चाहिए क्या, ताकि हम कहीं, हम सोचते हैं कि हम हर बार ठीक ठीक सब कार्य करते हैं पर कभी जाने अनजाने में हम गलतियां भी कर देते हैं
2: जी।
0: तो क्या कुछ है जो जिसे हमें ध्यान देना चाहिए पूर्णिमा को?
2: हाँ, पहले हम एक बात रखना चाहेंगे कि जैसे ज्ञानदेव जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में ओंकार का मतलब समझाया है, अकार उकार एंड मकार, आ ऊ और मा से तीन अक्षरों से एक शब्द बनता है, उसको कहते ओम। सो नाभि से लेके छाती तक अकार है, छाती से लेके गले तक उकार है, और गले से लेके सहस्त्र तक मकार है, तो इसको बोलते हैं ओंकार। इसका जाप करने से, इसको उद्गीत भी बोलते हैं, इसको अगर आप 10 मिनट बैठ के चालीस परसेंट 30% करके, तो बहुत ही आपको शांति का अनुभव होगा और आपको एकदम मन शांत हो जाएगा। हाँ, तो अभी अगला है पूर्णिमा का दिन, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना गया है। पुराणों में जो हमारे पुराण हैं उनका, उनमें पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा माना गया है। कहते हैं इस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन कम से कम, पहले तो रोज़ वैसे ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर रोज़ करते हैं तो इस दिन तो ना करें।
0: पूर्णिमा के दिन के पवित्र रहने, यानी कि कोई तामसी पदार्थों ना खाए, यानी कि लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए,
2: मदिरा नहीं खाना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए पूर्णिमा।
0: ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, ठीक है, चलो वो भी।
2: पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम सुख शांति से रहो। किसी को इस दिन कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, किसी को कटु वचन मतलब जैसे
0: कड़वा वाणी ना बोले, और कोई जैसे हम सब ये वृतांत सुनाते हैं ना कि एक दिन में 86,400 और सेकंड होते हैं, उसमें से कोई जब 10 सेकंड के लिए कुछ कह देते हैं तो हम अपना सारा बचा हुआ 86,390 सेकंड भी नाश कर देते हैं। तो ऐसा ना होए कि कटु वचन नहीं सुनाना चाहिए। तो और इसमें कुछ है या हम सब गीत की ओर बढ़े?
2: नहीं, और इसमें थोड़ा सा एक है, पहले गीत सुना देते हैं फिर इसका हम अगली बार में पूरा एकदम से। जो गीत है उसमें भी है कि दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, तो जीना तो पड़ेगा ही।

0: दोस्तों, ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और हम सब यहाँ उपस्थित है। आज के जो तेईमा था, आज के जो विषय था पूर्णिमा, और उसके बारे में राजेंद्र जी जो आज कुछ और अभी कहने वाले थे पूर्णिमा के बारे में, तो हम सब आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे।
1: हाँ संजय जी, जैसा कि अभी हम पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा वृतांत रह गया था, इसको पूर्ण करेंगे। इस दिन दरवाजे पर आने वाले गरीब या ज़रूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान देना चाहिए। जो लोग गरीब हैं या जिनको ज़रूरत है, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको हम दान करना चाहिए। जन जागृति हेतु लेख प्रसारण अवश्य करें, जब लोग सब जन जागरण रहे और इसमें सब समझ सकें।

0: आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्य का जो दुख है, शरीरी दुख है और शत्रु है वो आलस्य है। शरीरोस तो महान रिपु, बहुत बड़ा शत्रु है। तो बताइए संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं आलस्य के बारे में?
1: आलस्य अब क्या कहूँ मैं, बस यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीने ही देरी से शुरू करते हैं।
0: वाह बात है,
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाते हैं। बस यही जिंदगी है। राजेंद्र जी, इन बातों जो कि हम सब और हमारे कार्यक्रम के लिए यानी कि शुद्ध विचार जो बबली ने भेजे हैं तो उन्हें सुनाया गया। आज के जो और हम सब विषय था पूर्णिमा, तो उसके बारे में काफ़ी बातचीत हो चुके हैं। पर राजेंद्र जी, अब हम कुछ और पूछना चाहता हूं आपसे कि हमारे त्योहारों में एक त्योहार जो कितने दिन बाद मिलता है, कुंभ मेला
0: जी,
1: उसके बारे में कुछ हम सब के बता सकते हैं? क्योंकि हम सब अभी तो निकल नहीं पा रहे हैं, पर समय आने पे हम सब का इच्छा भी निकलने के है देश से, और यानी कि फकांसी आदि तथा कोई तीर्थ यात्रा करने को। तो कुंभ मेला के बारे में आप कुछ विशेषज्ञ सुनाइए
0: जी। कुंभ मेला भारत में चार स्थानों पे लगता है, जैसा कि सबसे पहले एक तरफ से लेते हैं हम हरिद्वार, इसके बाद आता है नासिक, उज्जैन, और इसके बाद आता है हमारा इलाहाबाद। तो चार स्थानों पे कुंभ मेला लगता है, और जो कुंभ मेला चार स्थानों में लगता है वो 12 साल में एक स्थान पे एक बार आता है। तो पौराणिक समय में कुछ बूंदें अमृत की हरिद्वार में गिर गई थी, जिन स्थानों में अमृत गिरा था उन्हीं स्थानों पे कुंभ मेला लगता है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन चला तो उस समय 14 रत्न उत्पन्न हुए, उसमें से एक अमृत भी उत्पन्न हुआ। वो अमृत जब अलग अलग लोगों ने, जब उसमें झगड़ा हुआ तो उसको अलग अलग जगह रखा गया और वहाँ पर थोड़ा छलक गया, तो उसी के उपलक्ष्य में कुंभ लगता है। तो 12 वर्ष में मनाए जाने वाला कुंभ हरिद्वार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार महाकुंभ भारतीय जनमानस की चेतना का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार कुंभ मेले के स्नान से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाती है। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है और पंचांग के अनुसार कुंभ की घोषणा की जाती है। यही कारण है कि यहाँ कुंभ के आयोजन के समय करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय व विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। लोग बहुत दूर दूर से वहाँ आते हैं, विदेशी भी मैंने बहुत देखा है। मैं चारों कुंभ में गया हूँ, वहाँ बहुत सारे विदेशी आते हैं और एक और बड़ा अच्छा लगता है सब लोगों को। तो हम चाहते हैं कि हमारे नीदरलैंड से भी बहुत सारे लोग जाएं, और कुछ लोग मैंने सुना है गए थे पहले इलाहाबाद के कुंभ में, तो वो सब जाएंगे उसमें। और अब कुंभ भारत में ही नहीं विदेशी सैलानियों का भी आकर्षण बन चुका है। कुंभ मेले में आने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न वेशभूषाएं, विभिन्न समुदाय, विभिन्न संप्रदाय, लेकिन अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी एक आधार साम्य सत्य की खोज, इतने विभिन्न मार्गों से ये कुंभ मेला है। यानी अनेक प्रकार के लोग, अनेक धर्मों के लोग और सब प्रकार के लोग वहाँ आते हैं, और जो वहाँ पर आते हैं तो वो सब ये नहीं देखते कि ये किस धर्म का है, किस धर्म का, वो सब इस नहीं, सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर गंगा स्नान करते हैं। पृथ्वी पे होने वाला सबसे बड़ा मेला और भारत के हृदय में झांकने का एक झरोखा कुंभ मेला है। अगर पृथ्वी पे सबसे बड़ा कोई मेला है तो वो कुंभ मेला है। और भारत में इस प्रकार के 4 कुंभ मेले हर 3 साल में एक बार एक जगह होते हैं, 12 साल में एक जगह का नंबर आता है। आनंद का उत्सव है कुंभ मेला, एक आनंद का उत्सव है। समस्त दुखों को भुलाकर सभी प्रकार के लोग और साधु संत बिना किसी निमंत्रण के कुंभ मनाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। कुंभ मेला भारत का राष्ट्रीय समागम है। कुंभ एक उच्चतम शब्द है, यहाँ देश विदेश से अनेक लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जिन्होंने भारत को जानना है या समझना है, वो कुंभ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सही अर्थों में कुंभ और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसको समझने के लिए कुंभ सबसे अच्छा माध्यम है। अगर आपने भारत को समझना है तो आप कुंभ मेले में चले जाइए, आप सब एक ही जगह एक ही स्थान पर पूरे भारत को समझ जाएंगे। ये बड़ी सुविधा है। कुंभ एक उत्सव है, चेतना का विस्तार है। कुंभ एक महायज्ञ है, जीव और जगत के कल्याण का। कुंभ मेला चार पवित्र नदियों के तट पर होता है। जैसे पूरब में गंगा नदी के तट पर होता है, प्रयाग में, पश्चिम में क्षिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन में, उत्तर में गंगा नदी के तट पर, हरिद्वार में और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर, नासिक में होता है। तो चार जगहों का चार नदियां हैं और चार स्थान हैं। कुंभ मेला औसतन 3 वर्ष में एक जगह होता है, जिसमें कि 12 वर्षों में एक जगह होता है। वर्तमान में 13 अखाड़े हैं। ये सब अखाड़े अपने आप में आदि शंकराचार्य से संबंधित मानते हैं। बिना किसी प्रचार प्रसार के सब एक ही स्थान पर पहुंच जाना अपने आप में महानता है। कम नहीं, एक शब्द की शक्ति है जो कि संपूर्ण सृष्टि को चला रही है और वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। यही हम संजय जी आपको बताएंगे कि कुंभ का।
1: राजेंद्र जी, जबकि हमारे लिए एक दूसरा गीत को रख चुके हैं, तो उस ओर बढ़ने से पहले हमारे पास बबली जी ने एक और ऐसा संदेश पठाया है कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख का ताला किसने लगाया है। ना राजेंद्र जी, तो चलाओ अपना गीत जो आपने खोज करके रखे हैं।
0: जी जरूर, अभी सुख की चाबी तो ढूंढनी ही पड़ेगी।

0: बताइए संजय जी, अब आप क्या प्रकाश डालने वाले हैं कि मारने वाला भी है भगवान और बचाने वाला भी है भगवान।
1: भाई क्या कहो, हमारे मामा जी जो सुन रहे ये कार्यक्रम, वो और हम सबको ऐप द्वारा ये संदेश भेजे है कि भाई प्रोग्राम सुंदर है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दोस्तों ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और हम सब आज के विषय पूर्णिमा के बारे में बातचीत हो रहा है, पर हमारे छोटे छोटे बच्चों जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो कम से कम हमारे शांता जी कुछ नेदरलैंड्स में तो हम सब के सुनाए पूर्णिमा के बारे में।
2: नेदरलैंड्स में हम कुछ कहेंगे फॉर द फॉलोमान दान ओक इफेक्ट ऑफ मेंशन एंड दैट ओम द एनर्जी फॉर द मान trek aan het water op aarde, ook wel zwarte kracht genoemd. Mensen bestaan merendeel uit water. En dat heeft het effect dat bij sommige mensen dat ze erg druk van worden, onrustig. En dat ook bij sommige mensen die het effect van hebben, overdag heel prikkelbaar zijn, emotioneel zijn. En bij mensen met astma, dat ze dan last hebben van benauwdheid. En dat is dan ook heel vreselijk, het benauwdheid van de astmapatiënten.
1: तो यानी कि नतूर के चलतीन से हम सबके ऊपर भी प्रभाव पड़ते हैं शांता जी।
2: जी जी जी।
1: संस्कृत कक्षा में बैठने वाले जो सूरीनाम से ये संस्कृत सीख रहे हैं रत्ना कुमारी यंग बहादुर सिंह भी, और अपना संदेश दे रहे हैं कि मौसम सूरीनाम में भी ठीक हो गया है और हमें खेत के ओर जाना है कुछ सब्जी आदि तरकारी लगाने के, पर अभी उस ओर बढ़ेंगे। ये कहना चाहूँगा कि आप सुनते रहना, हम सब कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए रखते रहेंगे।
0: हाँ, अभी तो हमारे पास राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, इस विषय में एक बहुत ही सुंदर, जिसका बहुत अच्छा संदेश है। जो लोग समझते हैं कि हम दुखी हैं, तो उसके लिए खास करके दुख की चिंता नहीं सतानी चाहिए। अब सुनिए।
3: सुख जब सदा संग रहे ना,

0: बताइए संजय जी, सुख अपना साथी कैसा है, दुख अपना साथी कैसा है, आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए।
1: नारायण दत्त और शिवनंदन जो एंथोफो से भी सुन करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, तो भाई बस यही कहना चाहूँगा कि हम सब का बस यही लक्ष्य है कि हम सब सुंदर सा कार्यक्रम मिल करके बनाए।

0: बताइए संजय जी, बच्चे मन के सच्चे कैसे हैं? आप इसमें क्या प्रकाश डालना चाहेंगे?
1: बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं,

0: बताइए संजय जी, जैसी करनी वैसी भरनी।
1: अब जो करेंगे जैसे वैसा भरना पड़ेगा। अब शांता जी उसमें कुछ और कहने वाले हैं, तो अब चलो सुनेंगे कि शांता जी क्या सुना रहे हैं हम सबको।
2: कहते हैं ऐसा करनी ना कीजिए, करके जो पछताई, बाण धनुष से छूट के कभी ना वापस आए। अपनी करनी से अगर दूसरों को दुख होए, जीवन भर सुख ना मिले, मन में पीड़ा होई।
1: तो राजेंद्र जी आप फिर से क्या रखने वाले हैं प्लेयर पे? क्योंकि हमारा इच्छा तो बस यही है कि अब हमारा समय विपरीत हो रहा है और हमें सूरीनाम की ओर ले चलिए।

0: वाह संजय जी, बहुत ही अच्छा नगमा रहा। अब आप कुछ बताएंगे सूरीनाम के बारे में।
1: राजेंद्र जी, इस गीत को जब हम सुनते हैं ना, तो मन में पुराने ख्याल आते हैं, मन में अपना सूरीनाम याद आते हैं, मन में वो ख्याल आते हैं जो पहले हम सब गर्मी में स्कूल से और पैदल जाते थे, जबकि किलोमीटर कितना चला जाता था। अब तो कहीं भी कोई भी निकलो तो गाड़ी वहाँ है, पर उस समय गाड़ी कम थे, हमारे घर पे तो उस समय पे तो था ही नहीं, तो कितने किलोमीटर पैदल चल करके जा करके और हम सब घर पे आते थे। शायद शांता जी आपको ख्याल होगा कि पहले का जो चाय बनाया जाता था, आजकल तो चाय बनाओ तो थोड़ा देर में पानी हो जाता है, पर पहले का चाय जो बनाया जाता था, तो उसके बारे में आपको कुछ ख्याल आ रहा है?
2: जी हाँ, मुझे ख्याल आ रहा है। मेरे तो सूरत पे तो बड़ा स्माइल आ गया चाय के नाम सुनकर उस समय के।
1: हाँ।
2: उस समय पे तो चाय बनता था चूल्हा पे।
1: चूल्हा पे?
2: चूल्हा पे।
1: चूल्हा पता आपको राजेंद्र जी क्या है?
0: हम तो अभी जलाई लमान चूल्हा।
1: वासना में चलाते हैं चूल्हा।
2: हाँ, तो चूल्हा पे चाय बनता था, वो पहले मशहूर था वो फनेल ते।
1: हमने पता नहीं नाम क्या है, पर हम पी लेते थे। और स्कूल से आते थे ना राजेंद्र जी, तो पहले पहले घर पे थोड़े इसे ड्रिंक आदि रहता था कि कोला है और स्प्योर कोला है, पेप्सी कोला है, कितने प्रकार का कोला था, इन चीजों घर पे नहीं था। तो जो हम दौरे दौरे घर पे आते थे गर्मी में, तो सबसे पहले हंडी की ओर देखते थे कि कुछ बचा हुआ है कि नहीं, और ये नहीं कहूंगा कि कैसे पिया जाता था वो। तो दोस्तों, सूरीनाम के पुराने बातें ख्याल आते हैं, और इस पे देखा जाए कि पहले का चाय जो बनाया जाता था, तो सुबह बनाया जाता था और रात तलक अभी उसी प्रकार से कड़क, तो वो किस प्रकार का चाय था, तो उसे इस समय तो ऐसा नहीं बनता है। अब ये बना के रखो चाय तो थोड़ा समय में पानी बन जाता है। हमारे रत्ना कुमारी जी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि चाहे धूप है या वर्षा, गर्मी है या सर्दी, दिन है या रात, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 घंटा है आपके
0: साथ।
1: आप सुनते रहना। और राजेंद्र जी जो एक धुन को रखने को जा रहे हैं,

प्यार किया तो करके निभाना पड़ेगा। फौहन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वालों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश सुनने के लिए। यही आशा उम्मीद कि हम जैसे अपना प्रोग्राम बनाया सजाया आपको पसंद आया हुआ होगा। आपकी सेविका शांता।

0: दोस्तों, ये है ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम और यहाँ हम अपने समाप्ति पे आ पहुँचे हैं। आशा यही है कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगे होंगे। हमारे कार्यक्रम में सहयोग देने वाले और मेस्टर ज्ञानदेव जी, रत्ना जी और शांति खेमाई जी है, और राजेंद्र जी जो हमारे पैनल पे और थे, और भाई रजेश बदलू जी जो स्टूडियो एंग से हम सबको ध्यान देते थे। हम आशा यही रखते हैं कि अगले सप्ताह आप सभी से फिर मिलेंगे। सभी को एक शुभ दिवस।
1: फाहुन हिंदुस्तान के रेडियो को सुनने वालों के लिए मेरा ढेर भरा नमस्कार और प्यार। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नहीं मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए अपने की श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। हमारे साथ कार्यक्रम में सहयोग देने वाले हैं श्रीमती शांता जी और भाई राजेंद्र जी। तो भाई राजेंद्र जी, आप तो कुनोप के आगे बैठे हुए हैं और शांता जी के लिए बटन दबा दो ताकि वो भी कुछ कह सके।
1: चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समंदर अधूरा है किनारे के बिना, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी अधूरा नहीं है आप जैसे प्यारे प्यारे सुनने वालों के बिना। तो प्यारे आत्माओं, फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की सुनने वालों को सेविका शांता की श्रद्धा से राम राम प्रणाम स्वीकार होवे। आप जैसे सुन रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सेवा और यहाँ से हम मिलजुल कर अपना प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश फाहन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा के आकाश में ला रही हूँ हर सप्ताह की तरह। ये आशा उम्मीद है कि आपको ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम आपको पसंद आए और आप हमारे साथ प्रेम और प्यार से साथ में बने रहे। तो संजय जी,
0: अति सुंदर रूप से और जाकर के शांता जी अपना संदेश को हम सबको सुनाए। राजेंद्र जी, आप भी कुछ कह दो तो हम सब आगे बढ़े।
2: भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से प्यार नहीं।
0: कोई इस मौसम और बैठे हुए सोचते होंगे कैसा और ये मौसम है, कैसा ये दिन है, आज हम सब ये कार्यक्रम लेकर क्या सुनाने वाले हैं। अभी हम सब कार्यक्रम के विषय की ओर बढ़ेंगे, पर जो घर पे बैठे हुए उदास बैठे हुए हैं तो उनके लिए पहले एक सुंदर सा और गीत को सुनाया जाए।
2: जी जरूर, उन लोगों के लिए आज मौसम तो अच्छा है लेकिन बारिश है, तो उस बारिश भरी मौसम के साथ साथ एक अगर बहुत अच्छा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार भजन सब सुनेंगे तो मौसम और भी सुहावना हो जाएगा। तो लीजिए, अब सुनिए।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों सुनने वालों, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर, और ज्योति का प्रकाश हर सप्ताह कुछ ना कुछ और संदेश लेकर आपके लिए उपस्थित रहते हैं। हमारा विषय आज का क्या है, अभी उसके ओर बढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले कार्यक्रम को सुनकर लोग और ये प्रश्न एक होता तो मैं शायद सोचता कि भाई चलो इसे कहीं और प्रोग्राम में और पूछ लेंगे, पर और लोग ये प्रश्न किए राजेंद्र जी, लोग को जिज्ञासा है जो आपने पिछले सप्ताह बताए कुंभ मेला के बारे में, क्योंकि वो एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में आप बताएं और हम सब के पास ये प्रश्न हो गए कि लोग ये कहे हमसे कि भाई कम से कम कुछ और उसके बारे में बताइए, और लोग उसके बारे में कुछ सुनना चाहते हो। राजेंद्र जी आपसे यही प्रश्न है कि कुछ और हम सबके ये कुंभ मेला के बारे में व्यतीत करें।
1: फाहुन रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने कुंभ मेले के बारे में जानने की दोबारा से जिज्ञासा जताई, और इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते इसमें कुछ चेंजिंग रहा, तो थोड़ा सा शाही स्नान कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, थोड़ा लेट रहेगा, लेकिन अभी जो 15 मार्च से लेके और 27 अप्रैल तक मनाया जाएगा, तो कुंभ मेला की कुछ पौराणिक समय में कुछ बूंदें अमृत की हरिद्वार में गिर गई थी समुद्र मंथन के समय में, इसी कारण हरिद्वार में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में है, तो इसलिए ज़्यादा करके चर्चा हरिद्वार की रखेंगे। 12 वर्षों में मनाए जाने वाला कुंभ का हरिद्वार एक महत्वपूर्ण स्थान है। हरिद्वार महाकुंभ भारतीय जनमानस की चेतना का प्रतीक भी है। ऐसी मान्यता है कि हरिद्वार कुंभ मेले के स्नान से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है, और पंचांग के अनुसार कुंभ की घोषणा की जाती है। यही कारण है कि यहाँ कुछ कुंभ के आयोजन के समय करीब 3 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय व विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा रहता है, और अब कुंभ भारत ही नहीं विदेशी सैलानियों का भी आकर्षण बन चुका है। कुंभ मेले में आने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न वेशभूषाएं, विभिन्न संप्रदाय, लेकिन अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी एक आधार साम्य सत्य की खोज, इतने विभिन्न मार्गों से ये कुंभ मेला है। पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा मेला, भारत के हृदय में झांकने का एक झरोखा कुंभ मेला आनंद का उत्सव है। समस्त दुखों को भुलाकर सभी प्रकार के लोग और साधु संत बिना किसी निमंत्रण के कुंभ मेला के लिए एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला भारत का राष्ट्रीय समागम है। कुंभ एक उच्चतम शब्द है। यहाँ देश विदेशों से अनेक लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जिन्होंने भारत को जानना है या समझना है, वो कुंभ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सही अर्थों में कुंभ और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसको समझने के लिए कुंभ सबसे अच्छा माध्यम है। कुछ एक उत्सव है, कुंभ एक उत्सव भी है, और चेतना का विस्तार का कुंभ एक महायज्ञ भी है। जीव और जगत के कल्याण का कुंभ मेला 4 पवित्र नदियों के तट पर होता है। पूरब में गंगा नदी के तट पर प्रयाग में, पश्चिम में छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, उत्तर में गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में, और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर नासिक में। कुंभ मेला औसतन 3 वर्ष में एक जगह होता है, जिसमें कि 12 वर्षों में एक जगह होता है। वर्तमान में 13 अखाड़े हैं। ये सब अखाड़े अपने आप को आदि शंकराचार्य से संबंधित मानते हैं। बिना किसी प्रचार प्रसार के सब एक ही स्थान पर पहुंच जाना अपने आप में महानता है। एक ही शक्ति है जो कि संपूर्ण सृष्टि को चला रही है, और वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। बस संजय जी, अब कुंभ मेला की जानकारी संक्षिप्त में हमने दी, अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, नीदरलैंड के और सूरीनाम के लोगों को।
0: ये अच्छा संदेश आपने दिए भाई राजेंद्र जी कि कुंभ मेला पर, हमने तो अभी तक कभी कुंभ मेला गया नहीं और ये बात सुनकर के बस इच्छा हो रहा है। पर हमारे साथ में बैठे हुए शांता जी, शांता जी जो कि जाकर कुंभ मेला घूम आए हैं, कौन सा साल में गए थे ये कुंभ मेला?
2: 2003 में हम गए थे।
0: तो आप गए तो वहाँ कैसा लगा और कैसा है, जैसे कि राजेंद्र जी ने कहा कि एक महाउत्सव तथा ऐसा सुंदर रूप से और वो यानी कि एक रखा जाता है।
2: एकदम आप सही कह रहे हैं, राजेंद्र जी जैसे कहा बिल्कुल वैसे ही है कि कुंभ मेला, वो नाम शब्द कहता है कि मेला है, तो वो वाकई में मेला है।
0: दोस्तों ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो और हम सब कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश आपके लिए रख रहे हैं। और राजेंद्र जी आज का विषय जो कि रखा गया है कि 14 प्रकार के मृत्यु। दोस्तों 14 प्रकार के मृत्यु होता है और कभी आप इसके बारे में शायद सुने भी होंगे, तो आज हम सब उसी के बारे में एक दूसरे से और यानी कि वार्तालाप करेंगे तथा उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। 14 प्रकार के मृत्यु, तो अब इसके बारे में आप सुनकर डरना नहीं, क्योंकि डरने से हम सब इसके कार्यक्रम नहीं बनाया जाता उसके लिए। पर इसमें जो ऐसा हमारा भाषा है ना, हमारा भाषा इतना सुंदर रूप से है कि अगर जब हम कहीं मोहन के बलाए और मोहन ने और जवाब नहीं दिया कि मोहन कहाँ हो, मोहन पहला बार में जवाब नहीं दिया तो मोहन के दूसरा बार में हम और जोर से चिल्ला कर कहते कि मोहन किधर हो, और जब मोहन दूसरा बार भी कोई जवाब नहीं देता तो हम क्या कहते हैं कि मोहन किधर मर गया। तो मोहन चाहे जहां भी हो, हालांकि मरने के बाद यहां नहीं होता है, पर मोहन जरूर जवाब दे देते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आज हम सब 14 मृत्यु उसके बारे में बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी कुछ और उसके बारे में हम सबके सुनाने वाले हैं।
1: हाँ, जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि 14 मृत्यु तुल्य, 14 प्रकार के व्यक्ति मृत्यु तुल्य बताए गए हैं, मृत्यु के समान हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ऐसे व्यक्तियों से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य व्यक्ति हैं उनसे, उनके साथ व्यवहार नहीं बनाना चाहिए। तो जैसे कि कैसा है इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। जब श्री राम और रावण युद्ध चल रहा था तब अंगद रावण को बोला, तू तो मरा हुआ है।
0: अंगद ने रावण से बोला, यानी कि जब वो दूत बन करके गए थे ना, तो वहां उनसे कहा कि तू तो मरा हुआ है,
1: तुझे मारने से क्या फायदा, तू तो पहले ही मरा हुआ है। तो रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे? तो अंगद बोला, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लुहार का भाता भी लेता है। भाता मतलब
0: जो फिल्म में देखते है ना, जो लोहार लोग ऐसे फूकना मारता है।
1: हाँ। वो भी सांस लेता है। तब अंगद ने 14 प्रकार की मृत्यु बतलाई, मृत्यु समान जो व्यक्ति होते हैं 14 प्रकार की, तब उन्होंने वो बताई। सो अंगद के द्वारा बताई गई ये 14 मृत्यु के दौर में, ये बातें आज के दौर में भी लागू होती है।
0: तो इसके बारे में हम सब अब जरूर आगे बढ़ेंगे राजेंद्र जी, क्योंकि 14 प्रकार के यानी कि हम सभी अभी सुनेंगे कि उसमें से कितने हम सब के कोई अवस्वभाव होगा, तो शायद हम सब उन बातों को सुन करके और हम सब अपने आप के और यानी कि उसमें कुछ ना कुछ और यानी कि बदल कर सकते, क्योंकि हम किसी को बदलने नहीं चाहते, पर हम जब अपने आप में कोई गलतियां देखे तो जरूर हम उसे खुद को और बदलने की कोशिश करें। दोस्तों ये 14 मृत्यु, आप बिल्कुल उसे पे नहीं जाना, क्योंकि जो एक होता है देहांत, जो 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है हमारा, वायु आकाश अग्नि और जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों का शरीर जो काया हमारे बना हुआ है, और इसमें से जब जीव उड़ जाता है तो उसे कहते हैं देहांत, और ये जो हम सब अभी बात करने वाले हैं, तो ये है 14 प्रकार के व्यक्तित मृत्यु तुल्य, उसके बारे में बातचीत होगा। राजेंद्र जी जो कि इस समय, और मैं देख रहा हूँ शांता जी तैयार है कुछ कहने के लिए, तो उनका
2: जी जी जी अभी संजय जी ने कहा मृत्यु के बारे में ना, तो मृत्यु के बारे में नीदरलैंड्स में कुछ कह देती हूँ कि व्हाट इज द डेथ। द डेथ इज एन ऑन ओम केयर बार टू स्टैंड वर बाय अन फोर हेन लेवेंड ऑर्गेनिज्म नीट मेर ग्रोइट एंड हेन स्टॉफवेसलिंग ऑफ अंदर एक्टिव लेवेंस फंक्शन मेर हैव, दैट इज द डेथ दैट से है।
0: तो ये है देहांत, जिसे हम कहते हैं शांता जी,
2: जी
0: कि जबकि शरीर में से जो शरीर हमारा होता है ना, तो वो जैसे कि एक पिंजरा में एक पंछी होते हैं, और कहावत है कि जब पंछी पिंजरा से उड़ गया। तो राजेंद्र जी कौन सा गीत चलाने वाले हैं आप?
1: मन

0: दोस्तों ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और विषय जो कि 14 प्रकार के मृत्यु, मृत्यु तुल्य कहा जाता है। और जैसे कि आप अभी राजेंद्र द्वारा उनसे सुने कि अंगद द्वारा रावण को बतलाई गई ये बात, आज के दौरान में भी यदि किसी अव्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक और दुर्गुण भी आ जाता है तो वे मृत्यु समान हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम सब 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे भाई रूपचंद जी ने और फोन करके और कहने लगे कि भाई अति सुंदर लग रहा है पर अभी तो कार्यक्रम प्रारंभ ही नहीं हुआ है। पहला जो कि काम वश वाला, राजेंद्र जी आप ही सुनाइए कि पहला मृत्यु तुल्य क्या है।
1: पहला मृत्यु तुल्य है जो संसार के भोगों में उलझा हुआ है वह मृत समान है, जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में ही लीन रहता है।
0: यानी कि जो अपने लिए सोच रहे कि अपने लिए जी रहे हैं और अपना मनमाजी कर रहे हैं तो वो भी मृत्यु तुल्य में गणित है। जो दूसरा होता है भाई राजेंद्र जी, उसके बारे में अगर आप कुछ कह सके।
1: हाँ, जो वाम मार्गी है, जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले,
0: यानी तेह खस्ता उल्टा, जो कि जो हमें
1: जैसे हमें जब दक्षिण से चलते हैं उल्टा, तो वो उल्टा चले बाम से
0: अपने मनमानी भी।
1: हाँ, लोग जैसे राइट से चलते तो वो लेफ्ट से चलता है।
0: जैसे सरकार ने हमें कहा कि हमें ये नहीं करना है वो नहीं करना तो वो वही करेंगे।
1: वो वही करेंगे।
0: हाँ,
1: जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता है,
0: यानी कि नियमों को नहीं देखते हैं। हाँ, कोई प्रकार के।
1: हाँ, सकारात्मक एक होती है, सकारात्मक मतलब अच्छी सोच, एक होती है नकारात्मकता जो उल्टी सोच। नियमों परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं।
0: तो शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: ये भी हम घर पे भी देख सकते हैं ना, कोई बच्चे के बोलो कि बच्चे आप स्कूल जाओ या अच्छा काम करो तो
0: नहीं शांता जी, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये संदेश बच्चों के लिए नहीं है, बस हम लोग अपने जो हम लोग के हैं हम सब बड़ों के लिए, क्योंकि ऐसे बात होता है कि इसमें कुछ संदेश होता है और संदेश हम बड़ों, बच्चों तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं।
2: वो तो बात सही
0: तो
2: है पर
0: बच्चे
2: के नहीं है। नहीं,
0: पर ये
2: सभी के लिए है,
0: सभी, हाँ,
2: सभी के लिए है।
0: और खास करके ये हम सभी में कुछ ना कुछ, क्योंकि हम अपना गलती नहीं देख पाते।
2: हाँ, हम तो कभी कभी अपन मनमानी कर लेते हैं,
0: मनमानी करते रहते हैं और अपना गलती नहीं कर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम राजेंद्र जी, दूसरा जो कि वाम मार्गी, उसके बारे में जो आप बताए, पर तीसरा क्या है राजेंद्र जी?
1: तीसरा व्यक्ति जो कंजूस है, अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य में आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकिचाता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत्यु समान ही है।
0: यानी कि कंजूस, हम लोगों ने सुने, देखो सत्संग में एक बार मैंने भी सुना था कि तीन प्रकार के होते, एक चूस, एक कंजूस और तीसरा मक्खी चूस।
1: हाँ तो मक्खी चूस मतलब जो सबसे ज्यादा कंजूस।
0: हाँ, तो ये लोग भी, और यानी कि हम सबको उतना कंजूसी भी नहीं और रखना रहना चाहिए, ताकि हम सब ये जो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य बताया गया है उसमें अपना पहचान देखे और हम उससे भी, यानी कि जब हम अपने आप में देखेंगे उसे तो हम अपने आप को बदल भी सकेंगे। और भाई राजेंद्र जी, अगर जब ज्यादा नहीं पूछो तो चौथा क्या है?
1: हाँ, जैसे संजय जी आपने मक्खी चूस का जिक्र किया है तो हम चाहे कि इसको आपको क्लियर कर दे कि मक्खी चूस का मतलब क्या होता है, कितना बड़ा कंजूस होता है मक्खी चूस,
0: बता दो भाई।
1: जैसे कि आप एक गिलास में दूध पी रहे हैं,
0: हाँ जी,
1: आप नहीं, जो मक्खी चूस व्यक्ति है वो, और दूध में मक्खी गिर जाए तो वो सोचता है कि दूध में मक्खी गिर गई तो मक्खी को उठा के उठाएगा तो उसमें कुछ दूध लग गया तो उसको भी चूस लेता है और फिर मक्खी फेंकता है तो उसको मक्खी चूस बोलते हैं।
3: सही बात, सही। शांता जी, इस पे आपको कुछ कहना है?
2: नहीं, राजेंद्र जो कहा वो सही कहा, उसको
3: सही,
2: उसको मक्खी चूस कहता है।
3: बिल्कुल सही। राजेंद्र जी, बस चौथा और सुना दो ताकि हम सब फिर एक सुंदर सा अर्थ भरी गीत की ओर बढ़ेंगे।
1: जी, चौथा है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो वो भी मृत ही है, अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए।
3: और कहने के मतलब ये है राजेंद्र जी कि गरीब को मदद करना चाहिए और जो ऐसा दरिद्र होते जो औरों के मेंशन दी अंदर नीच खुनन यानी कि हॉलैंड में हम सब कहते हैं तो वो भी ठीक नहीं है और वो भी अति दरिद्र में यानी कि 14 मृत्यु तुल्य में कहा गया है।
1: हाँ, यहाँ पे गरीबी पैसा से नहीं है। गरीबी का यहाँ पे मतलब जो है धन से कम है बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान और साहस से भी है। धन से तो गरीबी दूर की जा सकती है लेकिन आत्मविश्वास, सम्मान और साहस व्यक्ति का खुद का होना चाहिए।
2: जैसे वर्देरिंग, अच्छा ये सब चीजों ना मिली अपने के ना रहे तो वो भी हैगा अति दरिद्रता।
1: जी,
3: अच्छा संदेश जो हम सबको और राजेंद्र जी और शांता जी सुनाए तो हम सब एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ेंगे। भाई राजेंद्र जी, गीत का बोल क्या है?
1: गीत का बोल है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या

भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में होता है। ये ध्यान में रख के सुनिए तो एक नया आनंद आएगा।

0: बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राजेंद्र जी, अति अर्थ भरी और सुंदर रूप से ये अनूप जलोता जी हम सबको गीत को और सुनाए। अभी आपने हम सब ये 14 मृत्यु तुल्य के बारे में बता रहे थे और चार तलक आप बता चुके हैं, पर हमें जिज्ञासा है और सुनने के, राजेंद्र जी, तो पांचवा क्या है, पांचवा मृत्यु तुल्य क्या है?
1: जी जरूर, आपका जिज्ञासा पूरा होगा। पांचवा मृत्यु तुल्य है विमूढ़, अत्यंत मूढ़, यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है।
0: मूर्ख, जो हम लोग बोले सन्नाम में दोंग
1: दन,
0: अभी आप सीख गए।
1: हाँ, जो व्यक्ति दुम रहे,
0: दम,
1: दम, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो।
0: हाँ जी,
1: जो खुद निर्णय न ले सके,
0: यानी कि बस ले सिंह ना ले ही पाता, नहीं ले पाते
1: जी, यानी हर काम को समझने या निर्णय को लेने की किसी और पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवन होते हुए भी मृत समान ही है। ऐसा व्यक्ति जिंदा होते हुए भी, जीते होते हुए भी मरा ही हुआ है, समझो।
0: ओ हो, बड़ा गंभीर बात बोल दिया आपने। शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: जी
2: हाँ, कहते हैं कि मैं से दी खेन सेल्फ रेस्पेक्टिव ऑफ दी ओक खेन सेल्फ कैनसिव एंड दी खेन एक बसलेसिंग का नेम दिस एंड ओक gelijk aan aan het dode dode persoon.
0: अब letterlijk शांता जी ऐसा नहीं कहने के कि बिल्कुल दोए पर्सोन
2: दोस्तों, maar zo is het, als je geen zelf beslissing kan nemen, altijd afhankelijk moet zijn van anderen, dan kan je ook niet vooruit gaan. Dan blijf je gewoon op hetzelfde plek zitten. Dan moet altijd iemand anders komen om jou naar voren te trekken.
0: दोस्तों, ये ज्योति का प्रकाश है और ज्योति का प्रकाश के लक्ष्य ये है कि हम अपने जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें कम से कम कोई प्रकार से और प्रकाश डाल सके। ये कहावत तो हम जानते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाते है जब परखने वाला नहीं समझाने वाले मिल जाते हैं। तो इस बात पे हमें भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमें हमारे संतों ने बहुत सुंदर रूप से संदेश हम सबको दिए हैं कि ये 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य जो है, 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य है, हमें उसमें अपने आप को पहचाने, और अगर कुछ उसमें जो हम अपने आप को पहचानते हैं तो क्या शायद हम उसे अपने आप को बदलने की कोशिश करें। ज्योति का प्रकाश के ये लक्ष्य नहीं है कि किसी को बदलना है, पर कोई अपना गलती अपने में देख सके तो वो हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, हम जो राजेंद्र जी से पूछ रहा हूँ कि भाई राजेंद्र जी, पांचवा तो आपने बड़ा गंभीरता वाला बताया कि जो मूर्ख होता है, जो अपने पसलिसिंग नहीं ले पाते, वो मृत्यु तुल्य के समान है, पर छठवा क्या है?
1: छठवा है संजय जी अजसी। अजसी यानी जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ ही है, जो घर परिवार कुटुंब समाज नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति मृत समान ही होता है।
0: बस, जो कोई प्रकार के सम्मान नहीं होता है, यानी कि जो वर्देरिंग नहीं पाता। शांता जी, आपके कभी ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, पर हमारे पास एक टेलीफोन आया था राजेंद्र जी, और टेलीफोन आया था तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खुशी नहीं हूं, मेरा भाई बंधु भी मुझसे जलते हैं ना, मुझे और यानी कि कोई प्रकार के सम्मान नहीं देते हैं। तो भाई जी, आपके लिए बस यहाँ भी कुछ लिखा हमारा, क्योंकि हमारा विषय रखने वाले हैं, हम सबके लिए विषय को बना करके और देते हैं, और ये विषय जो कि हमारे संत मुनियों को लिखा हुए है और वो हम सबके लिए खोज खोज करके रखते हैं, इस पे बताया गया है कि भाई केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता है, केवल रक्त यानी कि खून के संबंध से अपना नहीं होता है, प्रेम सहयोग विश्वास श्रेष्ठता, श्रेष्ठता कहते हैं फर्त्रावन को, प्रति आभार सुरक्षा सुहानुभूति और सम्मान ये सारे ऐसा भाव है जो परायों को भी अपना बनाते हैं। तो भाई राजेंद्र जी, जैसे कि आपने छेटवा को सुनाए यानी कि द सस्त मृत्यु तुल्य को और सुनाए, तो क्यों ना हमें सैफंद को भी सुना दे।
1: जी जरूर, सैफंदक है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है वह भी मरा हुआ ही है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी जीवन का आनंद से वंचित रह जाता है।
0: अरे ये तो बड़ा समस्या हुआ, ये तो बड़ा समस्या हुआ, क्योंकि जीवित रहते हुए लोग जो ऐसे सोचते हैं कि अरे आज के दिन तो बिता, कैसे बीतेगा कल का दिन, परसों क्या होगा, और ऐसे जीते हैं। ये तो मैं मानती हूँ कि हाँ ऐसा वृतांत तो हम ढेर जानते हैं। भाई राजेंद्र जी, क्यों ना हम इस पे अगर आप जो अवसर दे तो हम कुछ इसके बारे में कहना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि पैनल के पीछे तो आप बैठे हुए हैं और आप ही के हाथ में सारा कंट्रोल है, तो इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार ऐसा हुआ राजेंद्र जी,
1: जी,
0: कि देव इंद्र ने एक और सभा को रचा।
1: जी,
0: सभा को रचा और सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, यानी कि सभी को नौता भेजा गया, और वहां पर सभी देवताओं जो कि देव्य रूप धारण कर करके और वहां उपस्थित हो गए। सभी पहाड़ों जो भी देव क्वीय रूप धारण कर करके और वहां उपस्थित हुए, सभी श्रेष्ठ नदियों भी देव्य रूप धारण के वहां उपस्थित हुए, सभी युगों भी वहां उपस्थित हुआ। सभी जब उपस्थित हो गया तो कौन आता है सबसे देर से वहां?
1: गणेश जी। कौन आता है बताइए संजय जी।
0: अब देखो राजेंद्र जी को भी नहीं पता था इस बात का। देखो वो वृतांत ऐसे यानी कि बताया गया कि वहां सबसे देर से कौन युग चल रहा है इस समय?
1: कलयुग।
0: और कलयुग आता है तो सबसे देर से आता है, और सबसे देर से वो और सभा में आकर के सबसे पीछे जाकर बैठ गए। सभी देवताओं ने एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे, कहने लगे कि समय इन्हीं का चल रहा है और आया भी तो देर से, और देर से आकर के जाकर के सबसे पाछे बैठे। तो सभी एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए जाते हैं कलयुग के पास, और कलयुग से ये प्रश्न रखते हैं कि भाई समय तो आपका चल रहा है और आप आए भी तो, और आकर के सबसे पीछे क्यों बैठे? तो कलयुग कहते कि मेरा तो दो बात है, मैं जो अपने यानी कि जो प्रेमी होते हैं हमारा, जो बड़ा आराम से सोते हैं, तो उन्हें चादर को ओढ़ाने चले जाते हूं। तो इस बात को देवताओं समझा नहीं, तो देवताओं के प्रश्न करने से कलयुग कहते हैं कि देखो जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाए ना
1: जी,
0: तो उनका एकदम मंगलमय, पर जो सूर्य उदय से पहले उठ जाए तो उनका भी
1: मंगलमय,
0: पर जो सूर्य उदय के बाद में उठने को कोशिश करते हैं उनके तो मैं खुद चादर ओढ़ाने को चले जाते हूं ताकि वो आराम से सोए, ताकि हाँ सूर्य उदय हो जावे तो उठे। तो उसमें देवताओं ने प्रश्न रखे कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई जो सूर्य उदय से पहले नहीं उठते हैं तो जरूर हमारा चादर को प्राप्त करते हैं, पर हमारे चादर में क्या बसा हुआ है? रोग। तो यही रोग हमें और बाग आगे में जाकर के सताते हैं। रोग कहते बीमारी आदि ना
1: जी।
0: तो राजेंद्र जी, हमें ऐसा जरूर इस बात पे सोचना चाहिए कि जो सदा रोगवश होते हैं तो कम से कम अपने आप में तो सुधार लावे। सूर्य अस्त ऐसा ना हो कि हो जाए तब आप उठो, सूर्य उदय से पहले उठ जाओ, अपना कार्य को करो और तब आपका दिवस भी मंगलमय होंगे। भाई राजेंद्र जी, कौन सा गीत आप रखने वाले हो?
1: हाँ, जैसा कि संजय जी आपने बताया सूर्योदय वाली बात, थोड़ा हम इस पे आधा मिनट लेंगे।
0: चलो एक मिनट ले लेंगे।
1: सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उसके बाद स्नान करके अपना जो पद्धति है पूजा पाठ की वो करें, जिसका जैसा है वो उसे करें, लेकिन इसके बाद थोड़ा योग
0: योग हाँ सही बात
1: योग आसन जरूर करें। और योग आसन अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो योग आसन, प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो योग आसन और प्राणायाम तो जरूर करें। ध्यान जब समय मिले जब कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय में योग और प्राणायाम करने से रोग मुक्त हो सकता है।
0: रोग मुक्त हो सकता है। तो जो सातवा कहावत है कि 14 और मृत्यु तुल्य में से सातवा जो है, जो आप अपने आप के बचाने के लिए आप जो कार्य करें, जो हमारे संतों ने संदेश दिए, तो आप उससे भी मुक्त हो सकते हैं। शांता जी भी कुछ कहने वाले थे राजेंद्र जी, तभी उसके बाद में फिर गीत को रखना।
2: जी, सुबह जाकर स्नान के बाद अपन कार्य जो है पूजा पाठ करने के बाद और सूर्य नमस्कार करें भी।
0: सूर्य नमस्कार
2: तो उसमें सब सब के सब योग उदलों में भी हो जाए, सब रकम कबीशिंगों में हो जाए, अति सुंदर। हाँ,
1: सूर्य नमस्कार कोई कर सके तो बहुत ही उत्तम, लेकिन जो लोग की उम्र थोड़ा ज़्यादा है या पहली बार कर रहे हैं योग, वो सम योग करें या सूक्ष्म योग करें धीरे धीरे।
2: सूक्ष्म योग क्या है?
1: सूक्ष्म योग मतलब छोटे छोटे योग जो हल्के रूप में है।
2: जी,
1: हाथ पैर को हिलाना, कंधों को हिलाना, कमर को हिलाना और ताड़ासन करना, पूरे शरीर को खींच देना, ये सब सूक्ष्म योग में आता है।
2: जिमनास्टिक
0: जी सुबह सुबह करना चाहिए। भाई राजेंद्र जी, आप अपना सुंदर सा और जो गीत को रखने वाले हैं रख सकते हैं।
1: जी, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, गीत के जो बोल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, तो अब सुनेंगे एक प्यारा सा नगमा।

0: हम सब और आठवां के ओर आ चुके हैं। चलो 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य जो बताया गया है और आठवां के ओर हम बढ़ चुके हैं, तो भाई राजेंद्र जी उसके बारे में तो कुछ बताइए।
1: जी, अभी जो आठवां के बारे में संजय जी ने जानना चाहा वो है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों असमंजस हो जाते हैं।
0: ओ, जब उतना लिफ्ट आ जाए, यानी कि जा अफंकलक हो गया लो ना।
1: हाँ, असक्षम, मतलब सक्षमता नहीं होती है, वो हो जाता है। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके।
0: अच्छा, बड़ा ये बात तो बड़ा ये थोड़ा आश्चर्य की बात हो जाए। शांता जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: इसके बारे में मेरी सासू जी, सासू माँ हरदम ये बात कहती थी, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। वो हर साइत ये बात ये कहती थी कि ये जैसे करी वे वैसे ही पाई। तो बहुत अच्छा और ज्ञान भरी के बात भी है जी। बहुत बड़का संदेश है इसमें,
0: एक
2: बहुत
0: संदेश गहरा है। जो यहाँ मेरा व्हाट्सएप बर्ख पे बबली जी भेजे हैं, इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। ये संदेश जो कि बबली जी हमें भेजे, और भाई गहार लक्ष्मी प्रसाद जो आमस्टरडम से ये कार्यक्रम को सुनते हुए बोले कि भाई ये इतना सुंदर कार्यक्रम है, तो भाई धन्यवाद आपका और सुनते रहना, बस यही कहना चाहूंगा। हम भाई राजेंद्र जी,
1: जी
0: आठवां के बाद तो नौ जरूर होना चाहिए।
1: हाँ, नौ तो जरूर होना चाहिए। नौवा है सतत क्रोधी।
0: सतत क्रोधी
1: जी, 24 घंटा क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होती है।
0: यानी कि जो व्यक्ति 24 घंटा क्रोध में रहता है और हर एक छोटा छोटा बात पे और बस अपना गुस्सा को दिखाने लगते हैं, तो ये भी 14 और मृत्यु तुल्यों में भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, हम जो ये 14 मृत्यु तुल्य के बारे में और बातचीत कर रहे हैं, और हमारे भाई राजेंद्र जी भी यहाँ उपस्थित है, हम सबके अपना संदेश जो दे रहे हैं, और शांता जी इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो सतत क्रोधी,
2: ऐसा व्यक्ति से तो दूर रहना अच्छा है।
0: आप कभी क्रोध नहीं होते?
2: मेरा स्वभाव नहीं क्रोध होने के लिए।
1: लेकिन कभी किसी के कारण क्रोध करना पड़े तो आप क्या करते हैं?
2: मैं क्रोध नहीं करती हूँ, मैं शांत से
1: तो
2: नहीं करती हूँ, नहीं आता क्रोध मुझे, नहीं आता तो मैं शांत से उसको देख कर समझ बूझ कर अपने आप में आ जाती हूँ।
1: लेकिन अभी अगर कभी किसी से क्रोध करना भी पड़े तो बाहर से करना, अंदर से नहीं।
2: अच्छा।
1: रूप से।
0: चलो दसवां और रूप बता दो भाई राजेंद्र जी की। दसवां रूप जो है
1: अदखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करने की धन प्राप्त करना चाहिए। मेहनत और कमाई का जो धन होता है वही प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है, और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोद की प्राप्ति होती है।
0: राजेंद्र जी,
1: जी
0: यानी कि इस बात से आप ये कहना चाहेंगे कि जो पाप व्यक्ति पाप कर्मों से और कमा करके अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं, तो परिवार वाला भी उसमें दोषी बन जाते हैं।
1: जी,
0: तो ये तो भी ठीक चीज नहीं। दोस्तों, ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम हम सब चला रहे हैं, और आज का और यानी कि विषय 14 मृत्यु तुल्य है। 14 मृत्यु तुल्य और इसमें से कितने हम सब उसमें सुन करके और उसमें अपने आप को देखते हैं कि 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य है, क्योंकि कहावत है कि ये जो जिंदगी ये जीना कितना सुंदर रूप है। हम जब ये जीने का ये जीवन के जीने का तरीका सीख ले तो हम सबके जीवन कितना आराम ही आराम होगा। हमें जो अभी आपने और सुनाए जो कि दसवां था ना राजेंद्र जी,
1: जी दसवां,
0: तो दसवां में से अब हमें 11वां के ओर छलांग लगाना है।
1: जी जरूर, 11वां है तनु पोषक। तनु पोषक यानी ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्म संतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हो कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले, वे मृत समान ही होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है।
0: यानी कि जो लोग खाली सिर्फ अपने के कबूल है, ओके शांता जी,
2: एक हो स्त्रीलिंग,
0: हाँ, जो स्वार्थी होते हैं,
1: स्वार्थी,
0: तो वो भी मृत्यु का समान होते हैं। तो भाई हमें इस बात से, इस संदेश से जरूर कुछ सोचे कि क्या हम हमारे में कितना स्वार्थी तथा कितना जो एकोविश्म है उस पे और कुछ प्रकार से प्रभाव हो सके, ताकि हम उससे भी और यानी कि पहचाने अपने आप में। क्योंकि ऐसा हुआ ना राजेंद्र जी, एक मेरा मित्र था और वो कह रहे थे कि हमसे एक वृतांत को सुना रहे थे, तो वृतांत जो था ऐसा हुआ कि उसका दद्दू, हम लोग कहते आजाना,
1: आजा,
0: तो उन्होंने कहा कि मेरा दद्दू सभी के कमरे में एक दर्पण लगाए हुए थे, पर सभी के कमरे में एक छोटा छोटा सा दर्पण, यानी कि दर्पण कहते हैं शीशा,
2: आईना।
0: तो सभी के कमरे में छोटे छोटे था और वो दर्पण, पर उन्होंने अपने कमरे में बड़ा सा और दर्पण रखे थे, यानी कि जिसे अपना पूरा शरीर को और देख सकते थे। वो जो वृतांत था कि उन्होंने कहा कि अपने कमरे में बड़ा सा दर्पण रखे, और ये बड़ा आसान होता है किसी और के ऊपर उंगली उठाना, पर कभी अपने आप से ये प्रश्न किए हैं कि क्या

0: कभी गलती से हमसे कोई कार्य ना हो गया कि ताकि औरों को दुख पहुंचे हुए। शांता जी, इसके बारे में आपका कुछ कहना है?
1: जी हाँ, यही कि कुछ कहने से पहले सोच लो कि क्या कहना है, कि ऐसे ना हो कि ऐसे कुछ शब्द निकल जाए और बाद में पछताना पड़े तो बहुत दुख होगा।
0: ऐसा भी होता है कि कभी कभी गुस्सा में लोग ऐसे ऐसे शब्दों को बोल देते हैं, तो ना कि सिर्फ दुख पहुंचता है पर कभी रास्ता ही लौटने का भी गुप्त हो जाता है। तो भाई राजेंद्र जी, आगे बारहवा की ओर हम बढ़े।
2: बारहवा की ओर बढ़ते हैं। बारहवा है संजय जी, निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। निंदा करना मतलब पीठ पीछे बुराई करना किसी की।
0: अरे राजेंद्र जी, निंदक कौन नहीं आजकल? जिसके टेलीफोन में व्हाट्सएप है तो वो निंदक नहीं है? जहाँ कोई के बरिख और यानी कि कोई संदेश सुन लेते हैं
2: जी,
0: तो बस बुराई जो होता है तो एक लोग के पास नहीं भेजते हैं, लाखों के पास।
2: तो मरे हुए समान है, इसलिए हमको निंदक नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, ज्ञान भरी चीज भेजनी चाहिए, निंदा वाली नहीं। जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है, जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत समान ही होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का बंधन होता है।
0: अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा बुरा बात है। अब जो लोग बेचारन सोचे कि कोई की निंद्रा सुनी और व्हाट्सएप से एकरे अरे दुई गो के तीन गो के औरों के पास खूब भेजे हैं, तो वो सब भी इसमें शामिल हो गए। भाई जोर से नहीं कहूंगा, कभी काल के हम भी तो कुछ ना कुछ भेज देते आगे, पर इस बात को सुनकर अपना गलती और देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब ज्योति का प्रकाश आपके लिए और तैयार करते हैं। आप उसमें से कुछ ना कुछ संदेश जो हम सब के लिए खोज कर रखा जाता है, उसमें से हम सब अपने आप तथा औरों के साथ बांटते हैं और कुछ ना कुछ संदेश उससे हम अपने लिए कोई प्रकार से लाभदायक हो। हमारे साथ जो देने वाले हैं भाई राजेंद्र जी, वो तो तैयार हो गया है 13वां और मृत्यु तुल्य के ओर बढ़ने के लिए। पर शांता जी भी कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ कहेंगे शांता जी आप?
1: जी जी कहूंगा। ये समय की बात है ना, समय तेजी से समय कहते हैं। द तेत इज ग्रातिस मार ओन बतालबार। तेत ये कान है नीत एगनन मार वेल गब्रुकन। तेत ये कान है नीत बवारन मार वेल खुद बस्तेदन। तेत सोद्रा हेत फोरबे इस कोमत हेत नोइत मेर तुरुग। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वालों, आप सुन रहे हैं कि वक्त कितना बलवान है, कितना महान है, वक्त के कदर करना चाहिए।
0: भाई राजेंद्र जी आगे
2: है 13वां है परमात्म विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत समान ही माना जाता है।
0: जो भगवान में नहीं विश्वास करे
2: जी,
0: जो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है
2: जी,
0: तो यही तो है मुश्किल। कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो सोचते हैं कि हाँ हम आए हैं तो हम ही सब कुछ है। तो भाई इसमें भी वृतांत बताया गया है कि 14 मृत्यु तुल्य में उसके बारे में भी। भाई राजेंद्र जी आगे
2: 14वां
0: चतुर्दशी, हाँ उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, जो 14वां है वो है श्रुति। श्रुति यानी संत विरोधी,
0: जो संतों से विरोध करते हैं।
2: हाँ, जो संत ग्रंथ, संतों से, ग्रंथों से, पुराणों से इनका सब विरोध करते हैं, वह भी मृत समान ही होते हैं। श्रुत और संत ब्रेक का काम करते हैं।

0: जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं 120 की स्पीड पे और बीच में अचानक डिवाइडर आ जाए, वो ब्रेकर आ जाए, तो एकदम रोकना पड़ता है। तो ऐसे ही ये लोगों के अनुसार ब्रेकर का काम करते हैं।
1: यानी कि जो हमारे संतों और ग्रंथों के यानी कि निंदक होते हैं ना
0: जी,
1: और उनके उन्हें उन्हें मानते भी नहीं, तो
0: मानते
1: ये
0: भी नहीं और मनवाने मानने भी नहीं देते दूसरों को,
1: यानी कि उस पे अपना वाला सुनाने के लिए और औरों को मानने से रोकते हैं
0: जी।
1: तो दोस्तों ये था 14 प्रकार के मृत्यु तुल्य के बारे में जो हम सब के साथ भाई राजेंद्र जी और यानी कि अपने संदेश को बांटे। हम सब एक सुंदर सा नगमा के ओर बढ़ेंगे, सुंदर सा गीत के ओर बढ़ेंगे।
0: सुंदर सा जो गीत है उसके बोल हैं

0: राजेंद्र जी अति सुंदर गीत को रखे और जिससे हमारे भाई रूपचंद जी और बोल रहे थे कि भाई क्या कह रहे थे राजेंद्र जी?
1: हाँ, रूपचंद जी कह रहे थे कि बहुत मोए लगा गाना हमको, जो 14 प्रकार की मृत्यु है वो बहुत विशाल लगा।
0: तो यानी कि भाई रूपचंद जी समझ
1: गया, बहुत गंभीर विषय रहा बता रहे थे।
0: तो भाई एक बात और कहना चाहूंगा कि जब अपना दिन शुरू करते हैं, जब अपना दिन शुरू करते हैं, अपनी जीप में 3 शब्द रखे, कोशिश, सच, विश्वास। यानी कि ये 3 शब्दों अपने जीप से रखे कि आज मैं कोशिश करने वाला हूं, आज मैं सच कहने वाला हूं, आज विश्वास के लिए। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, और विश्वास भगवान में रखे, तब सफलता आपके पैरों को पर
1: चूमेगी।
0: इसी बात से भाई राजेंद्र जी की हम सब 14 प्रकार के मृत्यु हम सब रखे कि 14 प्रकार के मृत्यु जो हमारे संतों मुनियों ने हम सब के लिए विचार करके और रखे हैं, तो उसी के बारे में बातचीत हुआ। आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, पर कोई कहीं और बैठे होंगे, कोई अपने घर से बैठे हैं, कोई कार में सुन रहे हैं, कोई अपने मोबाइल से सुन रहे हैं। तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो हर समय आपके लिए 2400 घंटा आपके साथ रहते हैं। इसमें जरूर ये कहना चाहूँगा कि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है। जब कोई काम कोई कार्य करे तो ये मत सोचना कि हाँ कोई प्रकार से चित्रगुप्त जान नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य साक्षी होते हैं, चंद्रमा साक्षी होते हैं, अंधेरा भी साक्षी होता है
1: जी।
0: तो हम ऐसा कार्य करें कि हमें उसे डरना नहीं चाहिए। और ये भी कहावत है कि और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। इसी दोनों अंतर को जब हम समझ जाए तो हमारे जो ज्योति का प्रकाश, जिसका हम सब ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा से भी प्रकाश हो जाए। भाई राजेंद्र जी, आप कौन सा गीत को रखे हुए हैं?
1: जो गीत रखे हैं वो है बच्चों का,
0: पर अभी उस ओर बढ़ना नहीं
1: जी,
0: क्योंकि शांता जी तैयार हो गया है कुछ कहने को।
1: जरूर जरूर शांता जी कुछ कहेंगे।
2: हाँ, यही कहूँगा, ये जो संजय जी ने कहा ना कि कोई देख रहा है, कुछ भी करो कोई भी देख रहा है, तो सबसे पहले कोई देख रहा है वो अपना आत्मा है जो देख रहा है, और उस आत्मा भी धिक्कारता है कि अगर तू कुछ बुरा काम कार्य करेगा तो वो भी धिक्कारेगा, और जो कर भी लोगे ना तो वो आपका आत्मा में शांति भी नहीं आएगा, वो हर बार आपको कोसते रहेगा, सोचते रहेगा कि क्यों किया।
0: तो भाई राजेंद्र जी
1: जी,
0: ये कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश है, हमारे बच्चों के लिए आपने क्या रखे?
1: बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रखे हैं, बोलो राम अजराम।
3: दादी दादी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, जंगल में जा तो मुझे डर लगता है।
4: स्कूल नहीं जाओगी तो होनहार कैसे बनोगी? मैं छोड़ने आती पर पैर में चोट जो लगी है।
3: नहीं, मुझे बहुत डर लगता है।
4: इसमें डरने की क्या बात है बेटा? अगर डर लगे तो अपने भाई को बुला लेना।
3: मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है।
4: अरे ये तो है तेरा भाई राम, वो जंगल में रहता है, बस उसे आवाज दो वो आएगा।

0: मास्टर जी ये तो जादू टोना है, बेर खत्म ही नहीं हो रहा है।
1: ये बेर कहाँ से लाई है? तो
2: मेरे जंगल वाले भाई राम ने दिया है।

0: बोले राम आजा राम, ये गीत हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए पेश की, यही सोचकर कि वो सभी को पसंद आए होंगे।
1: तो चलो ये वृतांत को सुन लेते कि जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों ये फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब ज्योति का प्रकाश आपके लिए लेकर के यहाँ उपस्थित है। आज हमारे कार्यक्रम में भाई राजेंद्र जी, जो कि हमारे सभी सुनने वालों जिसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो गीत को आप रखेंगे, अब पता नहीं आज रख रहे हैं आप या नहीं रख रहे, पर
2: जी जरूर रखेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा, तो जो हमने अभी इससे पहले जो गीत सुना बच्चों का,
1: हाँ जी,
2: वो बहुत ही मधुर वाणी में रहा, बोले राम राजा राम बोले राम, बच्चों ने बहुत ही मधुर वाणी से गाना सुनाया और अपनी दादी माँ को, अपने मास्टर जी को, और इससे हमको ये संदेश मिलता है कि बच्चे मन के सच्चे, जैसे बच्चे और भगवान एक ही रूप में माने जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में किसी भी प्रकार का किसी के लिए कोई दोष नहीं होता है। तो अब हम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले, कुछ लोगों ने संदेश भेजा है कि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, उनमें से कुछ लोग हैं रूपचंद जी, शिव किशन जी, पंडित गंगाराम जी, शांता जी, बैजंती माला जी, अंचला जी और देवी प्रसाद जी। तो अब हम एक सुरनाम, हमारा प्यारा देश बहुत ही अच्छा गाना है और इसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
1: राजेंद्र जी मैं देख रहा हूँ यहाँ शांता जी बड़ा बेचैनी से और मिक्रोफोन की ओर देख रहा है, क्योंकि सुरनाम से कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं लोग।
0: 18,000 किलोमीटर सुरनाम से भी वहाँ पे शर्मिला खेमाई जो है वो भी
1: आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो शर्मिला जी को भी बहुत से धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी प्रकार से कार्यक्रम को सुनते रहना, क्योंकि हमारे ये फाहोन हिंदुस्तानी, जो धूप है या वर्षा, गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, फाहोन हिंदुस्तानी है आपके
2: साथ।
1: तो हम सब एक भाई राजेंद्र जी
2: जी
1: चला दो
2: जी।

आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश सुनने के लिए। आशा उम्मीद है हम जैसे अपना प्रोग्राम बनाए सजाए आपको पसंद आया होगा। आपके सेवक और सेविका संजय जी, राजेंद्र जी और शांता जी, धन्यवाद सुनने के लिए। और शुभ रात्रि, आप सबको अपना ख्याल रखना।

लागी छूटे ना अब तो सनम, जब हम इस धुन को सुन रहे हैं दोस्तों सुनने वालों, तो हम ये बात को जान गए कि हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति के ओर पहुंच चुके हैं। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाला जो यानी कि हमारे तेमा को लिखते हैं देते हैं रत्ना जी, हमारे कार्यक्रम के यानी कि कैप्टन जो पनेल के पाछे है राजेंद्र सिंह जी, हमारे दूसरे स्टूडियो में जो भाई राजेश बदलू जी जो हम सबको सहयोग देते हैं, और शांता खेमाई जो अपने ओर से हमें सहयोग दिए है। हाँ, मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही है कि अगले हफ्ता आप सुनते रहना। नमस्कार।

भूल जाने से ये खाता घट जाता है। और इस कलयुगी समय में मित्रों, हम सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए।

इस दुनिया में हर एक देश में कोई ना कोई आपत्ति यानी बाढ़, तूफान, बीमारी इत्यादि होते ही रहते हैं, तो हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। कहे जाते हैं ना, मनुर्भवः।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाहुन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, प्रिय प्रिय सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। आज इस खूबसूरत दिवस पर स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। उपस्थित हो गई हूँ स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम लेकर यहाँ से आरंभ करने को जा रही हूँ। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक शुभ दिन आप सभी के लिए। आरंभ करने जा रही हूँ स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम और यहाँ से शुरुआत करेंगे देन हाँ के रहने वाले श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से। यहाँ से हम श्रवण करेंगे हनुमान चालीसा।

राम जी के चरणों में ध्यान होता है, राम जी के चरणों में ध्यान होता है, इसके दर्शन से बिगड़े हर काम होता है। हनुमान चालीसा के साथ यहाँ से आरंभ किया गया है स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम, पेश किया गया है देनहा के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से। सुरनाम अली फोर्नो मैन का नाम हुक इनर गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर ये खूबसूरत दिवस में भजन माला प्रोग्राम में शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कहते हुए

सत्यम शिवम सुंदरम, हर ओर सत्यम शिवम सुंदरम, हर हृदय में, हर हृदय में हर हर है, हर हर महादेव। सुंदर सा भजन पेश किया गया है श्री नाम अली फॉर्नो मैन कंडाम हुक इंदिरा गांधी वैक से, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से, श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से। शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस हम सभी के पेश करते हैं। देन हाँ से खमेंता राजलेट श्रीमती लेन बाबू राम जी के ओर से सुनेंगे।

हे भगवान, हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। आप अपनी कृपा मुझ पर, हम सब पर अवश्य बनाए रखना। पेश किया गया है दनहा खमेंत राजलित श्रीमती लैन बाबू राम जी की तरफ से।

जिनके हृदय श्री राम बसे पेश किया गया है दिनांक मकाईस रात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन फरेनिंग अलगमेन हिंदू ऑनरवेज के तरफ से Den Haag Knutelstraat nummer 10 se Sansta Hindi Prachar jo parivar Chan Gurbin ke nirdeshyo mein hai Shraddha Bhakti ke saath

मुझको प्यारे राम। पेश किया गया दिनांक 1/9/1970 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देशों में श्रद्धा भक्ति के साथ हमने यहाँ मिलकर श्रवण की है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम जो आपके लिए पेश किया जाता है। रोटरडम होगफ्लीट टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर से साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रात 6 तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से हम यहाँ श्रवण करेंगे।

उस्ताद रॉबी उदित राम जी की आवाज में इतनी सुंदर से कह दिया है कि फूलों से तुम हंसना सीखो और सूरज के किरणों से जागना और जगाना। पेश किया गया है रोटरडाम होक फ्लिट टेक्सस वेख नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्ट्रैट 46 से श्री सरस्वती माता भवन से श्री पंडित मंडली सभापति श्री पंडित सुभाष महा श्री पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से हमने यहाँ से श्रवण की है ये सुंदर सा भजन रॉबी उदित राम जी के आवाज में। सुप्रभात कहते हुए सभी सुनने वालों के तनाखलाइस कफेन फोर पारक से बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव जो श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण के निर्देश में है हम यहाँ से श्रवण करेंगे। इस बार फिर है उदित राम बस के इस बार है जगदीश उदित राम जी।

कोई छुप कर पुण्य करता है, कोई छुप कर पुण्य करता है तो कोई पाप करता है। हम इंसानों को ये चेतावनी है कि ऊपर हमारा भगवान बंद आँखों से हमें देख रहा है। सुंदर सा भजन यहाँ से श्रवण की हमने और पेश किया गया है Den Haag Lijskafeen voor Park से बाउ एंड अंडरहाउस बदरेव, इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, इनके तरफ से हमने श्रवण की है। आपको लेकर चलते एक बार फिर Den Haag Lijskafeen voor Park से सुंदर ग्रोथ हैंडल इन ग्रोंते एंड फ्रूट, इनका मालिक है परशुराम मोहनलाल, इनके तरफ से हम श्रवण करेंगे।

हर हर महादेव, हर हर महादेव। आत्मा को निरंतर साफ करते रहो, परमात्मा अपना इष्ट को निरंतर याद करते रहो। पेश किया गया देन आखलाइस कफेन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथहांडल इन ग्रोंते एंड फ्रूट। इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल, श्रीमान परशुराम मोहनलाल के तरफ से यहाँ से आपके लिए पेश किया गया देन आखलाइस कफेन फोर पार्क। एक बार फिर आनंद अर्जुन शर्मा ग्रोथहांडल पेफे के तरफ से।

शिव बालक जी की आवाज में पेश किया गया देन आखलाइस कफेन फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा खरूत हांदल बेफे के तरफ से। फाहोन रेडियो के डायरेक्सी स्टाफ पर्सोनेल सभी फ्राइविलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी प्रिय आत्माओं, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते यहाँ से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं।

अवश्य अवश्य सबका मंगल होवे। फाउन रेडियो के डायरेक्टर स्टाफ पर्सनल सभी फ्रीवेलर्स के तरफ से आपके लिए तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते यहाँ से आपके लिए चला दिया गया है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। पेश किया सेविका शांता जी, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक शुभ दिन आप सभी को।

या सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय आत्माओं, प्रिय भक्तजनों, प्रिय प्रिय सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस खूबसूरत दिवस में। सेविका शांता जी, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम नमस्कार। इनहेल हुई मोर्गा आयुली आलन। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। यहाँ से आरंभ करने को जा रही हूँ अभी का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम। ये आशा उम्मीद है कि आप जहाँ से हो, जहाँ पे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। और जो कम खुशहाल में है उनके लिए यही दुआ प्रार्थना है कि वो भी खुशहाल में हो जाए जल्दी से। आरंभ करने को जा रही हूँ और पहला स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम से यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। देनाख के रहने वाली श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से हम यहाँ सुनेंगे हनुमान चालीसा।

श्री हनुमान चालीसा से यहाँ से आरंभ किया गया है। आप सभी को मेरी भी राम राम, सभी सुनने वालों की तरफ से सभी सुनने वालों को राम राम किया जाता है। पेश किया गया है दनाक से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी के तरफ से शुभ प्रभात कहते हुए आपको हम लेकर चलते हैं इस बार दनाक मका इस्तरात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहुन फरेनखें अल्खमेन हिंदू ओंदरवेस के तरफ से श्रवण करेंगे।

अवश्य अवश्य सुन मोरे देवी, पर्वत निवासनी पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों। देन हाँ, मका इस तरह नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन फरीनखें अलखमें हिंदू अंदरवेस के तरफ से। देन हाँ, एक न्यू तो स्तरात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो चार परिवार चांद गुरबीन के निर्देश में है, श्रद्धा भक्ति के साथ हरि का भजन।

वाक्य में हरि के भजन बिना मिले ना शुभ खबरिया पेश किया गया है देन हाँ से देन हाँ नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देशों में है आपको लेकर चलते हैं रोटरडाम होपफुली टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्ट्रैट 46 से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से सुप्रभात कहते हुए सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के

अवश्य अवश्य कोई ना ले जाएगा बांध के गठड़िया। अवश्य ये बात तो सही है, जो आप ले जाएंगे जो मैं भी ले जाऊंगी वो है हमारा अच्छा ही कर्म और बुरा कर्म जो हम कर रहे, हमारा कर्म के अनुसार हम वही ले जाएंगे। पेश किया गया है रोटरडैम होपफुली टेक्सास वैक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर, संस्था जागृति, संस्था हिंदी सेवा संघ, श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्ट्रात सेशन फेयर तक से, श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से। यहाँ से हमने मिलकर और श्रवण कर लिए ये सुंदर सा भजन। आपको लेकर चलते हैं देन हाग लेस कैफेन 4 पार्क। देन हाग लेस कैफेन 4 पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोथांदल, ख्रोथांदल बेफे के तरफ से पेश है।

धन्यवाद नमो नमो लक्ष्मी महारानी रसिका दीनदयाल जी के आवास में यहाँ से हमने मिलकर और श्रवण कर ली है। पेश किया गया है दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा खरो थांदल बेफे के तरफ से इस बार है दनाख के रहने वाली श्रीमती लन बाबू राम जी की तरफ से। श्रीमती लन बाबू राम जी की तरफ से हम श्रवण करेंगे हनुमान भजन।

Den Haag के रहने वाली श्रीमती लैना बाबूराम जी की तरफ से यहाँ से हमने श्रवण की सुंदर सा हनुमान भजन। श्रीमती लैना बाबूराम जी जो हमें इंतरात से लेते भी है, आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर Den Haag Leskaveen Voor Park। Den Haag Leskaveen Voor Park से सुंदर ग्रोथ हैंडल इन ग्रोथ एंड फ्रूट। मेरे प्यारे सुनने वालों, इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी, श्रीमान परशुराम मोहनलाल जी के तरफ से हम यह श्रवण करेंगे सुंदर सा भजन।

लक्ष्मण सिंह जी के आवास में कोई ना ले जाइबे, कोई ना ले जाएगा भी बांध के गठड़िया, आप जितना भी चाहो उतना कमा कर धर लो। हाँ, मटेरियल कमाना वो तो आवश्यक है जीवन में अपना काम लगाने के लिए, बल्कि स्पिरिचुअल कमाई वो आपके साथ जाएगा। वही तो गठड़िया जो हम कमाएंगे, मटेरियल गठड़िया तो वो ना जा पाएगा।

अवश्य अवश्य सबका मंगल होवे है, यही प्रार्थना है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से कि जितनी प्राणियां हैं जहाँ पे है, जिस हालत में है, ज़रूर से उनके ऊपर हमारे ईश्वर की दृष्टि होवे। 8:01 गुजर गया है, यहाँ से विज्ञापन, विज्ञापन के बाद आपसे ज़रूर से मिलेंगे।

यही उम्मीद है कि सिर्फ दिल नहीं हम मेरी, बल्कि आपके दिल भी वैसे ही गाता रहे मेरे दोस्त, गाता रहे मेरे दिल। फिल्म गाइड से निकाल दिया गया है और ये फिल्म नेखंती फैफन सेस्तक में पिक्चराइज किया गया है। और फिल्म गाइड के पास बात आपको लेकर चले हम मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत पल में कि मेरे मन की गंगा और फिल्म संगम से नेखंती फैफन सेस्तक ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है।

की जमुना सा बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

ये बात हुई ना कि होगा होगा और जरूर होना ही चाहिए संगम। मैं ये कहती हूँ संगम तो होना चाहिए, पर किससे होना चाहिए ये भी समझ बूझ कर, और बंधन में बांधो मेरे यारो। सहेली हो यारो हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, सहेली है जो भी बंधन है, ये संगम जो है इसे समझ बूझ कर रिश्ता जोड़ो। फिल्म संगम से हाँ हाँ छलांग तो मार दी इस बार, चले सुने याहू।

या माय दोस्त, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जाए जा कहे, नेवर माइंड नेवर माइंड। और उसके बाद कि आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म गाइड से फिर एक बार से

जी ले भैया जी ले, मरना तो एक दिन तो है, पर आज जो मिले हैं ये जीवन, बहुत प्यार के साथ ये जीवन हमें मिले है, मिला है। और ऐसे अभी कई अन्य शिशु को जन्म जो हुआ था है, तो उनको भी हार्दिक से स्वागत है ये।

रुको रुको तो जरा, इतना जल्दी जल्दी तो ना होना चाहिए। अजीब दास्ता, हाँ अजीब दास्ता है ये रिश्ता, ये सभी जो है कि हम कभी कभी ऐसे रिश्ते में पास पास में बैठे रहते हैं, और आजकल तो मोबाइल जो है ना पास पास में बैठे रहते हैं, पास पास में सोते रहते हैं, एक बिस्तर में सोते रहते हैं, पर अजनबी की तरह जीवन गुजार रहे हैं। मैं कहती हूँ समय के देखकर मोबाइल जो है ना वो कभी कभी अपने से दूर करके अपने प्राणी की, अपने घर के निवासियों को, पति के, पत्नी को, बच्चों को, परिवार को थोड़ा से ध्यान देना, थोड़ा से प्यार देना। नहीं तो एक ही छत के नीचे रहकर अजनबी की तरह जीवन गुजारेंगे। ये होता है तो इससे हमें बचना है, और उसके बाद बस ये हो।

जाने वाले गीत आपको सुना दी है लता जी, और फिल्म का नाम, जी हाँ आप हमेशा पूछते हैं कौन सा फिल्म है, तो ये फिल्म का नाम है जो आपने सुने, मैं भी सुनी दिल लगाकर और सुनी, फिल्म का नाम असली और नकली मेरे दोस्त। असली और नकली नेखन तीन ट्विंस एस्ता के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ कौन असली है कौन नकली है ये समय के अनुसार सब पर्दे से बाहर आ जाता है। असली नकली के बाद चलते हैं सुनने के लिए फिल्म काला बाजार से, और दो साल पुराना गीत है ये है नेखन तीन सेस्तक के। हाँ नेखन तीन तीन सेस्तक के बाद दो साल पुराना नेखन तीन सेस्तक के काला बाजार से निकाला गया है ये गीत।

पे सही गीत चलाना कितना आवश्यक थे मेरे दोस्तों, कि खोया खोया चांद कितना रोमांटिक गाना, बस आपके लिए सिर्फ आपके लिए पेश हो रहा है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। उसके बाद हाँ, 5 बरस और पुराना हम आपको गहराई में ले चलते हैं। जितनी गहराई में हम जाएंगे उतने ही चमकदार हीरा हमको मिलेगी। इस बारे प्यार हुआ, इकरार हुआ, सिर्फ 420 में से।

मन्ना दे और लता जी की आवाज में। जैसे आपसे बताए फिल्म 420 पे 1955 तक में ये पिक्चराइज हुआ फिल्म। हाँ, ये गीत मैं अभी रोकती हूँ, ये बात आपसे कहना है, इसलिए मैं रोक रही हूँ ये गीत। लेट अप योर मनीर खुरुई अप योर वेस। हाँ, अपने ही ढंग से अपना रास्ता कायम करो। तो मैं बताती हूँ, चार ऐसा है, चार ऐसा जैसे आप सोच सकते हैं और जैसे चार किस्म के लोग हैं। तो पहला है जो ड्रोमर है, हाँ वो सपना देखते हैं। तो अगर ड्रोमर को सुनिए जी, ड्रोमर कैक नार मोखलक हेदन, ड्रोमर कैक नार मोखलक हेदन एन एरफारिंगन एन स्टर्क काउंटन फन ड्रोमर डिजाइन। ze zijn creatief, verbeeldingskracht hebben ze en reflectief zijn ze. En ook nog gevoelig voor ervaringen. Ze allemaal sterke punten. Ha? En de valkuilen van een dromer die zijn blijf hangen. Blijven hangen in hun ideeën en moeite hebben met keuzes maken, ook nog verlies in focus. Dat zijn de kenmerken, sterke en valkuilen van een dromer.

आपके लिए चुन चुन कर और लाया जाता है आपका फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे दोस्तों, सही टाइम पे सही गीत चलाना कितना अच्छा लगता है और हम उसमें डूब जाते हैं, यादें जो है ताज़ा कर देते हैं। एर कॉम्प्ट मोमेंट अचेनित हार दरख्वात फैक्तन, ये बात तो सही है। दर कॉम्प्ट मोमेंट अचेनित हार दरख्वात फैक्तन मार स्टीलर खत लॉस लातन एंड लॉस लातन दैट इज सेर बलांगरेक द फरलिख्त यू खत अनहेल अंदर खफूलंस

मोय है, मोय इंस्ट्रूमेंटल सैक्सोफोन पे बजाया गया है कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, तेरा इंतजार है। हाँ वाकई में 9:02 गुजर गया है, इंतजार है श्री पंडित राजकुमार महातम।

0: इंतज़ार जिनका था वो आ गया है। तो यहाँ बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को हम स्वागत कहते हैं। पंडित जी, आपको हार्दिक से स्वागत है और स्वीकार कीजिए हम सभी का प्यार भरा नमस्कार।
1: धन्यवाद जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाश में आप पंडित जी।
1: हरि ओम महादेव नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणोपरो देवा सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुजि श्यामल कोमलंगम सीता समारोपितवाम भागम पाणु महासायिके चारुचापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः स्वाय च सुतराय च मोक्षुक्षरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वालू प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वालू प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार और अत्यंत स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहां तक हमारा आज पहुंचे आप सभी को जाकर थाविक मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके रेडियो फान के जो मालिक हैं मैं उनके भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया है धन प्रचार करने के लिए। हम आप हर बुध की तरह आज भी कीर्तियाना ले रहे थे जहाँ पर रेडियो फान को माध्यम से संता जी ने कितने अच्छी ढंग से हमें आपको स्वा कर रहे थे उनको मैं भूरी भी धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आकाशवाणी के सुनने वाले जैसे भी संता ने संकेत कर दिया ना कि आने वाले शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी है, वो गाथा तो आप सब जाने, खाली हम कुछ संकेत करके तब दूसर कथा को चलते हैं। हम वहां कई बार गाथा सुने हैं, इस पे थोड़ा ध्यान करना है। कृष्ण भगवान 12 बजे रात्रि का अवतार लिए ना, और प्रभु राम 12 बजे दिन के, व्हाट इज फर्स्ट कल, इसमें क्या अंतर है आकाशवाणी के सुनने वालों? फिर से बात, प्रभु राम 12 बजे दिन के कहां पर उतार लिए? राजा दशरथ के महल में। और कृष्ण भगवान कहां पर उतार लिए? कंस के कारागार में 12 बजे। इसके अनेकों अर्थ है, ही फिल बते कनेश। एक अर्थ ये है, तत्वत रामायण में लिखा गया है कि 12 बजे मानव के मनुष्य को भूख सताते हैं पवित्र करने के समय। हमारी परंपरा है ना, छोटे से हम लोग कह रहे भैया 12 बजे ना जाइयो पेड़ पर, 12 बजे पर सीठी, 12 बजे ना जाइयो। हम आप छोटे सुने ना, और 12 बजे रात्रि के जो है ना, तो मनुष्य के काम सताते हैं। तो इसी कारण दोनों समय पवित्र करने के लिए 12 बजे दिन 12 बजे रात। अवतार का अर्थ क्या है? अवतार, अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना, ये बात आप जानते हैं। और कृष्ण भगवान और प्रभु राम लोग हमेशा संदेह में पड़ जाते हैं, त्रिफलाक्त में पड़ जाते हैं कि राम बड़ा है कि कृष्ण बड़ा है, लेकिन दोनों एक ही है। आकाशवाणी किससे आलोचनो हम कुछ दूसर गाथा लेकर आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। इस संसार जो है ना, इस संसार की तुलना एक ऐसी जंगल से की जा सकती है जिसमें नाना प्रकार के वन पशु निवास करते हैं। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये ऐसी जीव है जो इस वन में निरंतर घूमते रहते हैं ना। यदि हमारे तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो ये पशु तुम्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसके लिए अवश्य विश्वास बड़ा महत्व है, बिना इसके सच्चे प्रेम का उदय होना असंभव है। कलयुग की ये सबसे बड़ा विशेषता है, किंतु हम वहां तो सच्चे प्रेम से बहुत दूर है। हम अपने प्रेम और केवल एक सीमा तक जान देते हैं, यानी फिर से बात दोहरा रहा हूं, हम वहां प्रेम को केवल एक सीमा तक जाने देते हैं। बस केवल मेरा लोग, मेरा परिवार आदि, किंतु इसे विस्तार की आवश्यकता है और संपूर्ण मानवता को इसके अलिंगन में ला लो, ले लो। वही वास्तव में उत्कृष्ट प्रेम है। अपने हृदय को प्रेम से, अपना हृदय जो है ना, अपने हृदय को प्रेम से पूर्ण श्रद्धा तथा प्रभु तक पहुंचाने की उत्कृष्ट अभिलाषा के साथ हमें हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। जो शक्ति परमात्मा के पवित्र नाम पवित्र साई लखना, आप ठीक से जानते हैं, जो शक्ति परमात्मा के पवित्र नाम में निहित नहीं है उन्हें कहीं और खोजना व्यर्थ है। भगवान के नाम सुमरण के व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है और उसका मन उदार होता है। जो आप और हम नाम स्मरण करते जाते हैं और उस नाम में मगन होते जाते हैं, वो पवित्र शब्द आपके हृदय में समाता चला जाएगा। ये शब्द ही माँ है, वो मात्र स्वरूप है। भक्त को पुरुष समझना चाहिए, इस पे ध्यान करना, भक्त को पुरुष समझना चाहिए। हम शब्द और भक्त को एक दूसरे के निकट लाकर मानव जीवन में पवित्र और सार्थक बना सकते हैं ना। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक को मार्ग पर चलता है तो स्त्री और पुरुष के भाव से उसे मुक्त हो जाना चाहिए। व्यक्ति को जब भूखा होता है ना तो नर और नारी दोनों के भूख समान रूप से लगती है ना। फिर से बात दोहरा रहा हूँ, पुरुष हो या स्त्री, जो भूख लगे दोनों के समान है ना। आखिर पुरुष में ऐसा कौन सी वस्तु है जिसे वो अपने को श्रेष्ठ समझे? वास्तव में दोनों में कोई आधार भूत भेद नहीं है। अतः यथार्थ में सभी नारी रूप में प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई दुर्बलता रहती है, इसलिए वो एक प्रकार से स्त्री है। यदि हम स्त्री और पुरुष को देवत्व के इस भाव से एकीकृत कर दें तो ये दुर्बलता हम पर अधिकार न कर सकेगा और न हम इसके वश में हो सकेगा। सीता ने रावण को, इस पे ध्यान करना आकाशवाणी के सुनने वालों, सीता ने रावण को एक उत्तम सीख दी है। वो पृथ्वी माता है। कौन? वो पृथ्वी माता की पुत्र है, भुजात है, वो प्रकृति स्वरूप है। रावण जो इस सत्व को नहीं समझ सका, उनके पास जाता है और उन्हें अपना बनाने का प्रयत्न करता है। वो अनेक पास गए और बड़ा बड़ा कर अपनी शक्ति का बखान करने लगा। उसने कहां गया है रावण ने वो कि 64 भाषा का विद्या उनके पास से, फिर 47 जो रावण जानते थे आकाशवाणी के सुनियालो कि ज्ञान था, और पशु पक्षी की भाषा भी समझ लेता है। कुछ समय तक उसका प्रलाप सुनने के बाद सीता बोली, क्या बोली? मेरे स्वामी की तुलना में तुम्हारी सारी शक्ति कुछ भी नहीं, यदि तुमने केवल एक सत्य को पहचान लिया होता तो वो तुम्हें सारी विद्या के अधिकारी बनाने के सहायता पहुंचाता। कहने का मतलब आकाशवाणी के से हम आप जो जितना विद्या जो जितना पढ़े बुक भी लिखे, लेकिन जो रास्ता पर हम प्रवचन देते, जो हम पढ़ते रामायण के चौपाई वेद के मंत्र, अगर वो रास्ता पर हम चले तभी जाकर भव सागर हम पार कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी पत्नी, यहाँ पर सीता मैं क्या बोलती है, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी पत्नी मंदोदरी को उपहरण करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुमने कभी भी उस व्यक्ति की भावना पर विचार किया है जिसकी पत्नी को किसी दूसरे युक्त ने उपहरण किया हो? और कहा गया है कि कारण तुम अपने को बड़ा महान बतलाते हो, तुम्हारे अंदर जो दुर्बलता है उन्हें छिपा कर तुम अपनी महत्व को बढ़ा चढ़ा कर बताते हो, और ये सर्वत्र विपरीत है। वहां पर सीता माँ कहते आकाशवाणी वालों, किन्हें विशेष परिस्थिति में दूसरे को कितनी कठिनाई होती है, उनकी क्या समस्या है, तुम्हें इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, ऐसे ही तुम्हें दूसरे के विषय में भी सोचना चाहिए। सीता ने रावण से पुनः कहा, यदि तुम इस आदरभूत तत्व को नहीं समझे तो तुम्हारी सारी विद्या व्यर्थ है। ओ रावण, मैं जग जननी हूँ, तुम भी मेरे पुत्र हो, अत इस जगत की माँ को चोट पहुंचाना तुम्हारे उपलब्ध को शोभा नहीं देता। तुम्हारी शक्ति के पुंज हरि नाम का निरंतर सुमरण करते रहना चाहिए। अरे तुम वृक्ष की, यदि तुम वृक्ष की जड़ में पानी दोगे तो वो सखाओ पर, अगर आप मतलब पौधा में नीचे जड़ में पानी देते हैं ना तो यहाँ तक पत्तों तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि हम वहां भगवान को जो नाम लेते हैं ना, तो नाम ही वो बीज है, नाम रूपी बीज से ही सर्वसृष्टि वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इस वृक्ष कहा गया है, इस वृक्ष में जो सृष्टि का स्वरूप है उससे मात रूपी अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं। प्रत्येक फूल में बीज है, लेकिन बीज एक ही, किंतु वो सब फलों में विराजमान है। बीज मम सर्वभूताम, ये एक से अनेक बीज कैसे हो गया? वेदों की इस उक्त में सत्व का मूल रूप छिपा हुआ है, एक ही सत्ता नाना पर रूपी में प्रकट होते हैं। लोग पुस्तक पढ़ते और अनेक पुस्तकों लिखते भी हैं, किंतु वो इस मूल सत्य को नहीं पहचानते। व्यक्ति सारे धर्म के ग्रंथ को प्रयाण कर आचार्य बन सकता है, बहुत अधिक ज्ञानी भी बन सकता है, किंतु महत्व की बात तो ये है कि क्या वो इस ज्ञान को वेदों में निहित इन तत्वों को व्यवहार में लाता है। कहने के साथ फिर से बात दोहरा रहा आकाशवाणी के सुनने वालों, हम वहां जय जितना विद्वान है, ये जितना ज्ञानी है, लेकिन जो सत्य बात जो हम लिखते उस रास्ते पर हमें चलना, तभी जाकर के हम भव सागर पार कर सकते हैं। आकाशवाणी के सुनने वाले युवाने द्वारा अपना प्रवचन विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भरे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।

अच्छा अच्छा मैंने लिफा मेंस यहाँ से हम लोग सुने श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के मुखारबिंद से सुंदर सा कथा देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है।

थिंग फॉर हाफ तीन हो चला है, थिंग फॉर हाफ तीन हो चला है। बुधवार के सुबह की कार्यक्रम मैंने लिफा मेंस, इस साल का नवा महीना चल रहा है और इस नवा महीना का आज दूसरा दिन है। माकमार लिफा ए हुए मोय है रिन रिंगन।

हाँ एफ एफ मेरे प्यारे सुनने वालों, यहाँ से हमने सुने केमली भूतराम जी की आवाज में मैंने पायल, उसमें और सब गीत मिक्स किया गया है, एक मेडली बना दिया गया है और वो मेडली 7 मिनट सिर्फ मिनट देर तक से कौन के ये गीत था। तो यहाँ से आपको लेकर चलते हैं एक चटनी म्यूजिक, आप तैयार रहना। हाँ हाँ सेकी सेकी मेरेगा।

संदेश सियुदिन और मिस रिंका, छलकी ना जाए गोरिया छलकी ना जाए, जरा धीरे चलो, हाँ हाँ धीरे चलो।

Nam Narayan Orkis Ran Yankaran. ये बहुत पुराना गीत है, बहे अखियों से धार, और ये दो लोग, ये दो गायक जो है मिलकर इसे एक न्यू यश में डार दिल है। चलते हम सुने के लिए गौर पूजो, गौर पूजो।

विली वी वानिता वनिता विली के आवास में सुने हम सब कि गौर पूजा गौर पूजा गौरी गणेश हो। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए यहाँ से सभी कुछ अच्छे अच्छे गीत सेलेक्ट करके और आपके लिए यहाँ से चलाया जाता है। दिल खुश हो तो सब आसान लगता है, वो तो सही है कि जब दिल खुश हो तो सब आसान लगता है, हर रास्ता अपना सा लगता है, रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे। सुन ले जी कि रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, नजरों से नहीं दिल से बात करे। तो यहाँ से आपको लेकर चलते एक सुंदर सा गीत सुनने के लिए, मैं प्यासा

म्यूजिक फरमासी दिले नादान। जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होता है ना, कभी उफ तो कभी वाह होता है। ना बदलो कभी अपने स्माइल, ना कभी बदलो अपना स्माइल, क्योंकि इससे हर मुश्किल आसान होता है। Probeer af en toe stiekem te glimlachen. Laat de verdedigingsmechanismen van je hart varen. Je leven zal opbloeien. Neem de tijd voor jezelf. Echt, neem de tijd voor jezelf.

कविता राम किशुन पायल की झनकार फॉलो टू ऑल टाइम्स दिस रिमिक्स रेमोन राम नारायण की आवाज में दीवाना लेके।

दीवाना लेके आया है दिल का तराना और तेरे जैसा यार कहाँ सुनेंगे हम। यहाँ से आपिका फाउन हिंदुस्तान।

तेरे जैसा यार कहाँ गाया गाया गाया है घी के आवास में, और उसके साथ यह है गवन लिए जाए, गवन लिए जाए।

सावन में सजन या सजनवा गवन अल्लिए जाय। इस बार सुनेंगे हम द रदियो संत देश शिव दिन के वास में।

सविता सिंह और संदेश सिउद्दीन के आवाज में सुने हम द रदियो न जानी, और यहाँ से लेकर चलते हैं दिल में छुपा के प्यार, जनरल इमरान से सुनेंगे।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। सुना दी हमको नजीम और उमर वागित हुसैन। चलते हैं सुनते हैं इस बार फिर है उमर वागित हुसैन की आवाज में।

mag eigenlijk niet met gekke mensen omgaan. Ik mag eigenlijk niet met gekke mensen omgaan. Maar ja, dan... Toh kya hoga, hum aapse batate hain. Ik mag eigenlijk niet met gekke mensen omgaan. Maar ja, dan ben ik meteen al mijn vrienden kwijt. वाह फ्रेंड जो है दोस्ती जो है सहेली जो है यहाँ पर तो आप अपने आप रह सकते हो मजाक जो है दिल के बात जो है तो एक दूसरे से कर सकते हो और दोस्ती ऐसा होना चाहिए कि ना कि जब दोस्ती ना है तो आपके बाद वहाँ शहर में घूमे ना ना ना तो वो दोस्ती नहीं दोस्ती जो आपके बाद जो है जो आप बात करते हैं अपना दिल के बात करते हैं वो वहीं तक सीमित रहे As the sun niet wil schijnen, dan schijn je toch lekker zelf. Zo simpel is dat. En het is uiteindelijk, jij bepaalt je lot elke dag door je beslissingen.

एक दिन बिक जाएंगे, बिक जाएगा माटी के मोल। बस अच्छे अच्छे यादगार जो है वो रह जाएगा, बुरा जो करोगे तो वो

एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। और खास बात ये है, ये म्यूजिक जो आपने सुने ये गीत में, ये म्यूजिक दिया है ज्वाला जी। कितना अच्छा बात है ना।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भी अदाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे

और इसी ट्यून से आपको तो पता चल चुका होगा कि प्रोग्राम को हम चलाते हैं यहां से। तो हम तुरंत चलते हैं हमारे दोस्तों सूरीनाम में। भैया एक जबरदस्त फराख वाहन में आग लग गया है और सब जर के भस्म हो गया है। तो सब जर के भस्म हो गया है, ये बातचीत हो रहा है एक रास्ता के नाम है अफुबाका वेख में। हाँ, तो ब्रांतवीर जबरदस्त वहां पर जाकर पहुंच गया भैया और बोले है आग लगल रहा तुरक फ्राक वाहन में और बोले है जी को नीत मेर वर्दन खरद मन से और जर के भस्म हो गया फ्राक वाहन। अब पताना है कि कैसे तुरकुआ में फ्राक वाहन में आगी लगल है दोस्तों। आजकल आगी बहुत जबर हो। देखो एगो भैया खास फॉरनेस के मानचित है, एक मिला चढ़ाए रहा खास फॉरनेस पे भैया भात बनावत रहा, खाइक बनावत रहा पोत राइस ऑफ खास फॉरनेस और भुलाई गे रहा बोलोनिंग इन बस्टेल वाहन फॉर लीडर एट ख ब्राउन और घर के साथ साथ हुआ पे को बस्टेल फिश भी रहा। सब जर के भस्म हो गया। बीते हुए हफ्ता में एक मेला भी भैया हाँ हड़िया में कि करहिया में तेल लाड़ के भुला एक सूत गे रहा भाई और आग लग गए घर भर जर गे रहा। और यहाँ फिर बातचीत हो रहा है स्टेनस्लाख वेख के सोमवार के एनन डर तक ऑगस्टस के पूरा घर जर के भस्म हुआ और वहाँ खराचे में एक विषय भी रहा एगो बस्तल वाहन भी रहा वो भी जर के भस्म हो गया। और यानी कि परनाम की सिपाही जाकर वहां पर पहुंचा और एक बजे दिन को आगी लगा है। बोलेगा फॉर ट्रोकन इन द रिक्टिंग फन सन रई एड फॉर क्रीकन इंफॉर्मेशन ब्लैक दैट द हाउस बोनस ऑमस्ट्रिक इन यूना सन रई इज फॉर ट्रोकन द 20 jarige एमपी हर फॉर द से फॉर ट्रोकन पोट रेस में ऑफ ए हार फॉर नेस गेट टेडस हर अनवेशकेट वेट से डूर बिर फ्रॉग बेल में मीड डीलिंग दैट द रोक एट हर वोनिंग क्वम और ये मी खाए भात चढ़ाई के चल गया रिक्टिंग सन रई बिरमान के बेल करित बोले तो घर में से धुआं निकले है और बोले अब व्यक्त रखनार है रियलाइजेड द फ्रॉ कि ओको की घर में वो भात चढ़ाए रहा। बोले है ब्रांड द क्रास फॉर नाइस हाथ लातन स्टैंड तू से ही बाय द वोनिंग आन कॉम स्टोंट है पंत अल्फा लीडर इन ब्रांड भैया आग लग गया है। और बताए गई है का ब्रांड वेर आन से रेक्टर आन एंड तू है प्रोबेर हंड आउट द क्रास इन वेलिगेट टू ब्रिंग फॉल्स ईदर फॉरकिंग लीव द पार्टनर फन द फ्रॉ ब्रांडवॉन्डिंग जर्गे राज अपन कुत्ता खराशे में से निकारत रहा। बोले उगेल है अकादमी सिकन है इसमें अनखसलू तो अब इलेक्ट्रिसिटीज नेट ब्रांड स्कार फर्सीकर एंड नीत तेगन ब्रांड स्कार फर्सीकर घर ब्रांड फर्सीकर नारा तो बड़ी दुख के बांध थे हमारे जनता। देखो क्या हुआ है oude feite tieners eindig in dood 16-jarige mungo में पुराना झगड़ा रहा भैया 30 अगस्तस के और छोड़ी भगवान भैले मुंगो में एगो 15 बरिस के फरदख्त एरदेई के समन पकड़ी से बताए गए हैगा जबर कॉन्फ्लिक्ट रहा दोनों के द पुलिस हैड द स्टेज बमिडल एंड बाय द पार्टी एंड एनस्ट खवास गिविंग नर हाउस कस्टूड बताए गए ट्वी यंगर्स डू लंदन अतवार के यूलिया ना फेल पे अब न्यू टेकन क्वामी से फिन भेड़ भइल है। तो एगो एक्वा के बॉस कास में छुड़ी भोग दे से भैया गेल एरखीबी पोल के पोली क्लिनिक में और बोले फरतोंद में आन कॉम्स हिन टेकन फॉर लीफन और लंडवा मर गए भैया। तो ये पुराना झगड़ा में अब देख एक मिला के जान चल गए है बड़ी बड़ी दुख के बांध थे। हम चलते हैं भैया गया दिन के ओर। ये कौन गया दिन है देना देना फ्रक्सी पे यहाँ पे के आशीष कुमार गया दिन के बोले हैगा अने सूरीनाम में बोले जो अल्खमीन वेट फन ब्लास्टिंग हैगा। बोले हैगा नेशनल असेंबली बर बला दृक करी से किस तरक ब्लास्टिंग चीज नो साकलिक इस मार दत दार बे द ook duidelijk grenzen en voldoende recht beschermen moeten worden garandeerd. बोले चाहेंगे स्ट्रेंगर ब्लास्टिंग है बोले बाकी भी चाहे खरेंस रहे के कि कैसे हम ब्लास्टिंग का बोले इन कर बे गया दिन बोली से फिस्काल आर्किटेक्टर बोले है ऑन द स्केट मार्क्टेशन हैफिंग
और बताए गए है दोस्तों, रेख बस्कैरमिंग भी चाहे रहे कि जनता का रेख भी चाहे को बस्कैरम करे के, और वो बोले ब्लास्टिंग फ्लिक तक भी चाहे रहे के है नूम द ओंदर मेयर हेड मोमेंट वार ऑफ इंफॉर्मेशन वर्क फ्रा अन बुकन ऑन द सुक प्लाट्स फिन। तो ये बात है स्टर्क ब्लास्टिंग दीज गया दिन बना देते दा थे फोर स्टैंडर्ड इस फॉर स्टर्क ब्लास्टिंग दीज है फिन इर्दर एक्टर दा दैलक मुझ से व्हाट अंडर अ स्टर्क दीज वर्ड फॉरस्टैन। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता, हम जाए तरी मथुरा भैया बोले लोन्स फॉर होकिंग 15% अमतनार हुआ पैसे ओमदास, यानी कि सब मांग की से बोन मांग कर इसे कि हम लोग के फॉर होकिंग 15% चाहिए, लेकिन लांटी उस सबके 15% दे इसे तो एमा कृष्णा पथुरा कृष्णा मथुरा पार्लियामेंटेरियंस रखेरिंग से पूछी से कि लोन्स फॉर होकिंग जो 15% आमतनार के देले हैं, बोले ये पैसवा तो लोग कहां चलाई के भरिए, बोले द फॉर होके मुत एन सितंबर 2020 इन खान, बोले सितंबर में चाहे भराई लगे कि मां बोले पैसवा तो लोग कहां पइए, तखराई के तैर बोली सेगा कि जो आदमी पेंशन पावे आ ओ फे पावे है, बोले उस सब के खरख तक दन, बोले दी नीट रेक्स्ट्रीज ऑन द लो फॉर होकिंग फॉल, बोले ओकर बारे में कैसे है जो पेंशन पावे है व्हाट डू द रखेरिंग जो कोप क्राफ्ट हैगा फॉर मेंशन जो पेंशनर बा आओ फी पावे ऑन फंग द फर्स्ट टर्कन ओके कैसे फर्स्ट टर्क करिए। मथुरा बोले है पार्लियामेंटारी वेल दानास ऑन ओवर से फॉर फाइनेंशियल गफोलखन फॉर होकिंग पर मान एंड पर यार हेवन, बोले है मथुरा वेल फॉर ऑल दैलक है ओवर फाइनेंशियलिंग से फ्रॉम एंड welke concrete begroting post de loonverhoging wordt betaald. कहां से भराएगा, बोले सेंट्रल बैंक पार्लियामेंटरी स्टेल दारान फ्रागन के सेंट्रल बैंक जो सुरिनाम के है से विल ओपहेल्डरिंग ओवर द बरिक्टिंग दैट मोमेंटेल ट्वी राडन फॉर कमिसारन फंक्शनेरन एंड दैरफॉर वर्डन बताल। मथुरा फ्राग द रेगिंग बफेस्टिंग ऑफ दैट इन द लास्ट केफाल इज वेल हु फील एंड इन मिडल्स अन राडन इज आउट बताल। तो ये बात है मथुरा पूछे है कि 15% तुम बोले दिए मैं पैसा कहां से दिए और हम बुढ़िया पुरानियन है, बोले ओके कहां से तो भरिए जो पेंशनर थे। तो जो दोस्तों पार्लियामेंटारियन विल इन वेतन हु रखे ने लोड फॉर होकिंग अमतरान खाद फिनाशेरन ते एकर बारे में असेंबली एकर बारे में पूछी से और ना खाली मथुरा पूछी से, बोले द फक बॉन्डेड 25%, बोले एकर बारे में मांगे हैं हमारे यारो हमारे प्यारे प्यारे जनता सूरीनाम के और हॉलैंड के हमारे दोस्तों है हमारे जनता है। तो हम और आगे को चलते हैं, देखो दौदन ताल भैया हम जाएला नेपाल में, 1000 आदमी से ज्यादा मर गए नेपाल एंड तिब्बत में, बोथ ऑन द 1000 मेन जिन थोट मेन इन दूर दर ओवरस्ट्रोमिंग इन नेपाल अफगलोपन तो बोथ ऑन द 1000 हुई गए है। नेपाल में जो रामपंदी से मंगलवार के बतावे नीकों ने सीख ने तख्तक राम अप 1000 हुई गए है। इनका बोले है शीना बोले है इधर वर्क बकेंट ऑन चीनी से कान फन ग्रेंस इन तिब्बत में सीकर 16 मेंशन अमित लेफन वार गकोमन उस चीनवा के खदेलता में बा। तो ये सब बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो नेपाल में बहुत दुख है, हम सब तो हमारे दुख में साथ है, नेपाल के जितने नामस्तांद है अब देखो भैया 43 लाख तो फर्सफिन भैले रेस्तरान जबर अनफाल करी से उक्रेन में जहां 10 आदमी मर गए हैं। ये बात हो रहा है उक्रेन से दो अनफाल ड्रोन से रकेट करी से इन उक्रेन से और बोले हैगा 10 आदमी कीव में मर गए हैं ओमलिखंद रेखियों में। हेट इज द सेस्ते दाग ओपरे वार ओप रेस्तरान अनफाल ओपर उक्रेन से होफ्टार आउटफोर्ट। एक बारे में सेलेंस्की बोले हैं टोटल 12 आदमी फिलन अंदर भी ईमान इंडिया के भी मर गए बैर अनफॉल ऑफ स्पोरवेक डिपो इस की फिलन सेवन दोनन तिंग टालन में सराटन खवन ओक एल्डर्स इन इट लैंड फिल रूसलैंड आन एरियो का उदेशा में
kwamen duizenden huishoudens zonder stroom te zitten. De dikko bij jij ze jan moeske en mi mare he. Al uder de overstroming si suri en janiki Nepal me bhail. Uto hiye sate san bhaiya. Tanker 10 dain ze 3 maal geraak bij een straat Hormuz me tu jane jun ban kare se. Amerika se o Iran se bhin judd hoi gaye bhaiya bhin suru hoi gaye he. Ego tanker ke saman dagi se ga. Jo britses ke fast monitair kraha. U melde kare se ki projectielen ter is de uitvaarder van de straat van Hormuz een belangrijke doorgang heeft je transport krijgt gas op deel en meske waren mee 30 kilometer ten oosten van de Oemanstaat Kassab mee Wolleke, er zijn slachtoffers toen afhelen maar boord met 10 gogeil he lagal he ik erbaar met Amerika en Iran bolen he voor het eerst sinds juli mee over en weer aanvallen uit de regio met hele Amerikaanse leger bolen Iranse revolutionaire gardeke aanvalker is opgemaakt om zeemijnen te leggen in de straat van Hormuz. Vervolgens vuurde Iran raketten op de Amerikaanse basis door Jordanië. Maar Iran belemmer kreeg al maanden met de scheepvaart verkeerd door de straat van Hormuz met dreigementen en aanvallen op schepen. Tegelijkertijd handhaafde de Amerikaanse marine aan actieve zeeblokken van de Iranse havens ke bare mein hamare janta aur hum jaye hai aur aage ko Suriname mein bhaiya jon hum log ke asset advocate hai Hugo asset jon hai ga jon December mord ke bare mein ladat raha ab yahan pe rescue kare coalition ke for groeien verzet tegen inperken van de rechtelijke macht bole hai ga rescue kare hai ga groeiende verzet jon us verzet kare rechtelijke macht hum log ke rechters log ke bare mein to ekar bare mein Hugo asset bole hai ga bole maatschappelijk verzet tegen de maatregelen die volgens hem onafhankelijkheid van de rechtelijke macht kunnen aantasten. Dat zei SZ in het programma van Wel Ingelichte Kringen mee. Die hamlukke jo regering ke he uitvoerende macht hega. Hamlukke rechtelijke macht ke bole beperk kare hega. Ki usa onafhankelijk ego chij na kar pawe he. Ek er bare mee bole coalitie ervan verzekerd zijn. Dat de maatschappelijke middenveld de democratische rechtsstaat zal blijven verdedigen. Hij zegt dat de verschillende ontwikkelingen wijzend op toenemende zorgen over de positieve onafhankelijke van de een rechtelijke macht.

तो और आगे को अपना समाचार को लेकर हम चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे जनता, एक भैया पातनर अपन आदमी से झगड़ा करी से, और अकर आदमी रहा सिपाही भैया पातनर फन पुलिसमैन, और वो का करी से आदमिया से झगड़ा भइले, बस ओकर पिस्तौल लेके पेल भागल भैया, मोर्द विस्लिंग भइले सिपाही से और औरत से देर तक ऑफिसर्स के, और उ लेके पेल भागल है, और खलै तो न आन हो निक फन 35 यार के एन हां द फ्रॉ सो तेज ऋषि वर्नीलिंग इन द वूनिंग हैवन आंग्रेक मेट द स्कैनर फोटोग्राफ इन द रिक्टिंग फन हर पार्टनर हैवन गज्वाई अपन अदमिया के कुछ छोड़ी उड़ी लेके स्वाई करी सोकर पुलिसी के जो सिपाही के ओकर आदमी रहा ओकर पिस्तौल लेके भग गए हैं, और सिपाही जाए को के पकड़ी से और बोले घर फर्नील करी से औरतिया है सौ से इन मोमेंट फन स्कर फोर बैर हेवन खपाक। तो ये बात है हमारी जनता कि औरत लोन देखो का करे भैया, बोले द पुलिसी मान वेंद से खीर ना तो बीरू मिंदर एंड इट आनखिफ्त अपन ऊपर अपन औरत के ऊपर de verdachte werd vervolgens overgebracht naar de politiebureau die op een enemie keer toe चोरी कर ले है पिस्तौल के बारे में हमारे प्यारे प्यारे जनता। आप लोगों ने जानो है एक रोदनी लाइसनर देसुआ में लाश हुई है सूरीनाम में भैया, फिल्म के आदमी रहा ऊपर से डायरेक्टर में काम करता डायरेक्सी में रिशिदा में, और ये लाश हुई है 15 अगस्त में रोदनी लाइसनर 25 तक यार रखे। एक बारे में कितना आदमी पकड़ान है, एक सिपाही पकड़े रहा उके छोड़ दे रहा वहां तक ना मिलल है भैया, पता ना है मैं पैसा की चुकू रोल खेली से। अब नीदरलैंड से एगो स्पेशलाइजेड नीदरलैंड से सुख टीम गई ले कुत्ता उत्ता लेके, और संदरई पे उतर के भैया जाए के स्पोर खोजे के कि नीदरलैंडर जो बा ई कहां बा, और ई काम करता सूरीनाम में भैया फॉर मिस्टर ओनर नेमर एंड फिल्म प्रोड्यूसर के गए ले ई सब खोजे, ओ तो मिलल ना भैया सनमा का कहां जंगल कनाल में सब आगे आगे लगल ना है। टीम इज ऑफ कोर्स फॉर स्टेकिंग रेडर्स होंडन uit Nederland volgens eerder bevestigde informatie bestaat de groep uit 8 honden begeleiders, 8 speurhonden en 7 ondersteunende specialisten. Op het aanwege sub kutanjon hega sub getraind hega op spoor kare ke bare mein rond water en tussen puin en kunnen worden ingezet voor het zoeken naar zoveel levende mensen of overleden mensen ke kutta speciaal geil hai लेके खोजे। एक बारे में सूरीनाम को ओएम जो नहींगा हेव इन मेडल टू स्टेमिंग देगा कि नीदरलैंड के टीम के कितने जाए के खोज सके हैं, और बोले है स्ट्रफ लेखलक ऑन द सुक ब्लेव ऑन द लेडिंग फन सुपरफिशी फन कोर्स पॉलिसी सूरीनाम। और एक बारे में भैया बताए गए बैतलांस सुख अक्सी वोट फिनाशियर door Rudisa Internationale NV, het bedrijf waarvoor Leisner werkzaam is. De kosten zijn begroot ongeveer 50.000 euro. Willen daaronder vallen onder meer het vliegvervoer van de mensen en honden, verblijf lokaal vervoer, materiaal en verzekering. De financiering kwam volgens Rudisa in overleg met de familie van Leisner tot stand. To op ik erbaan in betalingen heen, kies ik een swampoe, het district सर मक्का में टेक्निशियन अंडरसुकर बतावे क्यों करो को तो एक वित्त किया जोरिन तो वहां पे मिला ले भैया जो जर के रहा 15 अगस्त अगस्त से इलाज भइल है। फोर्स एक्चुअल बरेख के इवेंट सिट इन द सा 3 verdachten फांस एंड इज 4 verdachten नो फॉर फ्लुक्ट तो अब सिपाही लोन पकड़ी से verdachte के और छोड़ दे इसे अब फिर से गल खोजे तो ऊ फॉर फ्लुक्ट हो गए भैया उपेल भांगल है। एक आदमी भैया काम करता रहा खराब मशीन जले पकलाइन ओकलाइन से नाम में बोले है, और पकलाइन चलाते में इन्हें देर तक ऑफिस के बांचित है इरीन फलन में, और भैया एगो पेड़ गिरल है तरेक्ट वारे ने अब मोमेंट आन इट वेरक वाज एरस्टिक आरबेस ऑन भैल है। सवेरे 9:30 आई ऑपरेटर जो रहा मैं दखराफ मची तुर ओप बपाल मोमेंट एगो पेड़ एकर मशीनिये पे गिरल है, और बताई गई है
और ना बताई से देन स्टेज लीव स्टेज के बारे में ये नमिया के मा पुलिसी ब्यूरो ब्रांच वेक के गई है इरेन फालन में और वहां पे पता मिलल है कि पेड़ गिरल है मशीन के ऊपर और यहां पे बताए ईस्ट पुलिसी और क्वाम नार फोरन कि स्लाक्टोफर से है ongeval in de graafmachine bevond en daarmee werkzaamheden uitvoerden waarom de boom precies opviel op de machine mensen maandagmiddag dat de operator bij de incident dodelijk werd getroffen de doekje baat hij kan kerten mijn bichara marge bhaiya bahut bahut bahut bahut absoos ki baat hai हमारे जनता अब देखा जाए भैया ऑटोमोबाइल्स आ राइडिंग करी से मेर ब्रोमफिट्स और मार के भाग्य भैया ब्रह्मुआ के मार के भाग्य भैया शनिचर के रात के बात है रिंग वेक के बातचीत है और बताए गए दखवंद ब्रोमफिट्स सर्वेर ना है ऑन कफेल एम्बुलेंस ओके ली गए है निहंतन यार के गोलंडा के और बताए गए फरवाक्तिंग फर्सीकरिंग साल वार्डन खस्तेल het gaat om een 19-jarige AC die volgens de verkregen informatie naar verwachting in verzekering zal worden gesteld. Voor de pakkenisjongen is Bariskelondake en vooralsnog niet bekend over geldige rijbewijs ook in de Hakina. Of ik heb pakken lezen van ja. Toen kon ik een malle een marke voor een fietser gehoorde letten. Toen dubbel feit kalleb hij. Want op toe oké, maar jij. Tap toe kaker joh. Want अब तू वहां पर रहते थे शायद एक के तू बचा ही सकते अब देखो भैया लेगुआना सूरीनाम में बंद हो गए है 8 सितंबर से लेगवाना अब बन हो गए है सूरीनाम देश में लेगवाना नामक पकड़े के तो तेत में एनन देर तक दिसंबर Het jagen, verhandelen, hebben, houden, kopen en verkopen van boomkip is verboden. Ze hebben leguana ke bole peerwala murgi. Ta ab bhaiya je to ke pakadi sipahi te barakas ke pakad ke banne kariga. Karen ki leguana ban hui ge hai Suriname mein jaise kukuhi ban hoya hai. Harna ban hoya hai. Aise leguana namake pakade ke Suriname. नाम देश में और लेगवाना ये पकड़ ले ले तो के लेगवाना ने सिपाही पकड़ के बंद कर दे भैया ये बात चीत हो रहा है हमारा सूरीनाम के लेगू महाराज के जेके सब बोले है पेड़ के मुर्गी हाँ पेड़ के मुर्गी बोले है हम आप लोग को एक गीत सुनाते हैं तो अभी हम वापस आ जाएंगे

मेरा तन डोले और मेरा मन भी डोले, और कैसे डोले, कहाँ डोले, कहाँ डोले, कैसे डोले, ये आपको फाहुन में तार करके बताना अब पड़ेगा कि दुपट्टा कैसे डोलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे जनता। तो हम और आगे को चलते हैं अपना न्यूज प्रोग्राम को लेकर। अब देखो भैया, दरवाजा जितना बा ना डरियो दरवाजा के नाम सुन ले आदमी तक कितना डराई जा है। हाँ तो कितना डराई जा है दरवाजा के नाम सुने फरेनकिंग फॉर दरवाजा इन सुरीनाम माकन ज्वार वीगन बसवार तीगन अंडर देलन फन अन ऑनट्वेरस वेट तोट वेजिंग फॉर द वेटकीपिंग Weging van de burgerlijke. Volgens de vereniging bestaat het risico dat burgers en onderneming die na een rechtszaak gelijk hebben gekregen hun toegewezen geld moeilijk of zelf niet meer kunnen innen. Maar ja, wohoe baantje het hoor aan Suriname ke hamare janta, dekho kya hua hai. Bole de zorgende richting, zeg maar de naam wil voorstellen, waarbij de bestanden beslagen om de staatsmiddelen collectief kunnen worden opgeheven. Te doorwaarder ke naam het mis zo net, maar ja, bole bapre दरवाजा राज बोले कटलीस लेके दरवावे, बोले लाठी ले पहले रा भैया, अब दरवाजा अपन सिपाही के लेके चले है आज बस कर्मिंग। दरवाजा से खराब ना करियो, देखो भैया मियां बतावे लीसिंग लीसन इज ओकन कुंस। हां बोले बताएंगे 4,7 मिलियर्ड अमेरिकानसे डॉलर स्कल्ड इवन अस 8,7 मिलियर्ड वर्थ। एकर बारे में बतावे गए बीते हुए हफ्ता में कि 8,7 मिलियार्ड खिंग रोन बहना है डबल फन वाद दख्तन वाद वो दख्तन तो वेतन तुन कॉमन ब्यूरो फन साथ स्कूल में कॉरेक्सी फन 4,65 मिलियार्ड। भैया तब देखो कितना बड़का फर स्केल है। वी अलेन द कॉपन लास सक तुई फेतन दी एलकार तेगन स्प्रेकन वी खुद लास सक इस अंदर्स तो ही बदरखवन मोई से पढ़े के नलवन ताक लियो भैया कोमा ताक लियो तो तब पता मिलेगा कि कहां कितना बदरखवा है। और घड़ी भी देखियो भैया तो एनन ट्विन तो हंदत उर जोन है 9 बजे है रात ढेर आदमी लेके नहीं का उर तो सोचे 9 बजे सवेरे है दो जात मुते ओक मैं से ए फखुद कैक सोम्स राग दी दिंग इस इन फरमान लिखा ले सेफ उर तो ना लिखे कि सेफ उर जा लिखियो भैया तो 7 बजे ले रात भी तो वांट और 7 बजे ले सवेरे भी लेकिन 7 बजे रात इस नीघन दिन होंदे तीर में से 7 uur इस ochtend dus na 12 uur wordt het gelijk na 12 uur wordt het in 1 uur 1300 uur 1400 zo is het mensen ik geef geen lessen maar heel veel mensen raakt het in verwaar met de tijdklok ook net als met de komma en nullen bij de bedragen op de kop. Hai, hoe kan je? Ego auto jij ke mari se ABS ke pal me afubaka pe pata chalel he. Admi bole bole auto hua bole ki rasta me raha palwa. Pale palwa rasta me raha. Hame jana bichwa damwa pe ABS gaade raha ka. Lekin bhaiya aise batiya na he. एक आदमी जा है आफुबा का वेख पे और बोले अकेले जा बिना एक को प्रॉब्लम के और जाए के मारिस पाल में मारिस भैया तियो त मारक एक से उन बकेन ओर साग द कंट्रोल ओवर द सूट ना गेले भैया नहीं तो इ द चियो इ बांची दो ओमस्ट्रिक 2.36 uur te मतलब ओ रात के भैया त रात के तू जरूर सु जइए रात के 2 बजे 2:30 बजे रात के ओ तो चलिए त मस नहीं 9 तक में जाए के और ये काट दी से भैया दिस कैन नॉट अंडर से दी मान सा जेकर इन स्लैप के वालन सेन तो ये
बातचीत है भैया। एक वो हिंदुस्तानी औरत है, दे नाम है और औरतिया का नाम बा जरबंधन। बड़ी शर्पा औरत है, फिर पेयर है भैया, दे ना लेते हैं और जो जो फ्राक स्टाइल करे भैया, न मुझे सो से हार खान सहते कि का बतिया है अतुलन जाने हैं। ए वो जो बड़ा जोड़ छटके और परमेश्वर भी बड़ा जोड़ छटके साथे साथ एगो सालार बाग से निकरमान है, सब एनी पेयर्स के दे ना ले रहे तो इस सब बड़ा जोर जोर चिल्ला है। तो एक बारे में पार्लियामेंटारियर ए वो जोंस जोन है, रबिन परमेश्वर है और फ्रक्सी खनोट असीस सालार बाग से जो तेखन कस प्रोकन सालार बाग स्टेल एंकल वीकन खलीदें कि बोले फ्रेश मा मटेरियल जो ने ओएम के मतलब के ओबंबार वर्क के बोले उस बस्तन है शांत वीक के ओपन प्रीफे ट्रेन वास गब्रेक बोले जाए के सब उनको प्रीफे ट्रेन पे गब्रेक करे जो लांटी के चीज तो सदा सम जानेल भैया। हम जो समय पे सुरीनाम देश में रही तो स्कोटू के ओतो में घास काट के लादल ला और जहलीवों से घास कटवाई के स्कोटू इंस्पेक्टर अपन गाय के खवावत रहा भाई। ये सब चीज सुरीनाम में होत रहा। कभी कभी देखे ईटा सुमंती हो तो के ऑटो पे जा है और आदमी बोली हमें सिपाही के काम है तो बोले मीनो अभी ओली बांती बोरो। तो एक बारे में सालार बाग से वीकन ऑथोरिटीन geen toestemming gegeven voor de gebruik van privédoeleinden. Ook stelde hij de Berman van Pettenpolder door dezelfde zwager van de districtcommissaris zijn afgegraven en vernield. Hierdoor is de weg aan het afkappelen. Afkalven, sorry mensen. Toen hier wat we Bifeke Jones opmerken is hierover van VHP'er Amirani Jarbandhan dat het geld van de belastingbelaten niet gebruikt moet worden om uitspraak in de slansvormende vergaderzaal te doen. Gerbanden vroeg Jozef Permissel als er wacht heeft gelogen beloofd. Jude bolise dus toe. Jij zei reet in Gerbanden. Maar ja, bara moeilijk vraag stel kreeg. Geleerde mevrouw. En dat vind ik zelf ook. Je moet dat soort dingen zeker doen in een parlementaar. In de DNA bedoel ik. देखो भैया यहाँ बाई को रेक्रियासी और थे सुरीनाम जेकर नाम बा बीगी कुरुतू। हाँ रेक्रियासी और बीगी कुरुतू कभी एकर नाम हम ना सुन ली है कि छोटा कुरुतू बीगी कुरुतू कुरुतू तो हम जाने ला सब कुरुतू करे घरवा में तो बड़े का कुरुतू करे तू मौसी मौसा से। हाँ बाकी यहाँ एगो रेक्रियासी और के नाम बा बीगी कुरुतू ई है डिस्ट्रिक्ट पारा में भैया और हुआ का भले दगवल भइल है। तब बोलिए चोर दाग विषय ना भैया जोन बहेर दरवारा जेकर रहा जेकर रिक्रिया से और बीगी करो तू है 5 बजे संझा के एगो बेरखर के दागी से स्लाख्त ऑफर लिप स्कॉट वोंडिंग तो आदमी गैला भैया बीगी कुरुतू वे और हुआ पे बहेर दरवे ओके दाग जिस भैया मां पता ना है जिंदा है कि मर गए है। तो दोस्तों आप लोग को हम अपना समाचार सुनाते हैं। सुरीनाम देश में भैया सबको यो गोरे तेलवा कब निकली और यहाँ तेल आवे है भैया का बोले है ईरान और ईरान और का बोले अमेरिका में दगाउल हुए लगल फिर भैया ओली प्राइस चढ़ गए नीखन तक डॉलर भैया ना न्यू अनफालन और ये सब बात है हमारी जनता। ये बात है हमारे जनता नीखन तक अमेरिकन डॉलर हो गए हैं। स्ट्रांड फॉर हॉर्मुज क्रुशियल फॉर ओली मार्क स्ट्रांड फॉर हॉर्मुज बहुत द बलंगरेक्स सी रूट फॉर ओली टर वेरल ऑनगेवर एन फेव फॉर द मुंडियल ओली हंडल पासेड दिस ज्वाले दोरखंग। तो और बात हम बताते हैं भैया सुरीनाम के लेकर और आगे इंगी के और हम जाएला भैया जेके सबन बहुत प्यार से बोले इंगी के एन हिंस दरो प्रोफ दन और बोले सुरीनाम से
vereniging, de vereniging van inheemse dorfhoofden, bolle he, regeringsemang is kipangetje kilometer, zogenaamd 5 kilometer, werd niet af te kondigen. Bolle 5 km werd niet af te kondigen. De organisatie heeft de beslissingen, besluiten en aanbevelen van haar mini-confrecatie vastgelegd in de resolutie. Die formeel aan de Kiruna-lippen presidentiële werkgroep grondrechten dat u jane kheet ke baare me ingilon bahut din se khoje he baki usab ke khetwa na afrond kare he bhaiya ganga na afrond kare wingi kutte re ja he ab jab feest re bauta ke tab sab lai ke apan dhaman dhaman baja bajawe he तो ये बात है हमारे जनता हमारे दोस्तों एगो बेबी खबर भैले सरना में तो बोली जोनी यहाँ पर बड़ा ढेर हुए है लेकिन एगो एक्सक्लूसिव बेबी खबर भैले सुरीनाम में और तो लोग जाने हैं ये सब एक्सक्लूसिव चीज हरदम ना मिले सुने के देखे जोनिक लगे सब सुने के पहियो भैया तो ई मिलल है बेबी खबर भैल है और भैले धीरन तैन पर हमारी बहु सौ में एगो जगवार के भैया मतलब भगवा के बच्चा भइल है आखोंदत एंडेशन खराम में उनको फिर सोखरोत आलसन अर्जनास जितना बड़का एगो अनानास है उतना बड़का एगो बेबी खबोर भइल है द वेल्प हीफ सख्त प्लेसिगे वक्त में डंकर फ्लेकन दी कैनमेरिकन सो सेन फॉर जगवर्स और सुरीनाम में भैया हुआ हरना एगो रमन मार के खाली भाई हरना खाली बचाई करे ये बच्चों ना चोरी कर ले जाए भैया विश्वास ना है सुरीनाम में कैमा भी संबंधी रंत इनके मार के खा ले रहा और जाए के मूड़ी जंगल में पिरल रहा तो ये जगवार भैया कुमोई से घर में बन करके के पुसियो तो ये बात है हमारे जनता हमारे सुरीनाम के जनता तो हम सोचिला कि तो लोग के और हम का सुनाई गीत तो हम में भरल है तो एक गीत के ओर हम बढ़ते हैं तो आपको हम सुना देते हैं हुस्न वाले और तेरा जवाब नहीं है एक के हम जरूर सुनाएंगे कारण कि हुस्न वाले बहुत ज्यादा है लेकिन तारीफ करना भी बहुत बड़ी बात है तारीफ करने में चुकना नहीं आओ सुना जाए

और पूछने वालों तो तेरा जवाब नहीं है। तो अब दोस्तों एक दो समाचार और हम पढ़ेंगे तो हमारा समय आ गया है रोकने को, जाने को नहीं रोकने को। अब देखो भैया निकोलास मदुरा के ओर हम चलते हैं, जोन फीनी स्वीला के फुरमालक भैया हुआ के राजा रहा, हाँ प्रेसिडेंट रहा और अमेरिका के खूब गरियावत रहा भैया। अमेरिका के बस एक रोज का भैल है जाई के तुरंत ओके घर हुए मसे उठा लाए भैया मुर्गी ना सू पाए से बोलिए जोनी मुर्गी ना सू अच्छा बोल रही कुत्ता ना सू पाए कैसे ओके लेके चल गए और ले जाए के मदुरा के जहल में बंद कर दे। अब मदुरा अपन जाने के अब लड़े है कि कैसे निकली तो लोग जाने भैया कभी कभी ऐसा गढ़ाम आदमी गिर जा है क्योंकि निकले बड़ा मुश्किल है। तो मदुरा की ही बात है तो नवा फौतो ही अब आए ले तोरन मदुरा फॉर एयर से खफांग नीमन इन फेयर मदुरा दुबराई के भैया अरे जहल में कैसे मोटैयो भाई। और बोले अमेरिका के फुरमाल प्रेसिडेंट निकोलास मदुरा बोले हैगा अब जाए के कर फोटो आइल खफांगन नहीं मंदोर अमेरिकन से त्रुपन फोटो फनाई द डिटेंशन लातन पब्लिशेरन ऑफ द बिल फर्स्ट मदुरा ग्लिम लाखन इन अ ग्रेस ट्रेनिंगस्पाक इन अ बोस्काम आन से फैमिली आनहांगर सेगट हे सामन मेट से फ्रो सिसिलिया स्टंट होडन द फोटो फर्स्कीनन सोंडाग ऑफ सोशल मीडिया कनालन फन मदुरा हेस डार ऑफ सिखबार टेकन इनफोडिग मुर गक्लेड इन अ ग्रेस ट्रेनिंगस्पाक द मदुरा मन यू के भैया ने देख पियो अन ट्रेनिंग स्पाक पे और बताए गए कैमरा गेगेवन बाय द बिल्डन वेजन एरोप दैट फोटोस 25 यूनिट सेन gemaakt और बताए मदुरा लिट ऑफ द फोटोस वेजन दैट ही ze beschouwt als een klein gebaar voor zijn kleinkinderen en anderen die hem en zijn vrouw steunen. Want oude Tio Bane, we ja, doen nu parani, ban hele jijke. Oude Trump, ban kardese. Madura is Venezuela werd even weggevoerd. Staat Rodriguez aan het hoofd van het land. Haar regering heeft de betrekkingen met Washington verder aangehaald. En kiest nadrukkelijk voor diplomatieke economische samenwerking met de regering van president. Oude Donald Trump, waarom mee? और अगर जो वेनेजुएला अमेरिका से जब बढ़ रहे अभी मान लिया या कोई डोनाल्ड ट्रंप के लिए यार तब तो आग लग जाए दुनिया में भैया ऐसे बतिया है। लेकिन अमेरिका से के जाए लड़े भैया लेकिन ईरान आज लड़े है। अब देखो भैया स्वीडन टेकन करी से मिलियार्डन कॉन्ट्रैक्ट फॉर आनको फंड फ्रांस फ्री खातन यहां बताए गए हैगा 4.3 मिलियार्ड के कॉन्ट्रैक्ट टेकन कर इसेगा स्वीडन को फिर फ्री खतन फन फ्रांस नेपाल ग्रुप और बताल सेरेमोनी फन हेड कोप कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन भाई लेगा फ्रांक स्वीडन से बीच हुन बंधन ऑफ इट खबीर फन डिफेंसिव आन द हालन द ट्वी लैंड ड्रिंगन आन द ग्रोटे यूरोपीसे मिलिटेयर सेल्टरेटसाम हिडन आन गया फॉर द रूसीसे ड्रेगिंग फन ट्वी फन द अमेरिकानसे वेलिगेट गारंटी फन यूरोपा। तो ये बात है नीदरलैंड में बोले घर बने भैया तुलन जानो ऑलटाइम वोडिंग कोर कैबिनेट हेल्प वोडिंग बाउ अब 5 प्लेकन गेन गेल्ड एक्स्ट्रा गेल्ड फॉर वीकन। तो बताए गए हैगा डिफेंटर हार्लेम लेवार द मास्ट्रेक एंड वीर्थ में सब बनावे हैं बाजार करे 2035 में सब रोन कर दे 30,000 वोडिंगन दारदोर स्नेलर ऑफ सेन द वोडिंग मिनिस्टर जोनबा और वो बतावे हैगा ट्वेड कामर में कि एक्स्ट्रा geld om de woning bereikbaar te maken komt niet. De 5 gebieden komen bij de 21ste andere grootschalige woningbouwlocaties die eerder kabinetten al aanwijzigen. To je baat hebben ja ab to lon jane Suriname dus mee. जयो भैया मट्टी जो है लेक से लेक वाहन चलावे डाम पे तो यहाँ पर सुरीनाम बुक से ओवर रीगल रोन फरफूर फन ओवर लीडन ओवर ओपनबार वेग। तो यहाँ बताए गए हैगा अंडरवेरप है सेंट्रल एंड प्रेजेंटेशन के बारे में लेक फरफूर के बारे में जो ओपनबार वेरिक पे समन चलावे है एकर बारे में बता रेक्स कादर और बोले हैगा मिस्टर दनियाला खीफ अक्रमत आली प्रेजेंटेशन वर्ड मानदक 31 अगस्त को होते नेशनल आर्काइव इन परमारिबो और बोले द क्वेश्चन इज दैट मी ब्रीडर दन अलीन द प्रैक्टिस ऑफ रा हु अ लिखाम फन एने ना द अंडर लोकेशन वर्ड फॉर फूड्स ओकर बारे में
regels manier ook moet duidelijk zijn welke instantie op welke moment de verantwoordelijkheid draagt en welke wettelijke en operationele regels tijdens het transport in acht moeten worden genomen. De presentatie en moet meer gezicht geven in de verschillende aspecten. Kebare mee. To joon hamara lijke usabke regels bani ke kon aspect kaise hoi. Gaya din bole bhaiya, gaya din bole rakhering heeft zijn kluts kwijt. Bhaiya patana kapu kluts okar. Laas bole patana ko richting hamlo ke rakhering ja hai. Bole het lijks alsof de rakhering kluts kwijt is. Iban bole Asis Kumar gaya din bole hega. Aur DNA mee. Op een regering ze poetje hee, parasastale bestrijven, hun planning verbeteren. Nu hebben we het voor EBS en laat hegging daarover. Willen we zeker meer duidelijkheid, maar het gaat over de prastale bedrijven. Kebare mee, hamare janta. Toe je tha, hamara, des, abidis kismachar. Ek aanmi bhaiya,

कोई बता दे ये दिल है यहाँ और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्कर के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते हैं कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आप के दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है, तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेंगे। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आपके साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आजाद का ये फिल्म नई खतीन 5/5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहाँ, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

मेरे हम सफ़र हो मेरी हम सफ़र, लता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, नेहा इन फिर सस्ता का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं। और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता के और हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है, पत्थर के सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: फिल्म पत्थर का सनम, पत्थर के सनम, नई गति 67 इस गाना का हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथ ही लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है,

जिस पद पे चला उस पद पे मुझे मुझे लता जी फिल्म का नाम है यादगार से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन बुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार, उस दिन ये आंखें क्या होगा सुनने वालों, आपने खुद ही सुना है। हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई, और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और हुल्दर बिरमन की सांच में, और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना, नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

ओ दोस्तों, बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। कि दोस्तों, आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहोन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 MHz पर और नहीं कनाल 8 पर और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं, हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में, पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वस वाला मोह ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: किशोर कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गाया हुआ गीत है छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुरानी गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों। कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है। कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम। कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों। कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों। उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ पे।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग ही कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी दोस्तों। जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल हेल्थ दोस्तों बहुत लंबा होता है। कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, एक रोमांटिक सॉन्ग फ्रॉम कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

और संजना आई लव यू, संजना आई लव यू हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और एस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, निहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों, और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है, और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे, और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए, कि कहते हैं उम्र के रह उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जय बात बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कम बखत पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह, श्रिया घोषाल की ओर, शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहाँ कहाँ ना लागे दोस्तों। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका दोस्तों। और प्यार भरी प्रोग्राम यहाँ से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 5 20 20 4 7। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमर 25 देन हाँ शहर से। इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई, कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है दोस्तों। कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है, कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो दोस्तों, दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है, और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फॉन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी, पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग। और

फ्रॉम द मूवी इंडियन से हमने पेश किए हैं जाना तुझे जाना, तो जाना मैंने ये। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो गीत का बोल है ये समा ये नज़ारे, बाबू सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये समा ये नज़ारे, बाबू सुप्रियो और अनुराधा भोलवाल जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ढाई अक्षर प्रेम की। सरासा हम देखें तो मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। ये हवाएं सूफ में तेरी गुम हो जाए, अलका याग्निक और शान आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बस इतना सा ख्वाब है।

फ्रॉम द मूवी बस इतना सा। हाँ है, भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाज़ में। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किसी से चाह कर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोई नूर की तरह होता है। फ्रॉम द मूवी क्यों हो गया ना, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आओ ना, उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं उदित नारायण के साथ में साधना सरगम जी।

अभी आप सुन रहे थे आओ ना। नसीब के खेल भी अजीब होते हैं, सच्चे दिल वालों को आंसू ही नसीब होते हैं। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, पर अक्सर छूट जाते हैं जो करीब होते हैं। अब तेरे दिल में हम आ गए तो, फ्रॉम द मूवी आरसू से आप सुनेंगे कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे अब तेरे दिल में हम आ गए, तो अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आरजू से हमने पेश किए हैं। कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, कसूर तो बहुत किए थे जिंदगी में, लेकिन सदा यानी लेकिन सजा भी वहाँ मिली जहाँ बेकसूर थे हम। उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। आ कहीं दूर चले जाए हम, फ्रॉम द मूवी लावारिस से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आ कहीं दूर चले जाएं हम, फ्रॉम द मूवी लवारिस से हमने पेश किए हैं। अलका याग्निक के साथ में उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है फ्रॉम द मूवी सलामी से। आप सुनेंगे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना।

अभी आप सुन रहे थे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। क्यों उदास है ऐ इंसान, तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए बेहतर होगा। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, द टाइटल आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी हम तुम्हारे हैं सनम।

The title from the movie हम तुम्हारे हैं सनम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते अनुराधा पौडवाल के साथ में उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, ओपनिंग सिलेक्शन तो अभी आप सुन चुके हैं और चलिए एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे राम राम भज राम राम, और ये तो सच्चे सुनने वालों, राम से बड़ा है राम का नाम। मोहम्मद रफ़ी साहब आपको एक सुंदर सा गीत सुनाने वाले हैं, और इसमें बहुत रस है सुनने वालों।

किस पर करे गुमान बंदे किस पर करे गुमान, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी साहब जी आपको सुनाने वाले थे। और ये तो सच्चाई है सुनने वालों कि हम किस पर गुमान करें, आज हम हैं कल नहीं है और कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। और गुमान करके न कभी किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा सुनने वालों। और जीवन में भी कभी कभी इतनी कठिनाइयाँ आते हैं, कभी कभी इतनी मुश्किलात आते हैं कि लोग भटक जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, और कभी कभी तो लोग भी खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे करने से जो सब कुछ यानी जो प्रॉब्लम है जो मुश्किलात है सब कुछ हल हो जाता तो सभी कोई ऐसा ही करता। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते, सभी दुखी प्राणियों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों जीवन से न हारो जीने वाले। और जैसा मैंने अभी कहा है कि अगर हर एक मुश्किलात या जिस हालात में जितनी कठिनाइयां में आप है, अगर उसका हल यही होता कि लोग खुदकुशी कर लेते और अपने आप को हानि पहुंचाते, तो सभी कोई ऐसा करता। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि न कभी वक्त ठहरता है और न कभी ज़िंदगी ठहरती है। तो ये जब जब ये दोनों चीज़ आगे बढ़ते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों ना कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए। सुनने वालों, एक और सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी साहब आपको सुनाने वाले हैं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से। और ये गीत हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी इज्जत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

सुनने वालों, अभी अभी एक तार आया है हमारे प्रोग्राम में और माता जी ने तार किए थे और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा से बात किया और अपनी समस्या सामने लाई और उसका रिएक्शन जो थी, यानी उसकी रिएक्शन जो थी वो बहुत बढ़िया था और ये हम लोगों को एक पुश देता है, ताकत देती है कि हम लोग आगे बढ़े अपने प्रोग्राम से और अपनी ज़िंदगी में भी। और हम माता जी को हार्दिक से धन्यवाद कहते हैं। क्यों हम इस व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं? क्योंकि उनमें, यानी उसे मुझ पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने मुझे तार किया और अपने दिल की बात कह दी। थैंक यू वेरी मच, यानी धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और एक गीत, यानी ये भी मुझे बेहद पसंद है। चलिए ये गीत मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी प्यार की कहानी। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सुनने वालों, एक पते की बात बताओ, सुन मेरे हमजोली, सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब से एक पते की बात बताऊं सुन मेरे हमजोली, सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली। ये तो सच है सुनने वालों, अगर आप कड़वा बोली बोलेंगे तो भी आपने सुने हैं ना, वो लगते हैं जैसे एक बंदूक की गोली और उसे कुछ नहीं हासिल होगा। फ्रॉम द मूवी यानी फ्रॉम द मूवी प्यार की कहानी से हमने ये गीत चलाए हैं। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आया सावन, झूम के।

किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूमके। इसी फिल्म से हमने पेश किए है। और किसी को बुरा कहने से और बुरा सुनने से हम लोगों को क्या हासिल होगा? इशारों इशारों में दिल लेने वाले हैं।

इशारों इशारों में दिल लेने वाले फ्रॉम द मूवी कश्मीर की कली से भी आपने सुने हैं। सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

ठिकाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, मोहब्बत तो इसी को कहते हैं।

बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। भी आप सुन रहे थे जी सुनने वालों,

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं। फिल्म फर्श में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। फाउन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वादिकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वादिकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाहें यार ने कि एक ऐसा जादू भर दिया। और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए शिकार हो के चले, ये गीत हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से। माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाइए ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। और तो गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

So, गाने से पता चलता है से स्टॉक व्हाट फ्रॉम प्लान. लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं. योजना तो बहुत बनाया है मौसम के देखकर. बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की. तो अगर ये गीत पेश किए तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद.

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में, फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस के तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ, स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि गंगा ये गीत चलाने वाला है, ये नहीं करेंगे। चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं, क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

सेरन चंद्रा के साथ परचितल का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेला में से निकाल कर। अब ये तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमारे को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूल ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो चुन घी है, इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम, एक ही दम भैया बिरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों। हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर से भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फागुन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णादत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम 20 सितंबर 2020 का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम लेकर आया हूं साथियों, यश उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को पसंद आएगा। तो जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है। मैं थिल फील प्लेजीर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यार, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फा मांडा तो फ्रेडा टेडेंस कंतोर यूर ऑफ द फोल्गेंड टेलीफोन नंबर्स कंतोर 07-362-2047 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-362-2077। क्वालिटी ग्रांटी और सर्विस के साथ फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों। एंड नीट टू फॉरगेट है, ऑनस क्वालिटी इज ऑलवेज योर गारंटी। एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूलt u zich altijd lekkerder bij फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। toch हमसे पहले आप श्रोताओं ने 31 प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके हम लोगों का बड़का भैया उस्ताद का उस्ताद माएस्ट्रो चंद्रसेन गंगा जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। जिस तौर तरीके से भाई गंगा जी आप लोगों को सदियों से सेवा करते आ रहे हैं, ये आशा उम्मीद है हमारे फुल टीम की तरफ से कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से भाई गंगा जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि। हो सकता है कि आपके घर पे एक जश्न मनाया जा रहा है, शायद आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आपसे भी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं, या तो विवाह संस्कार की तैयारियां में लगे हो, जो भी खुशी के दिन जश्न आपसे भी मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती और दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। नहीं तो फिर कहते हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को रोजाना सुनते रहना, जिंदगी का मजा भी रोजाना लेते रहना बंधु। लीफ ड्यूट ओ सो कॉर्ड ओ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, हो सके तो थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फनार्थ भी दर्शका आप कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहदील से बधाइयां ही बधाइयां। एंड फॉर ऑल खास बंधु, और हो सकता है कि आप आज कल या परसों कामयाब नहीं
हुए है तो चिंता की कोई बात नहीं है बंधु मोर्खिस वीरन दख। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन सेल्फ ट्रस्ट जोर तोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना तो हो सकता है कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आकर आपके कदमों को भी चूम सकते है ना। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी यारो दत है वो तो ओवरऑल गेलेर्ड है थुइस ऑफ स्कूल ऑफ योर वर्क नेवर गिव अ ब्रदर नासिसा सोशल लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बदंत फॉर हैट लुइस्टरन जिसमें प्रवेश हुए हो तो सुस्वागतम फैन वकांसी ब्लेस लुइस्टरन आर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो यू गोन लाइक इट एंड दैट मीन इट ओ। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं और सुकनार मेर वारम तक तो आपको भी हमारे फुल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा फैन फकांसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को फैन फकांसी एड्रेस इंटरनेट के लहरों द्वारा तो आप भी सुन रहे हैं हम लोगों को अपनी टैबलेट स्मार्टफोन और लैपटॉप अलग से स्मोकलिक फिया इंटरनेट en dan bent u en blijft u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk maar Den Haag, Cherka, the one and only Fahun Hindustani Radio, 24 hours at your service, me gudu. तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ एड फिल्म ललकार 1976 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा या कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सरा कहते ही रहेंगे कि यू नास्ट आउट एट लीफ से मैंस कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम उन्स दा आफन गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग मैथ संगीतकारों का दास्ता नाम कार्यक्रम और तकरीबन 9 to 10:30 तक आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन फिल्म्स में महान एक्टर द ग्रेट अभिनेता द ही मैन हेट मैन धर्मेंद्र जी ने काम किया है। बीच में कुछ ज्ञान के बातें शेर शायरी भी है तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 रात्रि तक चलेगा यारो। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे देते रहना रफी साहब जी।

महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज में। तो साथियों, आज का इस हसीन रात्रि का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करने वाला हूं एक अति सुंदर पुराना बयान से। और देखा जाए एक पुराना फिल्म चाचा जिंदाबाद 1959। और लाते हैं प्रोग्राम में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, महान संगीतकार द ग्रेट मिस्टर M&M मदन मोहन जी के साच पर ये अति सुंदर बयान आप सुनिए। खसक्रीफ दौर राजेंद्र कृष्ण। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए ये फिल्म चाचा जिंदाबाद में संगीतकार का बादशाह और शहनशाह द ग्रेट किशोर दा ने एक्ट किया है, उस जमाने के मलकाए हुस्न द ग्रेट अनीता गुहा जी के साथ। तो मिलकर सुनते हैं बैरन नींद न आए मोरा जिया घबराए।

अति सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। एक पुराना मूवी चाचा जिंदाबाद 1959 द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी के साथ राजेंद्र कृष्ण के अल्फाजे और मधुर आवाज थी लता मंगेशकर जी का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गीतर गजल ओत इस गोत खलिंग में संगीतकार का दास्ता नामक कार्यक्रम। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 17 मिनट गुजर चुका है 8 बजकर। तो देखा जाए तो फिल्म बाजार जो रिलीज किया गया था 1959 में, उसी फिल्म में से मैं 3 गाना सेलेक्ट किया हूं। पहला आप सुनेंगे डुएट सुरैया और महान संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर के आवाज में, और दूसरा है तू मेरा चांद लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइटी मुकेश जी के साथ और सुरैया, और तीसरा नगमा है रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में। तो फ्रॉम द मूवी बाजार संगीतकार कमर जलालाबादी और शाकिल बारायूनी ने मिलकर ये गाने को लिखे हैं और श्याम सुंदर द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर के अरेंजमेंट है। मिलकर सुनते हैं ये तीनों नगमे को। जालिम जमाना तू मेरा चांद और मेरे भगवान।

Hey Ravi's op zijn beste oude film Dil Lagi aur Mahan Sangeetkar Naushad Ali ke isaaj par alfaze Shakir Badayun ke aap sun rahe the. Teen nagma waaruit eentje uit film Bazaar en de twee eerdere nummers zijn gezongen door Suraya Arsad de Rahatha, mashhoor music director aur sanger us zamane ke the great Shyam Sundar ji. एक मिनट रह गया है साढ़े आठ बजने में साथी, और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग मैथ संगीतकारों का दास्ता नाम कार्यक्रम. अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है, एक बार फिर लाते हैं भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी आई द पुराना मूवी सब्स बाग. उस जमाने के यानी यार 50 का मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट एरिक रॉबर्ट्स उसका असली नाम था, लेकिन संगीत की दुनिया में लोग उसे म्यूजिक डायरेक्टर विनोद के नाम से भी जानते थे. कुछ फिल्मों में एज म्यूजिक डायरेक्टर वो फोर आया था, ढेर फिल्मों में. बहुत ही कम उम्र में भगवान के प्यारे हो गए थे. मिलके सुनते हैं द क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के ब्यूटीफुल मधुर आवाज में मेरे दिल के तड़पने का तमाशा आगे सुनिए यारो.

क्या बात है, दिल को छू लेने वाला नगमा आप सुन रहे थे, और वो भी 78 टूर पर मिनट। आई फिल्म सब्स बाग 1951। उस जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट एरिक रॉबर्ट्स अलियास विनोद भाई ने ये अति सुंदर बयान को रचाया और सजाया है। और लेखक इस गाने का मोहम्मद असीज कश्मीरी। साथियों, 3 मिनट गुजर चुका है 8:30, तो वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ मशहूर मशहूर लोगों और कुछ विद्वानों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर सितात लिख लिख कर चले गए हैं। कुछ जीवित है, कुछ भगवान को प्यारे हो गए, और ये सितात जो जिंदगी के बारे में जाता है मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। यह उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। दूसरा खौर फरमाए, अर्ज किया है द ग्रोस्ट कॉमिक एंड कबराजे फॉर नीदरलैंड अलर टेड माएस्ट्रो टोन हरमंस ने कहा है, यारो te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst. De grootste voetballer aller tijden van Nederland, maestro Johan Cruijff, nee, hij, voor een slechte voetballer heeft hij, dan bedoelt hij Zlatan Ibrahimovic, voor een slechte voetballer heeft hij een hele goede techniek. Maar voor een goede voetballer heeft hij juist een slechte techniek. Mahagyani Sophocles ne kaha hai yaro ki veel wijsheid ligt in korte woorden besloten. Eens de leider van Engeland, Sir Winston Churchill ne kaha hai yaro, succes is niet het einde. Mislukkig is niet fataal. Het doorzettingsvermogen telt. Eentje om te onthouden hoor. Herman Vinkers, Nikahai Satjo. Deze verrekijker vergroot wel 8 maal. Maar toen ik er voor de 9e keer doorheen keek, deed hij het ook nog gewoon. Karel Jonkheer Nekahai Satyo ki, er zijn mensen die hun dankbaarheid uitsluitend bewijzen door naar uw begrafenis te komen. Dat gebeurt heel vaak tegenwoordig. De grote uitvinder Albert Einstein Nekahai Satyo ki, logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. De Bhagwan ne kaha hai saathiyo ki, gelukkig worden begint met de vraag, wat houdt mij tegen? Nog eentje van maestro Johan Cruijff, simpel spelen is het mooist. En de laatste van vanavond, eentje uit de geschiedenisboeken. De huidige generatie ontdekt steeds weer opnieuw wat de vorige vergeten is. Dus had je op je aap kuchingan kebat is in de het hee. Ja, zo meed lekker in batu kom je aap ze bitak pong chaya. Ke in batu se hemisha kitra kuch na kuch tom luk sikte hier henge. Program ko aage badhata hoon. 7 minit gujar chuka hai 8:30. अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, एक बार फिर लाते हैं प्रोग्राम में सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब में तन हेल मोय बिसुंदर गजल। और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए इट्स अ नॉन फिल्म सॉन्ग जो रिलीज किया गया था इन द यार 70। पागल चंदा मिल के सुनते हैं, जबरदस्त सॉन्ग है।

क्या बात है, दिल को छू लेने वाला ये ब्यूटीफुल गजल आप श्रोताओं के शो में पेश किया गया और ये भी फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। इट्स अ नॉन फिल्म सॉन्ग जो रिलीज किया गया था रियार सेवन तक। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड खलिंग में संगीतकारों का दास्ता नाम कार्यक्रम। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है, एवरग्रीन सॉन्ग है और कुछ नगमे में सिलेक्ट किया हूं आज की रात्रि के प्रोग्राम। ज्यादा से ज्यादा सुर का देवता और बादशाह द ग्रेट रफी साहब जी के आवाज में तो मिल के सुनते हैं इन फ्रॉम द बेकेंस्ट एंड बरूमस्ट नंबर फ्रॉम रफी साहब जी एट द फिल्म दुलारी। आप लोग तो जान गए होंगे ना कौन सा गाना है। कॉम्पोनेट दौर यार दर्तक फिरतक और फिरतक का सस्तक ले फिर दिसेनिया लांग हेफ्ती अपना संगीत बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को दिया। एन फन द मेस्ट पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर आलर टाइड श्री नौशाद अली जी के कंपोज किया हुआ ये सुपर एवरग्रीन हेड सॉन्ग रफी साहब जी के आवाज में और अल्फाजे है द ग्रेट स्क्राइफर शाकिल बादा यूनी जी का। मैं बात कर रहा हूँ सुपर हिट सॉन्ग सुहानी रात ढल चुकी। पहला बार जब मैं ये नगमा को अपनी जिंदगी में सुना तो मेरे ख्याल से मैं 4 साल का था। तब से और अब तक ये तो मेरे नसों में मेरे दिमाग में समा गया है नगमा। इन फन मोइस्ट न्यूमर्स वफी साहब है सॉन्ग आदर तैर एंड अतमीन

शादली 1949 का ये बनाया हुआ धुन एक फिल्म दुलारी रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में और अल्फाज था द ग्रेट बदायूनी जी का। 12 मिनट रह गया है साथियों 9 बजने में, तो अगला बयान आप जरूर सुनिए, बहुत ही मीठा धुन है लेकिन देखा जाए तो एक मराठी गीत है लेकिन इसका मेलोडी इतना मधुर है क्योंकि मैं जब ये गाना को सुन रहे थे तो मैं सोचा कि क्या बात है, क्या गला है ऑलवेज, लेकिन अपनमुआ भी इतना मोई है और पुराने जमाने में लिया था तो इसको एक न्यू याशिया में डाला गया है। भाषा तो मराठी है लेकिन सुनिए और खुद फैसला कीजिए। शो दीशी मनवा एक बार फिर द ग्रेट रफी साहब जी।

0: कुछ मराठी भाषा में जो खास करके बॉम्बे में बोला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मराठी लोग वहाँ बोलते थे। रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज़ में इतनी सुंदर बयान आप सुन रहे थे। सिमरी टुडे गया है साथियों 9 बजे में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को टेक ओवर करूंगा और आप सभी के खिदमत में कुछ नगमे तैयार करने वाला हूं, और जरूर ब्रेक के बाद प्रोग्राम को सुनते रहना, खास करके अगर आप धर्मेंद्र जी के फैन है तो, क्योंकि सिर्फ नगमे चलेंगे जिन म्यूफिस में धर्मेंद्र जी ने काम किया है। तो ब्रेक के बाद मिलता हूं, कहीं जाना मत।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आज श्रोताओं के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ साथी तो पूरे 9 का वक्त हो चुका है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सुसर लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू अनतिलक बदंत फॉर हेट लाइस्टरन। तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से जरूरी खबरें इस तिहारे डैंक ऑन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक ऑर्गामान हो ऑर्गा वूमन हो इवेंट ऑर्गेनाइजेटर तो अपने शोज या जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा करो। फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार हो तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। लॉन्ग द लुक ऑल्सो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहर द्वारा किफायती दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना हो मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही

बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूं कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करे ओप 07635622740 कांतोर का नंबर है और स्टूडियो का तार का नंबर है 07632 60 20 77। Van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren kunt u op deze twee nummers bellen. To job hier radio ka kaam hona, denk aan Vahun Hindustani Radio. U bent van harte welkom. Bent u nog geen lid van Vahun Hindustani Radio? To guzar is binti ni bidden kia ja raha hai ki aap bhi hum log ka member bane. औरों को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। En zoals jullie allemaal gehoord hebben, we hebben ook onze eigen karaoke team, onze clubje van Vahun Hindustani Radio's, waar een stuk van 8 omroepers en omroepsters meedoen. We hebben vandaag ook gezellig opgetreden bij wijkcentrum Transvaal in de Natalstraat voor onze leeftijdgenoten. Ja, ik ben ook al 70 plus, maar er waren ook een paar oudere mensen. En zoveel complimentjes gehad van al die lieve mensen daar. We hebben zelfs een naam gekregen. Dus Abhi Aker is Chotasa aur Motasa Faun Hindustani Eduka परिवार जो बनते जा रहे, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने उस टेलीफोन तक 35622740। Dan wordt u automatisch door verbonden naar onze teamleider, the one and only maestro Johnny number one. तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। Bent u nog geen lid van Vahun Hindustani Radio? To aap bhi jald se jald member bane. Aur ho sake to auron ko bhi hum log ke lekar rahiye tok. Vooral als wij live gaan optreden. Het wordt met de dag gezelliger hoor. Leuke zangers en zangeressen. En u bent van harte welkom. Isi tarah hum log ke bare mein charcha karte rehna hai yaar. Reklame banate rehna thora mota. Aur agar ho sake thora bahut. तो ढंढोड़ा भी पीट देना हम लोगों के बारे में, तो इसलिए क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना, मिलजुल के हम लोग यहाँ पर रेडियो चलाते हैं और आप लोग सुनते हैं, बहुत ही मजे आते हैं हम लोगों को और बहुत ही प्यार दुलार से हम लोग प्रोग्राम को सजाते हैं, रचाते हैं और आप सभी को सुनाते हैं। तो आप भी हम लोगों के बारे में जरूर बातें शातें करें ना, क्योंकि आप है तो हम लोग भी है। 4 मिनट गुजर चुका है साथियों, 9:01 एकदम लेकर चलते हैं आप सभी को, जो मैं वादा किया था कुछ नगमे आप सुनिए। और सिर्फ जिन मूवीज में महान एक्टर द ग्रेट अभिनेता धर्मेंद्र जी ने काम किया है, बीते हुए यानी बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म इंटरनेशनल ग्रुप तक, जो रिलीज किया गया था इन 1974 में। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है द ग्रेट एक्टर श्री फिरोज खान जी के साथ। क्या बात है, मलकाए हुस्न द ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट सायरा बानो जी भी इस फिल्म में काम किया है। महान संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन के साझे और अल्फाजे है गाने का, लेखक असीस कश्मीरी जी के अल्फाजे। तो फिल्म इंटरनेशनल क्रूक से आप गाना सुनिए। लाते हैं प्रोग्राम में संगीतकार का बादशाह और शहिनशाह डोली किशोर दा सुनाने जा रहे आप सभी को, आशा भोसले जी के साथ मिलकर प्यार की मुझ पे क्या नजर डाली, क्या बात है, आगे सुनिए।

अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे, और ये भी किशोरदा और आयशा भोसले जी के आवाजों में आई फिल्म इंटरनेशनल क्रू 1974 शंकर जय किशन के साथ पर। अगला बयान एक सुपरहिट एवरग्रीन सॉन्ग है। जब मैं 1974 में ये फिल्म को देखा तो मैं जान गया था, बाप रे बाप, ये तो रेडियो राधिका और रेडियो रापार ये गनवा फर्सलाइट कर दे। तो आप सुनिए कि कितना बार ये चला होगा उस जमाने में फरमाइश के जरिए, फना फ्रेडक तो सोंदा हो देख दिन नंबर एलक वीकेंड ऑफ द रेडियो, कब कब तेरे डोर भी चला देता सब भी। सुपरहिट सॉन्ग एवरग्रीन सॉन्ग किशोरदा के ब्यूटीफुल आवाज में कॉम्पोनेट डोर शंकर जय किशन, मेरे दिल में तू ही तू है।

सॉन्ग एवरग्रीन सॉन्ग हसीनों का पुजारी और संगीतकार और सभी कलाकारों का और म्यूजिक डायरेक्टर हो या सिंगर हो सभी का बादशाहों का बादशाह डॉन एंड ओली किशोर दा जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप लोगों ये थी सुंदर बयान को सुन रहे थे। दो मेरे ख्याल से फिर duizend keren zal dit nummer al afgedraaid zijn. Alleen maar in Suriname hoor. Praat ik over. 15 minuut guzer chuka hai saathiyo. 9 bajkar aur aap chun hai aap hi ka happy happy station hamare Den Haag shahar ka Fahun Hindustani radio par. Agla bayan. जबरदस्त सॉन्ग है हुस्न ए ईरान ओ मेरी जान एन संग्रेस मेट एन हेल अपार्ट एन मोई स्टेम टून से इन द यार 70 डोरब्राक इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री वेर्ड एर लिंक्स एंड रेक्स नोग गेकेकेन हर ना हार मलकाए हुस्न और संगीत क्या बात है द ग्रेट शारदा जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए uit de film International Crook 1974 composed by Mahan Sangeetkar Jodi the Great Shankar Jai Kishan

What a great composing by the great Shankar Jaikishan from the movie International Crook 1974. Ganewalithi, the great Shardaji, Malkai Husne, Malkai Sanghi. 20 minuut व्यतीत हो चुका है, नौ बजकर साथियों, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड, और नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में द ग्रेट धर्मेंद्र जी ने काम किया है, और हम लोग पहुंच चुके हैं फिल्म इंटरनेशनल क्रूक तक, जो रिलीज किया गया था 1974 में। अगला बयान महान गायक पद्मश्री महेंद्र कपूर जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं इंटरनेशनल फिल्म इंटरनेशनल क्रूक का सॉन्ग ट्रैक फैशन।

क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी इंटरनेशनल, क्रूक पहरा दो भाई होशियारी से और जागते रहना। सुना रहे थे आप सभी को महान गायक पद्मश्री महेंद्र कपूर जी। 2 मिनट बाकी है 9:30 बजने में साथियों, अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी इंटरनेशनल क्रूक, और एक बार फिर महेंद्र कपूर जी को लाते हैं प्रोग्राम में। इट्स द टाइटल ट्रैक म्यूजिक एड फिल्म, और कुछ अल्फाज आप सुनिए महेंद्र कपूर जी के, कंपोज बाय शंकर जय किशन, द टाइटल सॉन्ग।

ये चमन को बेच दे, हवा को बेच।

में छुप जाता है, सोना छुप कर रहता है, महलों में छुप जाता है, दुगनी भूख बढ़ाता है, इनकी गहरी चाल है।

title song from the movie International Crook 1974. Chorus oude Mahender Kapoor, die ik was mee, het is een Rubiana, absoluut al. Zo'n hit gecomponeerd door Shankar Jai Kishan. शायरी के टाइम हो गया है साथियों, 3 मिनट गुजर चुका है 9:30 बजकर, तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारों की कभी शाम ढले जब हम मिले, कभी शाम तो ढले जब हम मिले, ना दिन ढले ना रात हो, ये आरसू दिन रात हो, ये जिंदगी तेरे साथ हो। सुना है हर चीज मिल जाती है दुआ से, सुना है हर चीज मिल जाती है दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से।

याद रुकती नहीं रोक पाने से, याद तो रुकती नहीं रोक पाने से, दिल मानता नहीं किसी के समझाने से, रुक जाती है धड़कने आपका भूल जाने से, इसलिए आपको याद करते हैं जिंदगी के बहाने से। क्या बात है यार, जबर लिखी। What you think? My English is not very well. तो कुछ English में सुना दे। Every moment spent with you is like a dream come true. Every moment spent with you is like a dream came true. You are my love, my life, my forever few.

को इतना प्यार तुम पर कैसे आया, ना जाने इस दिल को इतना प्यार तुम पर कैसे आया, तुम्हारे सिवा मेरे इस नादान दिल को किसी का चेहरा नहीं भाया, इसलिए तुम और आपके पास आया। तो साथियों ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को। 6 मिनट गुजर चुका है 9:30 और आप सभी को तो मैं फिल्म इंटरनेशनल ग्रुप का सभी गाना सुना चुका हूं यारो। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था 1957 तक में, फिल्म तेरी मेरी एक जिंदड़ी, और ये देखा जाए एक पंजाबी मूवी था। तो 3 गाने इस फिल्म से मैं सिलेक्ट किया हूं आप सभी को सुनाने के लिए। महान संगीतकार उस जमाने का डिग्रेट एस मोहिंदर का संगीत है, इंद्रजीत जी के अल्फाजे है। तो एक अति सुंदर पंजाबी सॉन्ग आप सुनिए, गाने वाली नरेंद्र बीबा जी के ब्यूटीफुल आवाज में।

अति सुंदर पंजाबी सॉन्ग आप श्रोताओं अभी सुन रहे थे। गाने वाली थी नरेंद्र बीबा आइड फिल्म तेरी मेरी एक जिंदरी 1975 geschreven door een Inderjit Hassanpuri और महान संगीतकार एस मोहिंदर जी का म्यूजिक आप सुन रहे थे। उन्नीस मिनट रह गया है 10 बजने में। साथियों अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है, एन हेल मोय डुएट फन रफी साहब एंड पुराने जमाने के नाइटिंगेल में एन हेल अपार्ट स्टेम शमशाद बेगम जी मिल के सुनाते हैं टाइटल सॉन्ग तेरी मेरी एक जिंदगी 1975 गकॉम्पोनियर डोर एस मोहिंदर।

बड़े पुराना पंजाबी सॉन्ग आप सुन रहे थे, वेयर पंजाबी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी तेरी मेरी एक जिंदड़ी, गाने वाले था रफी साहब और शमशाद बेगम जी। पूरे 15 मिनट रह गया है साथियों 10 बजने में, और एक आखिरी बयान है तो फिल्म तेरी मेरी जिंदड़ी आप सुनिए। और इस बार देखा जाए अति सुंदर बयान को सुनाने वाले हैं आप सभी को एक बार फिर रफी साहब जी और नरेंद्र मिलके इतनी सुंदर बयान को गाए हैं। इन्हें जोर दी मरोड़ी मेरी क्या बात है, कंपोनेटर एस मोहिंदर और लेखक है इंद्रजीत हसनपुरी।

0: क्या बात है, ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी तेरी मेरी एक जिंदगी। गाने वाले थे रफी साहब जी और नरेंद्र फ्रॉम द पंजाबी मूवी एस मोहिंदर के सांझ पर। तो साथियों, सभी गाना फिल्म तेरी मेरी एक जिंदगी का मैं आप सभी को सुना चुका हूं। चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1975 में, फिल्म साजिश। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न द ब्यूटी क्वीन एक्ट्रेस सायरा बानो जी के साथ साथ दे रही है इस फिल्म में मशहूर कैबरे डांसर हेलन जी और द ग्रेट देव कुमार जी इस फिल्म में काम किया है दाफत और राजेंद्रनाथ यानी चार्ली जी के साथ। तो फिल्म साजिश में से आप गाना सुनेंगे। लेकर चलते हैं आप सभी को एक बार फिर आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथ दे रही है रानू मुखर्जी हजरत जयपुरी के साज है शंकर जय किशन जी के साज। मिल के सुनते हैं हाउ स्वीट कैन यू दादाजी भी। आगे सुनिए हाउ स्वीट दादाजी।
1: हाउ स्वीट दादाजी।

Yes, how sweet Dadaji can be. From the movie Saazish, gaane wale thi the great Asha ji, saath de rahi thi Ranu Mukherjee, Hazrat Jaipuri ke alfaze aur Shankar Jay Kishan ke music pe aap ye thi sundar bayan ko sun rahe the. तो साथियों 4 मिनट रह गया है 10 बजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है.

फन हंड्रेड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट 2 सितंबर 2020 का यह हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो के वक्त जब तरफ मैं आ रहा था तो तापमान तो तकरीबन उस टाइम 19 और 18 के दरमियान हो चुका था और बहुत ही स्वार भोलक था। अब तो रात्रि हो गया है ना, तापमान तकरीबन 17 या 16 डिग्रीज के दरमियान है। लवली नाइट, कुछ अति सुंदर सुंदर पुराने पुराने नगमे सेलेक्ट किया हूँ आप सभी के लिए। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का रेडियो स्टेशन है देन हाशर का द वन एंड ओनली फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। तबलाइस्टर ना फिया इंटरनेट के लहर द्वारा fahunfm.nl पर। एक बार फिर आप सभी को स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी फॉलो कर रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतीलक बदंत फॉर हेट लाइस्टरन है। फरमाइजे वो जरूरी खबरें इश्तिहारे दें कन्फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो 07-365-227-40 पर आप तार करें। कंटोर का नंबर है और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-362-20-77। जो भी रेडियो का काम होना साथियों, दें अनाउंस दें कन्फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रेक्लाम बनाते रहना साथियों, चर्चा करते रहना और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना हम लोगों के बारे में, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। बेंतिनो खिलत फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजार इस बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एन खातर नोट एंड never spijt van krijgen, want we hebben ook onze eigen zang karaoke team, hè, waar een stuk of 8 omroepers en omroepsters mee zingen. We hebben vandaag ook gezellig maar heel vroeg opgetreden. 10:30 waren we al gestart om een paar leeftijdgenoten van ons en nog ouderen onder ons te entertainen en het was heel gezellig. Heel veel complimentjes gehad van de luisteraars en ook een beetje in naam ook gehad. Kyunki itne buzurgon ke miljul ke hum log kuch sunaye टूटा फूटा जो हम लोगों के मालूम है। ze hebben het heel leuk gevonden, nadien hebben we lekker gezellig gegeten met collega's, het was super leuk। तो आप भी आकर इस हमारा सा छोटा सा और मोटा सा बड़ा सा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार जो बनते जा रहे हैं ना, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। 07-365-227-40 पर आप तार करें, dan wordt u rechtstreeks door verbonden naar onze teamleider, the one and only maestro Johnny number one। तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। लेकिन हम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। नगमे चल रहे हैं फिल्म साजिश 1975। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी और उनके साथ दे रहे हैं पद्मश्री महेंद्र कपूर जी। शंकर जय किशन के साथ है और अल्फासे है, क्या बात है, उस जमाने के महान लेखक द ग्रेट हशरत जयपुरी।

0: सुंदर बयान, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। शंकर जय किशन के साथ पर आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर जी को। 10 मिनट गुजर चुका है साथियों, 10 बजकर धीरे धीरे वक्त भी करीब आने लगा है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान है द फिल्म साजिश 1975 शंकर जय किशन के साथ पर एक बार फिर आशा भोसले सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को। ना ताज चाहिए ना तख्त चाहिए,
1: ना ताज चाहिए

होना भी चाहिए, हर वक्त चाहिए, और वो भी तेरा प्यार। एक फिल्म साजिश 1975, हसरत जयपुरी के अल्फाजे शंकर जय किशन के साथ, और आवाज थी आशा भोसले जी का। तो साचो धीरे धीरे 15 मिनट गुजरने वाला है, 10 बजकर तो आखिरी शेर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। और ये भी हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए, दो लाइन शेर शायरी है साथियों, यही तो खूबी है दो लाइन शेर शायरी का कि इतने कम लफ्जों में पूरी कहानियां लोग सुना देते हैं ना। अर्ज किया है नहीं चाहिए मुझे तुमसे बेहतर, नहीं चाहिए मुझे तुमसे बेहतर, मुझे सिर्फ तेरा साथ सुकून मिलता है। ये भी होता है यार, दिल की आवाज को इजहार कहते हैं, झुकी निगाह को इकरार कहते हैं, सिर्फ पाने का नाम इश्क नहीं यारो, सिर्फ पाने का नाम इश्क नहीं, कुछ खोने को भी प्यार कहते हैं। सही बात है, सही बात।

दोस्त भी तू, प्यार भी तू, दोस्त भी तू, एक भी तू, हजार भी तू, प्यार भी तू, दोस्त भी तू, एक भी तू, हजार भी तू, गुस्सा भी तू, माफी भी तू, मेरे इस जिंदगी के सफर में, मेरी दुनिया में काफी है तू।

ना जाने इस दिल को इतना प्यार तुम पर कैसे आया, ना जाने इस दिल को इतना प्यार तुम पर कैसे आया, तुम्हारे सिवा मेरे इस नादान दिल को किसी का चेहरा नहीं भाया, इसीलिए प्यार सिर्फ तुमसे हुआ।

0: या आखिरी शेर साथियों आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, याद रुकती नहीं रोक पाने से, दिल मानता नहीं किसी के समझाने से, रुक जाती है धड़कने आपको भूल जाने से, इसलिए आपको याद करते हैं जीने के बहाने से, नोग een keertje, hè? Leuk, blijf het herhalen, omdat het een hele leuke is. तो ये था कुछ आखिरी शेर्स. अगला बयान एक बहुत ही मजेदार सॉन्ग है, पिक चढ़ाया गया है द ग्रेट कॉमेडियन राजेंद्रनाथ चार्ली जी के ऊपर. हम तो लेंगे सबके बलाएं, भैया क्या बात है, बोले सबके बलाएं वही ले. सुनाने वाले हैं महेंद्र कपूर जी के आवाज में शंकर जय किशन के साथ.
1: तुझे हमने चाहा अपना समझकर, मगर तुमने मारा तबला समझकर. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं.

क्या बात है, मजेदार सॉन्ग हम तोड़ेंगे सबके बलाए। Uit de film Sazish uit 1975, gecomponeerd door Shankar Jaikishan, Awaze Tha Mahendra Kapoor Jika. तो साथियों सभी नगमे फिल्म साजिश का मैं आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त मूवी के तरफ जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1975 में, फिल्म प्रतिज्ञा। जबरदस्त मूवी धर्मेंद्र जी का, और इस फिल्म में वो काम किया अपने ब्यूटिफुल मलकाय हुस्न सेंट ट्वेड फ्रॉ हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल के साथ, द ग्रेट अजीत और जगदीप साथ साथ मुकरी भी इस फिल्म में काम किए हैं, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ है और सभी गाने आनंद बख्शी जी ने लिखा है इस फिल्म का। तो अब आप सुनिए फिल्म प्रतिज्ञा जी का ये सुपरहिट सॉन्ग, जो देखा जाए तो इतना पुराना गाना लेकिन रिकॉर्डिंग 42 मिलियन केर ऑफ बकेक ऑफ यूट्यूब, इट इज ओक हेयर फेल। और मैं यत यमला पगला दीवाना, आप तो देखा है कितने पागल और कितने जोर तोड़ से इस गाने पर अपना एक्टिंग का कमाल धर्मेंद्र जी ने दिखाया है। तो मिलके सुनते हैं ये जबरदस्त एवरग्रीन सॉन्ग फॉर फरलीफ द यंगन्स, मिलके सुनते हैं। ओनली रफी साहब जी ये गाना को इस तरह से गा सकता है।

यही आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों की जिस तौर तरीक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में यही आशा है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा।

अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूं सरनामी संगीत लेकर। पहला अध्याय में हमेशा की तरह कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ नए नए या कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक ओक न्यूअर एंड ओल्ड टेसडोर एट लास्ट यूज नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, हमारे बात आप सभी को खिदमत करने वाला है हम लोगों का टीम लीडर मास्टर जॉनी नंबर वन जी। और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूं ना, और इस बार कुछ महान फनकार ग्रेट दादा हेमंत कुमार के याद में।

from the bottom of my heart, और अगर जिंदगी ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा आप सभी को खिदमत करने के लिए. सोशल लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नैतिक बनंत फॉर एट लेस्टरन श्री बी स्वीटी.

और यहाँ से कुछ मिली जुली पुराने और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे। और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या श्रीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो। और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्त।

कोई बता दे ये दिल है यहां और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहां होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूंगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्कर के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते हैं कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आप के दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है। तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगी। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आप के साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आजाद का ये फिल्म 1955 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहां, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

बसे ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, और आपके जुल्फों भी क्या इतनी सुंदर है हमारे दोस्तों। फिल्म तीसरी मंजिल का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग के सुनाया है, और इसमें काम किया है शमी कपूर जी और हेलन जी, और गाना को गाया है भाई आशा मोहम्मद रफी जी और आशा भोसले। दोस्तों हम चलते हैं अगला गाना का ओर, वो है मेरी हमसफर लता जी और मुकेश जी की ओर हम चलते हैं। और इसमें ये गाना भी एक बहुत पुराना फिल्म है भाई, और आप लोग को हम सुनाते हैं मेरे हमसफर फ्रॉम लता मुकेश जी।

मेरे हम सफर हो मेरे हम सफर, लगता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, नेहा इन फिर सस्ता का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता के और हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है पत्थर की सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: फिल्म पत्थर का सनम, पत्थर के सनम नई गति 67 गाना का हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, दो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथ ही लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है।

चला उस पथ पे मुझे मुझे लता जी फिल्म के नाम है याद गांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार, उस दिन ये आंखें क्या होगा। सुनने वालों, आपने खुद ही सुना है, हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और हुल्दुर बिरमन के सांच में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

0: जब हम जवां होगे और जब हम जवां होगे तो तुझे हम याद, तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत नेकत इंद्रिय तख्त का ये फिल्म है, जब हम जवां होगे।
1: और दोस्तों प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से माँच आप लोग को और सेवा करेंगे दोस्तों। पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा है वो अपना हो ना हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों, और हम तुरंत चलते हैं। और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों, और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा, साधना संगम सरगम है इसमें। और फिल्म के नाम है गुथ गर्स, खुद गर्स दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

और आपकिया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सैफ तक नेह तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: अरे मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं, अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोकमाल्स नोकीर बेस्ट लाइस्ट्रांग, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरते तो लाखों होगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना कोर कि पूछो जरा पूछो।
1: मुझे

और तुमसे ये दिल लगाने की सजा है। दोस्तों राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खंती का ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों, और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

और दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी।

जब सवाल ही पैदा नहीं होता है हमारे प्यारे दोस्तों। ये बात ही कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजानी हो गई है। जहां पर फूल खिलते हैं कभी, आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और ये सब बात कब होता है, जब प्यार में टकरार होता है। तो वो कहते हैं अपनों के बीच बेगाने हो गए, प्यार के लम्बे अनजाने हो गए। जहां पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गए है दोस्तों। और हम चलते हैं एक गीत की ओर। आ जाना और फिल्म के नाम है कूली नंबर 1। भैया मिलकर सुना जाए।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूं, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान। सपने तो हम सबको जरूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सभी जानकारी है, जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था स्वप्न विज्ञान, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और आगे आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक कारण कि जो हमें सपने आते हैं उन सब का प्राकृतिक कारण क्या है। प्राकृतिक कारणों के अनुसार कफ पित्त वात का परिणाम अधिक होने पर मानव को अलग अलग स्वप्न दिखाई देते हैं कि कई बार जैसे हम बीमार होते हैं उसके अनुसार भी हम सबको सपने आते हैं।

साफ प्रभाव धीन, सफेद चीजें, गुफा, तारों का समूह, मेघमंडल, स्फटिक मणि, संगमरमर, दिव्य पदार्थ, फल, यज्ञ सामग्री, यज्ञ मंडल, सुंदर आभूषण। अगर कफ की बीमारी हो तो आप सबको ऐसे सपने दिखाई देंगे ज़्यादातर। वात प्रभाव दीन, ऊंचाई पर चढ़ना, आसमान मुख संचार उड़ना। पित्त प्रभाव दीन, आग, पीली पृथ्वी, तक्षिण शस्त्र, जलती दिशाएं, अशोक वृक्ष, आघात गिरना, नाश्ता करना, क्रोध करना। दो स्वप्नों का परिवार।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दू स्वप्नों का परिहार। लाल चंदन की समिध्या घी में डुबोकर 1000 गायत्री मंत्र का हवन करना। दूसरा, शुचिमूर्त होकर पूर्वाभिमुख आसन होकर अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दन हंस एव नारायण इन 8 नामों का उच्चारण 10 बार करें। तीसरा, भक्ति भाव से विष्णु नारायण कृष्ण माधव मधुसूदन हरि नहरि राम गोविंद दधिवामन इन 10 नामों का 100 बार जाप करें। चौथा, निष्ठापूर्वक 1000 श्री कृष्ण का जाप करें। पांचवा, शामी अद्भुत वनस्पति पूजन करें तथा सोने से पहले शामी सिराने रखें। छठा, सूर्योदय से पूर्व पूर्वाभिमुखी होकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। सातवा, शुचिमूर्त होकर ओम नमः मंत्र के साथ शिव दुर्गा गणपति कार्तिकेय दिनेश्वर धर्म गंगा तुलसी राधा लक्ष्मी सरस्वती जी का जाप करें। आठवां, ओम ही श्री काली दुर्गति नाशिने महामाया स्वाहा का 10 बार जाप करें। नौवां, ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा का 10,00,000 जाप से साक्षात मृत्यु लौट जाती है। दसवां, प्रातः प्राणायाम करें या तगर के हरे पत्ते चबाएं। सुनने वालों, ये सब था दुख स्वप्नों का परिहार, यानी जो दुख वाले सपने होते हैं उनका निवारण कैसे करना चाहिए।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। स्वप्नों के प्रतीक, स्वप्न मानव जीवन को ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम वरदान है। यह देवी वरदान चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही मिला है, और ये खाली वरदान इंसान को ही भगवान ने दिया है, जो कि उसके मानव जीवन को सर्वोत्तम निधि कही जा सकती है। स्वप्नों का आधार काम भावना स्थिर की है। उनके अनुसार वास्तविक जीवन में जितने भी उपकरण हैं, वे दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो पुरुष चित्त प्राकृतिक और दूसरे स्त्रियोचित। पुरुषोचित प्राकृतिक, जैसे आप सब जानते हैं कि भगवान ने भी स्त्री और पुरुष दो जीव बनाए हैं, तो उसी के आधार पर शास्त्र विज्ञान भी अपना अलग अलग नीति देता है। पुरुषोचित प्राकृतिक, अस्त्र शस्त्र पुरुष वस्त्र मशीन नक्शा पुल चाबी लकड़ी पेड़ संदूक छाता आदि। और स्त्रीयोचित प्राकृतिक है दरवाजे ताला गुफा टोकरी कपड़ों के उपकरण बर्तन मशीन आदि। यह एक जीव की सृजनात्मक शक्ति का नमूना है। सिंह कभी झुंड में नहीं रहता, वह अकेले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सुनने वालों, जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि हीरो की ओवरी नहीं मूल्य गिरा नहीं पाती, सिंगों का लहड़ा नहीं साध ना चले जमाती।

हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, क्यों आती है नींद हमें, कि हम मनुष्य लोगों को कभी ज़्यादा नींद आती है, कभी कमती नींद आती है, इसका भी कोई ना कोई कारण तो जरूर होता होगा ना। यदि हम जागते हुए भी लेटे रहें तो भी हमारी थकान दूर हो जाती है, वैसे भी सोते समय हम पूर्णतः स्थिर नहीं रहते, हिलते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, जो मांसपेशियों की कसरत कराने के लिए करते हैं ना, ना कि उन्हें आराम देने के लिए। अतः हमारे शारीरिक नहीं अपितु मानसिक आराम की आवश्यकता होती है, परंतु सोते समय मस्तिष्क सुस्त नहीं वरन अधिक क्रियाशाली रहता है। सुनने वालों, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा काम करता है, और हम सोचते हैं कि शायद हम सो रहे हैं तो दिमाग भी थोड़ा शांत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम काफ़ी समय तक अकेले रहते हैं तो हमारी नींद भी काफ़ी घट जाती है, यानी जितने कम लोगों से हम मिलते हैं उसी अनुपात में हमारी नींद भी घट जाती है। वैसे हम अपने जीवन को एक तिहाई से अधिक भाग सोने में ही बिता देते हैं। नींद कई रोगों के निवारण की रामबाण औषधि है।

सुनने वालों, यह है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान यानी स्वप्न सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सामूहिक स्वप्न। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर स्वप्न देखते हैं। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अपने सपनों को व्यक्तिगत नहीं अपितु सामूहिक घटना के रूप में ही देखते हैं और व्याख्या करते हैं कि वो इकट्ठे सपने देखते हैं और उनका फिर आपस में बातचीत करते हैं कि हमने कौन सा सपना देखा। यूरोप के एक छोटे से गांव कार्सिका में सामूहिक सपना देखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। वहाँ सब लोग एक पूर्व निश्चित विषय के बारे में उसी विषय पर स्वप्न देखते हैं जो अगले दिन सुनाते हैं।

आधा। हमारी अंतरात्मा तथा हमारे स्वप्न। स्वप्न अवस्था में मस्तिष्क को चेतनात्मक पोषण मिलता है। मानवीय मन जितना शुद्ध एवं पवित्र होगा, उसका परिणाम में स्पष्ट सुखद भविष्य एवं गुण रहस्य प्रकट करने की समर्था स्वप्नों में समाविष्ट होती है। भारतीय विद्वान स्वप्न को देवी शक्ति की प्रेरणा मानते हैं। सर्वगस आत्मा हमें अपने में कुछ आदेश देती है। यह स्वर्गस आत्माएं हमें आने वाले संकटों की पूर्व सूचना भी देती है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि कई बार सपने हमें आते हैं, जो कई बार घटना घटने वाली होती है उसके बारे में हमें संकेत भी मिल जाता है। हमारी अंतरात्मा हमारे स्वप्न के दौरान अधिक साफ शब्दों में बातचीत के अतिरिक्त और कभी नहीं करती। अंतरात्मा की आवाज़ स्वप्न के दौरान साफ सुनाई देती है। यदि हम फिर भी अपने सपनों के संदेश पर ध्यान ना दें, उन्हें समझने का प्रयास ना करें, तो हमसे अधिक मूढ़ इंसान कोई नहीं है। हमें अपने मार्गदर्शक इन सपनों को भूलकर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग हमें सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमारी भीतर की आवाज़ की तुलना में कम सहायक सिद्ध साबित होते हैं। हमें कोई और इतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकता जितनी अच्छी तरह हम स्वयं समझ सकते हैं। अपनी आदतों, परेशानियों, उनके कारणों आदि को जितनी अच्छी तरह हम जानते हैं, उतनी अच्छी तरह कोई और नहीं जान सकता। सुनने वालों, वो तो हमें मालूम ही है कि सबको अपना स्वभाव, अपने आते पता होती हैं, और कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं जान सकता। और दूसरा अगर जान सकता है तो वो होती है माँ। माँ बाप को पता है कि हमारे बच्चों की आदतें कैसी हैं। इसलिए हमारे सपने ही हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, हमें सर्वोत्तम मार्गदर्शन दे सकते हैं। जिस युग में लोग सपनों की भविष्यवाणी और इनके अर्थ लगाने को एक प्रकार के ज्योतिष का दर्जा देते हैं, उस काल में वे सपने संभाल कर रखते हैं। ऐसा करने के लिए ग्रीस और मिश्र में बने मंदिरों जैसी इमारतों में जाना पड़ता था। सपने देखने के उद्देश्य से गए लोग वहां जाकर कई दिनों तक आराम करते हुए विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास आदि रखते थे। जब सपने देखने का समय आता था तो वह सपने देखने के लिए वहीं पर सो जाते थे। सोते सोते वह सपने में किसी देवी देवता या देवदूत के आने की प्रतीक्षा करते थे। यह तो केवल विश्वास की बात है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में भी नहीं है।

मोती युग सीप केवल गहराइयों में ही मिलेगी, उथले जल में तो केवल मछली ही मिलेगी। सपने मांगने का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रार्थना। सुनने वालों, जैसे हम समुद्र में जाएं या कहीं भी जाएं, वहाँ पर ऊपर ऊपर मछली मिलेगी। गहराई में जाएंगे तभी हमें सीप के मोती मिलेंगे। हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मेरी सहायता करो। आप भक्तों की पुकार सुनकर पल भर में उनकी सहायता हेतु प्रकट हो जाया करते हो। कृपा करके मुझे एक ऐसा सपना भेजने की कृपा करें जिससे मुझे अपनी समस्याओं का समाधान और सामना करने में मदद मिले। धन्यवाद। चाहे यह कोई सरल कार्य नहीं है, फिर भी प्रयत्नशील एवं कर्मठ लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। हम सब की राहें चाहे अलग अलग हों, परंतु हम सब की मंजिल केवल एक ही है। सफलता भले किसी को भी मिले, परंतु विजय तो मानवता की ही होगी। अंतरात्मा कुछ सीमा तक सचेत है और मनुष्य को गलत कार्य करने से रोकती है। जब तक शरीर में आत्मा का वास है, हमारा अस्तित्व है, और जिस पल आत्मा यह बंधन, यह पिंजरा तोड़कर उड़ गई, समझे हम भी मिट्टी में मिल गए। स्वप्न में इसे देखने का अर्थ है कि सपना देखने वाले का व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण हो गया और उसने अपनी उन्नति की चरम सीमा प्राप्त कर ली है। पुरुषों के सपनों में अंतरात्मा एक बुद्धिमान वृद्ध या महान पिता या स्त्रियों के स्वप्न में महान माता के रूप में प्रकट होती है।

सुनने वालों, ये है फहन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सबका हिंदुस्तानी रेडियो जो आप सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम लेकर आता है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान। तो हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, सपनों की गूढ़ परिभाषा। इनमें शब्दों व आवाज़ की जगह दृश्यों, चिन्हों व लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इनमें हम धीरे धीरे ज्ञात अर्थों में से अधूरे, अपरिविक व अनुचित अर्थों को हटाते हुए सही अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अगर दृश्य ना हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। यही दृश्य सब विचारों, बातों व संकेतों का केंद्र तथा उसका उद्गम स्थल है। दृश्य एक इंसानों के विचारों व उसके अस्तित्व का प्रतीक होता है, परंतु यह मौलिक कदापि नहीं है। यही दृश्य कुछ वास्तविकता तथा कुछ चिन्हों के रूप में हमारे स्वप्नों का निर्माण करते रहते हैं। यही स्वरूप है हमारे सपनों का। आमतौर पर दिन के समय हम अपने हृदय की बात सुनते हैं व मानते हैं, और हमारी भावनाओं का रात को ही स्वयं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। चेतन मन कहता है।

मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अस्वर हो सो साधु कोई एक। जागते समय भले ही दिमाग जीत जाए, परंतु सोते समय मन की ही विजय होती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों वे आविष्कारों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे बहुत सोते थे, प्रायः दिन के समय भी। कई बार हमें अपने मस्तिष्क से संगणक अर्थात कंप्यूटर की तरह इनसे भी सपने व मदद मांगनी पड़ती है।

बौद्ध धर्म तथा स्वपन। इस धर्म की सपनों से पहचान इसके प्रवर्तक सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। जब लुम्बिनी में सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही उनकी माता रानी महामाया को स्वपन में एक दिव्य सफ़ेद हाथी दिखाई दिया था। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि विलियम वार्ड्सवर्थ का विचार था, जीवन एक स्वपन है, केवल एक स्वपन। जिस विश्व में हम विचरण करते हैं उसके अतिरिक्त एक धारा पर एक और भी अदृश्य विश्व है जिसमें देवता या आत्माएं विचरण करती हैं। यहाँ पर हम अपने मृत रिश्तेदारों के साथ मानसिक संपर्क स्थापित करते हैं जिससे वे हम पर प्रसन्न रहें तथा हमारा ध्यान रखें और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें और रक्षा करते रहें। हमारे अंतिम समय में प्रायः हमारे कर्म प्रतीक रूप में हमारे सामने आते हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक था आज का प्रोग्राम। अगली बार मैं आपके साथ फिर उपस्थित होंगी और सपनों के बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी मिलेगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर उपस्थित है यहाँ स्टूडियो में ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर। ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर और इसमें सहयोग देने वाले हैं शांता जी जो हमारे साथ उपस्थित है।
1: चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना, समंदर अधूरा है किनारों के बिना, अधूरा नहीं है आप जैसे प्यारे प्यारे सुनने वालों के बिना। सेविका शांता की श्रद्धा से राम राम प्रणाम स्वीकार हुए। जैसे आप सुन रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है सेवक संजय जी और राजेंद्र जी। यहाँ से हम मिलजुल कर अपना प्रोग्राम ज्योति का प्रकाश आकाश में ला रही हूँ हर सप्ताह की तरह। यही आशा उम्मीद है कि आप

आज हम सबका जो कार्यक्रम है बड़ा सुंदर सा और विषय रखा गया है, तो हम सब अभी उस ओर बढ़ेंगे, वो विषय की ओर बढ़ेंगे। हमारे कार्यक्रम में जो अभी तक घर पे बैठे हुए, क्योंकि ये एक बड़ा मज़ेदार कार्यक्रम होने वाले है आज, मन जिसका उदास है, तो पहले हम उदासी मन के अंतर्गत एक सुंदर सा अर्थ भरी और गीत को चलाते हैं, फिर उसके बाद में हम सब और ये आज का विषय के बारे में बातचीत होगा।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। दोस्तों, सभी सुनने वालों से ये गीत, जो अर्थ भरी गीत जो हम सब सुने कि तेरा राम जी करेगा बेड़ा पार। राजेंद्र जी, आज का और संदेश क्या है? हमने ये विषय जो आपने रखे है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, ये तो बड़ा गंभीरता बात है राजेंद्र जी।
1: जी, ये बहुत ही अच्छा विषय है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। इसी दुख की एक बात बताते हैं। जब सुनिए, सौभाग्य बनता है तो समझिए कैसे आज का दुख कल का सौभाग्य बनता है। तो शुरू करते हैं महाराजा दशरथ की जी उस तरफ से। महाराजा दशरथ जी को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो उन्हें कभी आशाहीन नहीं होने देता था। मजे की बात यह है कि इस हौसले की वजह किसी ऋषि मुनि या देवता का वरदान नहीं बल्कि श्रवण के पिता का श्राप था।
0: यानी कि उन्हें ये इस बात पे उतना दुख होने पे, हम ये रामायण में बहुत से बार सुने हैं कि राजा दशरथ का और कोई संतान नहीं थे, फिर भी उनको हौसला होते थे।
1: जी,
0: तो आगे बताइए जरा कैसे, कि ये हौसला कैसे हो सकता है? कोई जब दुख होता है, किसी के बच्चे नहीं या कोई प्रकार कुछ जिसका इच्छा होता है,
1: हौसला ऐसे होता है कि जैसे आप किसी पेड़ पे चढ़ रहे हैं और चढ़ नहीं पा रहे हैं और पीछे से कोई पुश कर दे हल्का सा तो आप इजीली चढ़ जाते हैं। ऐसे ही राजा दशरथ जी को हौसला बनाने के लिए सब लोग कहते थे कि कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो हौसला बन जाता था। जब वह बहुत दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आता था। कालिदास ने रघुवंश दास में इसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है। कालिदास जी ने एक लिखा है बुक, उसमें वो बुक का नाम है रघुवंश राय, रघुवंशम। रघुवंशम मतलब जो भगवान राम का वंश है, रघुवंश है। तो कालिदास ने उसको बहुत डिटेल में पूरा लिखा है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो रघुवंशम का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए।
0: ओ, उसी कारण कहा जाता कि राजा दशरथ रघुकुल के,
1: हाँ, रघुकुल रीति सदा चलाई, क्योंकि वो रघुवंशी थे। तो श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ वैसे ही तू भी तड़प तड़प के मरेगा। दशरथ को पता था कि श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र प्राप्त होगा।
0: अब समझ में आया, क्योंकि ये हर बार ये जो अपना शाप को पाए थे, और यानी श्रवण कुमार के पिता से,
1: जी,
0: तो वही ख्याल आता था कि वो शाप अभी मिलना है।
1: हाँ, वो ख्याल आता था कि उन्होंने बोला कि अपने पुत्र के वियोग में आप तड़प तड़प के मरोगे, लेकिन उस समय संतान नहीं थी तो उनको ये ख्याल आता था कि उन्होंने श्राप दिया कि पुत्र के वियोग में मरेंगे, इसका मतलब मुझे संतान प्राप्ति होगी।
0: ये तो बड़ा आश्चर्य की बात हो जाता है कि देखो रामायण के गहराई में कितना, और जा करके हम सबको ये सुंदर संदेश को आप कहाँ से निकाले?
1: ये तो सारा कुछ रामायण में ही है, और जब आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा रहता है। और शांता जी भी रामायण बहुत पढ़ती है, तो कुछ शांता जी आप बताइए।
2: जी हाँ, रामायण तो मैं भी पढ़ती हूँ, पर ये जो योजन चल रहा है ना आज के, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगे कि दुख में भी सुख छिपा हुआ है। कितना दुखी होते हुए श्री दशरथ जी फिर भी ओके उतना खुश है, हो जा है कि पान शाप के कारण कहों पे दूर प्रकाश में दूर दूर कहों पे ओके प्रकाशित।
0: यानी कि उन्हें ये बात का मालूम था कि हमें जो शाप मिला है श्रवण कुमार का पिता से, कि उनका पुत्र को इन्होंने और जा करके जल स्थान से और तीर कमान से तीर चला दिया था ना अनजान में।
1: हाँ, एक बार एक कहानी है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ स्थानों में यात्रा करा रहे थे, तो वो एक बार एक जगह पहुंचे, उनके माता पिता ने कहा कि उनको प्यास लगी तो वो घड़ा लेके पानी भरने गए। जैसे वो जलाशय से पानी भर रहे थे तो जब पानी भरने की आवाज़ आई तो राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। उन्होंने सोचा कि कोई जानवर है और पानी पी रहा, उसके गले की आवाज है। तो उन्होंने वहीं से शब्द भेदी बाण चलाया और वो सीधा श्रवण कुमार के लगा। और जब उन्होंने कर आवाज आई तो उन्होंने सोचा कि लगता कोई गलती हो गई। वो उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा घोर पाप हो गया है और ये शब्द भेदी बाण से। तो उन्होंने फिर उनके माता पिता के पास उन्होंने बोला कि जाइए मेरे माता पिता को पानी पिलाइए, लेकिन उनको बताना नहीं पानी पीने से। बजे वही उन्होंने माता पिता ने वहीं पे उनको श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र वियोग में मरेंगे, कुछ देर में फिर मर गए थे, वैसे आप भी अपने पुत्र वियोग में मरोगे, तभी आपको पता चलेगा कि पुत्र वियोग क्या होता है।
0: तो आपने इतना सुंदर से ये बात को सुनाए, ये शाप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया था।
1: नहीं, ये श्राप दशरथ को संतान प्राप्ति की याद दिलाता था कि आपको जरूर संतान प्राप्ति होगी, तभी आपको पुत्र वियोग होगा। तो उनको हर समय रिमाइंड कराता था कि पुत्र प्राप्ति होगी ही।
0: चलो तब इस पे एक सुंदर सा अर्थ भरी गीत और हम सबको सुना दीजिए राजेंद्र जी, जो कि शांता जी ने हम सबके लिए खोज खोज करके चुन चुन करके और रखे है।
1: जरूर जरूर।

0: वो साथी दुख में ही सुख है छिपा। तो बताइए संजय जी, आपको दुख में सुख कैसे छिपा हुआ दिखता है?
1: दुख में कैसे, सुख में कैसे या दुख में कैसे कौन छुपा रहता है?
0: दुख में सुख कैसे छिपा है और सुख में दुख कैसे छिपा है, दोनों वृतांत बताइए।
1: अब दोनों में कैसे मैं वृतांत बताऊं?
0: एक बता दीजिए, दूसरा शांति जी बता दीजिए।
1: चलो मैं एक बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ऐसा एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुआ था, जैसे आपने दशरथ जी का बताया ना
0: जी।
1: सुग्रीव जब माता सीता के खोज में वानर वीरों को पृथ्वी के अलग अलग औ दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये बात रहे कि किस दिशा में तुम्हें क्या मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यानी कि जब माता सीता के खोज में सभी इकट्ठा हुआ
0: जी,
1: तो सुग्रीव जी वानर सेना सभी इकट्ठा करके और सभी के सीख दे रहा था, ये कह रहे थे कि आपको इस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना है, किस ओर को नहीं जाना है। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये स्वभाव देखकर, ये ज्ञान देखकर और उनसे ये प्रश्न कर बैठे कि सुग्रीव जी, आप ये वानर सेना को अलग अलग ओर भेज रहे हैं, कहीं कहीं कह रहे हैं कि वहाँ जाने के कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो ये ऐसा क्यों? तो उन्होंने सुग्रीव से ये बात को जब पूछे तो सुग्रीव ने और ये कहे कि मैं कैसे बताऊँ। उन्होंने इस बात को कहा कि जब मेरे भाई बाली से मेरा और जबकि दुश्मन ही हो गया था ना भाई,
0: हाँ,
1: बाली
0: उनका
1: से
0: भाई, एक बार की कथा है कि बाली उनका दुश्मन कैसे हो गया था कि एक बार बाली एक राक्षस को मारते मारते गुफा में घुस गए और गुफा में घुसे तो उन्होंने बोला अपना भाई सुग्रीव को कि आप गुफा के बाहर इंतजार कीजिए मेरा, अगर मैं एक महीने के अंदर लौट आऊं, बाहर आ जाऊं, तो समझ लेना कि मैं जिंदा आ गया, और नहीं लौट सका तो समझ लेना मैं मर गया। तो सुग्रीव ने एक महीना इंतजार किया और बाली बाहर नहीं लौटा, और एक दिन देखा तो उस गुफा के द्वार में पूरा खून की नदी बह के आई है, तो उन्होंने सोचा कि लगता कि बाली मारा गया, और उन्होंने एक बड़ा भारी पत्थर उस गुफा के दरवाजे पर रख दिया, गुफा बंद कर दी और घर आ गए। वहाँ से जब घर आ गए तो उन्होंने सोचा कि बाली मारा गया, उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजगद्दी संभाल ली अनजाने में। लेकिन जब बाली आया, बाली जिंदा नहीं, वो राक्षस मरा था, बाली एकदम आया तो एकदम गुस्सा हो गया कि बताओ मैं वहाँ ऐसे ऐसे करने युद्ध करने के लिए गया, उस राक्षस का नाश करने के लिए गया, और सुग्रीव यहाँ राजा बन गए। इस बात से वो बहुत
1: क्रोधित
0: हो गया और उसने सुग्रीव को घर से निकाल दिया। तो तब से सुग्रीव बाली की डर से उसने पूरे संसार में, पूरे जगह,
1: पूरा
0: पृथ्वी पे जहां जहां गया बाली उसको वही बहुत गुस्सा करके उसको मारने जाता था। तो फिर एक पर्वत पे वो रहता था जहां बाली को श्राप था ऋषियों का, उस पर्वत पे नहीं जा सकता था। इसलिए सुग्रीव को पूरा पृथ्वी का ज्ञान हो गया था कि कौन दिशा में क्या रहता है, कौन दिशा में, दिशाओं का ज्ञान। भगवान राम ने जब उनसे पूछा कि आपको इन दिशाओं का ज्ञान कैसा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे को इन दिशाओं का ज्ञान इसलिए है कि मैं बाली की डर से रह नहीं पाता था एक जगह, और मैं जगह जगह भटकता था, सब दिशाओं का ज्ञान इसलिए ऐसे हो गया।
1: तो ये भी एक ऐसा संदेश है, अब हम सबको ये संदेश को प्राप्त होता है कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, और यहाँ पर जब दुख है तो उन्होंने दुख के हितार्थ और यानी कि मारा मार पृथ्वी पे चारों बगल घूमते फिरते रहे और उसमें कुछ ज्ञान प्राप्त किए, और वही ज्ञान को जो जाकर के सीता माँ के खोज में और प्रयोग किया गया।
0: सोचिए अगर सुग्रीव पर ये संकट ना आया होता तो उन्हें भूलोक का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है।
1: ये संदेश हुआ ना राजेंद्र जी, क्या बात है कि इस पे कुछ सुंदर सा और गीत रखेंगे आप?
0: जी जरूर। और इसके बाद एक छोटी सी बात और है, ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझो। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराना नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी में हो। सदैव सकारात्मक रहे।
1: कि क्या पता अगले किसी सुख के तैयारी में हो, ये हुआ संदेश। राजेंद्र जी एक सुंदर सा और गीत की ओर बढ़िए,
0: एक सुंदर सा नगमा पेश करते हैं।

0: यकीन और दुआ नज़र नहीं आते, मगर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तो आप यहाँ से सुन रहे थे एक प्यारा सा भजन।
1: दोस्तों, ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जिसमें हम ये लक्ष्य लेकर आते हैं कि हमारे जीवन के ज्योति में जो प्रकाश जल रहा है उसमें कोई ना कोई प्रकार से प्रकाश और आ सके। भाई राजेंद्र जी, जो आप सुंदर से और गीत को रखे, बड़ा सुंदर और संदेश उस गीत से हम सबको प्राप्त हुआ। पर हमारे शास्त्रों क्या कहते हैं कि जब सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, शास्त्रों इसके बारे में हम सबके क्या सुनाते हैं?
2: संजय जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही उत्तम और ज्ञान भरा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र जो लिखे जाते हैं उनके अनुसार हर चीज शास्त्र में वही चीज लिखी जाती है जो काम की होती है और ज्ञान की होती है। तो शास्त्रों के अनुसार राम नाम ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। राम नाम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और सभी देवताओं भी इसी में समाये हैं। जिसने राम नाम का जाप कर लिया वह अपना जीवन में तर जाता है। राम नाम ही महिमा, मनुष्य का जीवन सौभाग्य और दुर्भाग्य की अनुभूतियों से भरा हुआ है। कभी मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है तो कभी दुर्भाग्य की। सौभाग्य मनुष्य को निश्चित रूप से अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य किसी को भी अच्छा नहीं लगता। यह मूलतः इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने अनुभव करते हैं कि दुर्भाग्य किसी के लिए पहाड़ के समान होता है तो किसी के लिए साधारण सी बात। यह जीवन के दो चापों के समान होता है। यदि एक का संतुलन बिगड़ जाए तो दूसरे को संतुलन रखने के लिए सिर्फ एक ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सिर्फ भगवान श्री राम का नाम। इस साधारण से नाम में असीम शक्ति छुपी है। इस नाम का सिर्फ स्वाद चखकर ही इसे बखान किया जा सकता है। एक सार्थक के नाम के रूप में हमारे ऋषि मुनियों के नाम के महत्व को पहचाना। उन्होंने इस पूजनीय नाम की परख की और नामों के आगे लगने वाला चलन प्रारंभ किया। प्रत्येक परिवार में देखा जा सकता है कि बच्चे के जन्म राम के नाम के स्वर का होता है। राम में शिव, शिव में राम विद्यमान है। राम जी को शिव जी का महामंत्र माना गया है। राम सर्वमुक्त है। राम सभी की चेतना का सजीव नाम है। तो बताइए संजय जी, आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे?
1: इसमें तो बस यही प्रकाश डालना चाहूँगा कि भाई, दुनिया में वही शक उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है।
2: हाँ, हम लोग एक गीत की ओर बढ़ते हैं। एक प्यारा सा नगमा है।

0: कहानी।
1: तो ये शांता जी, आप क्या कहते हैं कि राम कहानी के बारे में?
2: श्री राम भगवान को नाम को नीदरलैंड्स में कुछ हम सबको उसके बारे में संदेश देने वाले हैं।
3: काहे काहे हम सब राम राम जस्टिस जहाँ हम या भेटाएल कोई के तो हम लोग राम राम कला ओकर रहस्य उसमें ओकर अर्थ जो है वो भी हम जानना चाहते थे और हम खोज के आए हैं। तो हम आए आप सबको भी बतलावे काहे के है राम
2: तो
3: राम।
2: ये राम राम तो बस ये हमारे समस्या जो है कि हम ऐसे जानते हैं कि हम हाथ जोड़ लेते हैं और राम राम कहते हैं, क्या वही है राम राम?
3: हाँ, राम राम वही है। और ये राम राम सिर्फ ना ऐसे ही कह दे, ऐसे राम राम कहना चाहिए कि जो प्रफुल्लित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तब जान ले वो भी इन वर्किंग आवे है। और कहे के राम राम ताकि राम अल्फाबेट हिंदी अल्फाबेट में हैगा एर सेफन त्वेंतक्ष्त लेटर है, सेफन त्वेंतक्ष्त अक्षर, और आ जो है उत्वेद लेटर है, और म जो एम है राम के वो है फैफन त्वेंतक्ष्त पे है। तो ये सब जो साथ है जोड़िए तो आवे हैगा
4: 54।
3: तो भले एक दफे जो बोलिए राम, मतवेद फिर जब बोलिए राम तो त्वे मा
4: 54
3: आ जाए द वर्ड दैट साम होन दैट आह। तो जैसे हम सब नॉर्मल माला जाप कर ला 108 नंबर के, ऐसे दिल से जब कोई बोले कि राम राम तो भले एक माला जाप हो जाए।
2: भाई राजेंद्र जी, आपने समझ गया कि राम राम का मतलब क्या है?
1: राम राम का मतलब बहुत ही अच्छा है, एकदम गहरा विषय है।
2: पर अभी तो आप हम सबको जो संदेश सुना रहे थे
1: जी,
2: अभी ये तो हम जानते हैं कि ईश्वर दुनिया की सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़ा दवा है। पर अभी आप जो संदेश हम सबको दे रहे थे तो क्या उसमें कुछ और संदेश है कि बस वही थे?
1: नहीं, और बहुत संदेश है। जैसे कि राम नाम के बारे में तो बहुत कुछ संदेश रहता है। एक बार एक कुख्यात डाकू रत्नाकर नाम से प्रभावित हुए।
2: कौन डाकू?
1: रत्नाकर, रत्नाकर राम नाम से प्रभावित हुए और अंततः महर्षि वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए।
2: यानी कि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण को और निर्माण किए हैं,
1: जिन्होंने रामायण को लिखा है वाल्मीकि रामायण, वो पहले डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, वो डाकू थे। तो राम नाम की चैतन्य धारा से मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता स्वतः ही पूरी हो जाती है। यह नाम सर्वसमर्थ है। राम अपने भक्त को उसके हृदय की बास कर सौभाग्य प्रदान करते हैं।
2: विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले तो चुरा लो।
1: हाँ
2: ना
1: जी।
2: क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाता है।
1: हाँ, लेकिन विचार
2: मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में रहती है।
1: यस, वेरी नाइस।
2: तो आप जैसे ये संदेश सुना रहे हैं कि श्री राम भगवान के, अभी आपने बताए कि रत्नाकर, ये तो मैं पहला बार सुना। हम सब तो ये कथन में कितने बार सुने थे कि वाल्मीकि जी, पर आज ये भी रख दिए आपने। और क्या संदेश है आपके ओर से राजेंद्र जी?
1: और दूसरा संदेश है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रभु के जितने भी नाम प्रचलित हैं उनमें सर्वाधिक श्री फल देने वाले राम नाम का ही है। इससे वधिक पशु पक्षी मनुष्य आदि तक तर जाते हैं। सारी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई ने अंततः यही गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कृष्ण रतन धन क्यों नहीं कहा? क्योंकि राम नाम की महिमा अपरंपार है। अन्य देवी देवताओं की तुलना में राम सबको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यह नाम सबसे ज़्यादा सरल और सुरक्षित है। इसके जप से लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इस राम के जप के लिए आयु, स्थान, स्थिति, जाति जैसे बाहरी आवरण की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी समय और किसी भी स्थान पर राम नाम का जाप किया जा सकता है।
2: ओ तो जैसे कि अभी शांता जी ने भी सुनाए कि अपने ओर से, और उन्होंने तो बस गणित में भी हम सबको इस बात को सुनाए। दोस्तों ये है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, और आप जहाँ भी हो, दुनिया के कोई भी देश में ये कार्यक्रम को सुन रहे हो, तो सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि ज्योति का प्रकाश हम सब के लिए कुछ ना कुछ संदेश खोज खोज करके और लाते रहते हैं। कहावत है कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है
1: दुख का ताला किसने लगाया है अगर सुख की चाबी ढूंढ रहा है।
2: तो राजेंद्र जी, अभी ने जैसे कि आपने बड़ा सुंदर रूप से और ये वृतांत को सुनाए हम सबको
1: जी,
2: और कुछ सुंदर गीत है कि हम सब आगे बात कर सकते हैं?
1: नहीं, अभी एक गीत रहेगा, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो गीत के बोल रघुनंदन मोहम्मद रफी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से गाया है।
0: इंद्र आश्रित पारिजात

0: रघुनंदन, जय सियाराम, जय रघुनंदन, जय सियाराम। बताइए शांता जी, अब आप क्या संदेश देना चाहती हैं डच में?
1: डच में मैं ये कहना चाहती हूँ कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, यानी कि पछतावा हेत फरलेद कायनित मेर फरामदर, और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकता। चिंता यानी कि तुकोम्स कायनित फोरोइत लेफन, और वर्तमान का आनंद लेने ही जीवन का सच्चा सुख है, यानी वर्तमान दिस फंदाख लेफन एनत हेदन न्यू इस हेत आलर बलंग रेक्स तो मोमेंट वन वट मैं न्यू दूत दैट वर्ड दान हेत फरलेद एंड फोर बरेद फॉर द तुकोम्स।
2: शांता जी, इतना सुंदर संदेश को हम सबको दिया है कि भाई राजेंद्र जी, ये संदेश तो सुन के बस ये ख्याल आता है कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारी कर्मी ही हमारा भाग्य लिखता है। राजेंद्र जी, इस के बारे में आपका क्या कहना है?
0: हाँ, इसके बारे में हम एक सरल रूप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड सुनाते हैं कि पॉजिटिविटी कैसे होती है, कैसे लोग का भाग्य कैसे क्या होता है। तो सुनिए, एक घर के पास काफ़ी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था।
2: इमारत क्या चीज़ होता है राजेंद्र जी?
0: इमारत मतलब कोई बिल्डिंग,
2: और यानी कि कुछ बड़े बन रहा था,
0: कोई बड़ा बिल्डिंग, बड़ा मकान, मकान छोटा रूप बोलते हैं लेकिन इमारत मतलब कोई महल टाइप का बन रहा। वहाँ रोज मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़ कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और काफ़ी बच्चे डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते, पर केवल चड्डी पहना एक छोटा बच्चा हाथ में रखा कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड बनता था। एक दिन मैंने देखा कि उन बच्चों को खेलते हुए रोज दिन देखने के एक व्यक्ति ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाकर पूछा, बच्चे तुम रोज गार्ड बनते हो, तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा क्यों नहीं होती है?
2: गार्ड के मतलब क्या है राजेंद्र जी?
0: गार्ड का मतलब जो रेल में सबसे पीछे एक आदमी खड़ा रहता है, वो सिग्नल देता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पीछे से ठीक है। तो रेल बहुत लंबा होता है, बहुत सारे डब्बे होते हैं, तो आगे ड्राइवर को पीछे का कुछ पता ही नहीं रहता, तो पीछे से बताता है कि आगे ये पूरा ठीक, इधर से सब सही है, तो आप चलते रहो चलते रहो। तो एक कपड़ा उसके हाथ में होता है, लाल एक हरा, अगर उसने लाल का भी कपड़ा दिखा दिया तो पीछे देख सकता है उससे या तो वायरलेस से, तो वो कहता है कि लाल कपड़ा मतलब खतरा तो रुको, और हरा मतलब चलते रहो कोई बात नहीं,
2: चलते रहो गाड़ी।
0: हाँ, गाड़ी चलती रही। तो इस पर वो बच्चा बोला, बाबूजी मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा, इसलिए मैं रोज गार्ड बनकर एक खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय मुझे उसकी आँखों में पानी दिखाई दिया। आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक बड़ा पाठ पढ़ा गया। अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर रहेगी। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, परंतु ऐसा न करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। हम कितना रोते हैं कभी अपने सवालों रंग के लिए, कभी अपने सांवले रंग, सांवले मतलब काला रंग, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार, कभी पड़ोसन के गले का हार, और कभी अपने कम मार्क्स, यानी इस एग्ज़ाम में जो माँ नंबर मिलते हैं उसके लिए, कम जो मिले तो उसके लिए, कभी अंग्रेजी, कभी पर्सनालिटी, कभी नौकरी की मार, तो कभी धंधे में मार, कभी अपने सिंगिंग की लो स्केल को लेकर हमें इससे बाहर आना ही पड़ता है। ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। चील बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, और चिड़िया जो छोटे छोटे नीचे नीचे उड़ती है, तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं होती। क्यों नहीं होती?
2: क्योंकि उसमें वो ज्ञान नहीं है, वो अपना और ये इच्छा नहीं रखते कि मुझे भी वो चाहिए।
0: वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, उसके पास जो है उसी में मस्त रहती है, इसलिए उसको कोई फिक्र नहीं है।
2: जो है हमारे पास उसी में मगन रहो।
0: हाँ, मगर इंसान इंसान की ऊंची उड़ान देकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचे और खुश रहे, एक दूसरे की तुलना, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों नहीं, इसलिए जो आपके पास है उसी में खुश रहें, तुलना से बचे। न किसी से ईर्ष्या, न किसी से कोई होड़, मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी ही दौड़। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। बताइए संजय जी, अब आप इसके विषय में कुछ पूछना चाहेंगे या कहना चाहेंगे?
2: नहीं, कुछ पूछना कहना नहीं चाहूँगा राजेंद्र जी, क्योंकि इस कार्यक्रम से हमें भी कुछ ना कुछ सीख मिलता है। और जैसे कि आपने इतने सुंदर संदेश को सुनाते रहते हैं, तो ये छोटी यानी कि ये जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। यही हमें अच्छा लगता है कि आप हम सबको ये सुंदर सुंदर संदेश हम सबको सुनाते हैं। मैं देख रहा हूँ शांता जी कुछ कहने वाला है।
1: वाकई में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, तो ऐसे है कि लोगों को भरपूर सम्मान देना, जैसे आपने राजेंद्र जी का सुनाए ना, लोगों को भरपूर सम्मान देना इसलिए नहीं कि उसका अधिकार है, अधिकार तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपका संस्कार वो है।
2: आपके संस्कार वो है। देखो संदेश अच्छा, रोज हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं राजेंद्र जी,
0: जी,
2: और एक दूसरे से भी कुछ ना कुछ हम सबको ये ज्ञान बढ़ते हैं। हमारे जो मैं देख रहा हूँ पनील के आगे आपने कुछ गीत को भी तैयार रखे हुए हैं, तो पहले गीत को सुना दीजिए, तब फिर आगे हम सब कार्यक्रम को बढ़ाएंगे।
0: मनवारे जीवन है संग्राम,

0: जिले राम राम राम। भाई राजेंद्र जी, बड़ा सुंदर सा और गीत को आपने सुनाए। हम जो आज का हमारे जो विषय था कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, आज कितने संदेश हम सबको सुनाए आपने।
1: नहीं, हम तो चाहते हैं, और अगर आप सुनना चाहे तो हम सुनाना क्यों ना चाहे। तो एक साखी है द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सुनने का और हम सुनाने का। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करेंगे।
0: भगवान को ऐसे कहे,
1: भगवान को ऐसा कहे। वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। यानी संगत जी, हम चाहे कितने ही निपुण विद्वान, बुद्धिमान, महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन स्वयं हर परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है उसी का नाम सतगुरु है। इसलिए पूरे सतगुरु की शरण में लेकर पूरे समर्पण भाव से उस पर भरोसा रखो तो सब ठीक हो सकता है।
0: सुंदर संदेश जो आपने सुनाए राजेंद्र जी।
1: जी,
0: आज यहाँ पर की जो संदेश है कि एक खूबसूरत सोच ना, एक खूबसूरत सोच मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी को करते हैं जो हासिल ना हो सकता है, हम यही में पड़े रहते हैं। आज ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम में कुछ ज्ञान के बातें खोज खोज करके आपके लिए यहाँ रखते हैं, और हम सभी एक और गीत है, या इस बार मुझे अवसर है कुछ सुनाने को राजेंद्र जी।
1: आप थोड़ा सा सुना सकते हैं, इसके बाद हम गीत शुरू करेंगे।
0: चलो थोड़ा से तो सुनाने को कोशिश करेंगे राजेंद्र जी। एक मैंने गत दिनों इस वृतांत को सुने
1: जी।
0: इस वृतांत को हमने सुने कि एक हिरण की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर पर आवर होता है, 90 किलोमीटर के स्पीड से वो दौड़ते हैं, और शेर के रफ्तार 58 किलोमीटर स्पीड से होते हैं। इसके बावजूद अक्सर हिरण का शिकार हो जाता है, क्योंकि हिरण को लगता है वो शेर से कमजोर है। यही खौफ उसे बार बार क्या करवाते हैं, पीछे मुड़ करके और देखने को मजबूर करता है
1: जी।
0: और हिरण को हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाता है, इसीलिए आप खुद पर यकीन न रखिए और पीछे मुड़कर मत देखिए, आप अपने सपनों और लक्ष्य पर रहिए। कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद पर यकीन रखिए।
1: हाँ,
0: तो ये संदेश जो हम आपके लिए और सभी सुनने वालों के लिए रखे कि अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर यकीन रखिए।
1: हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए,